107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, वैशाख मास की 28वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 18 मई 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव पुत्र कृष्ण जो पापों और दुखों को दूर करने वाले हैं, परमात्मा है जो आत्मसमर्पण करने वालों के कष्टों का नाश करने वाले हैं। गोविंद को कोटि कोटि प्रणाम है। इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्य।

वाले हैं। गोविंद को कोटि कोटि प्रणाम है। इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। पुष्पांजलि का प्रथम पुष्प अर्पित है प्रथमेश्वर श्री गणेश के चरणों में।

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारुवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शरीर कपूर की तरह गोरा है, जो करुणा के अवतार है, जो शिव संसार के मूल है और जो महादेव सर्पराज को गले में हार के रूप में धारण किए हुए हैं। ऐसे हमेशा प्रसन्न रहने वाले भगवान शिव को हम अपने हृदय से सदा शिव पार्वती को नमन करते हैं।

सी साधी विपति की विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसो एक।

विपत्ति के समय आपके सात गुण सदैव आपकी रक्षा करेंगे, आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि और आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म और इसी के साथ साहस, सत्यवादिता और ईश्वर में अटूट विश्वास सदा आपकी रक्षा करते हैं।

करता करे न कर सके शिव करे सो होई, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि आकांक्षा के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

जैसे नदी अपने जल के लिए और वृक्ष अपने फल के लिए कभी चिंतित नहीं होते, वैसा ही स्वभाव एक सच्चे भक्त का होता है। वह केवल श्रेष्ठ कर्म करता है और अपनी जीवन रूपी नैया उस परम मल्लाह अर्थात ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है।

सुख में भगवान को याद करना कृतज्ञता है और दुख में उन्हें याद करना विश्वास। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब उनका आभार मानना ही सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है।

जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। भक्ति हमें समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उनके बीच शांत रहकर मुस्कुराना सिखाती है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो पहाड़ जैसी मुसीबत भी राई के समान लगने लगती है। याद रखिए, सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें निखारने के लिए आती हैं। हर समस्या में प्रभु आपके सहाय बने, इसी मंगल कामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि नींव का निर्माण सबसे कठिन कार्य होता है। कमजोर नींव पर सशक्त, समर्थ और मजबूत इमारत का निर्माण नहीं हो सकता। अक्सर हम नींव की उपेक्षा कर देते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों का कार्य अत्यंत गरिमापूर्ण है, इसलिए उनका मानदेय भी सम्मानजनक होना चाहिए। सरकार ने अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया है। साथ ही उनको 5,00,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदेशक और उनके परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में विकास के कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के कारण आज यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित कर निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, रोजगार व अन्य क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ सभी के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा जनहित से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में शामिल हुए नए और प्रमोट किए गए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए हैं। नए शामिल हुए कैबिनेट मंत्रियों में

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया। मनोज कुमार पांडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग दिया गया, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। नए शामिल हुए चार राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और डेयरी विकास विभाग दिया गया। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग सौंपा गया। हंसराज विश्वकर्मा को एमएसएमई मंत्रालय से जोड़ा गया और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का विभाग दिया गया। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन उर्वरक अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के सरदार पटेल चौराहा स्थित सांसद जनसंपर्क कार्यालय में जनसंवाद किया। उन्होंने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम जनमानस व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बारी बारी से सबकी समस्याएं सुनी। जौनपुर में कल ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज

जिम्मेदारी सौंपी गई। नए शामिल हुए चार राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और डेयरी विकास विभाग दिया गया, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग सौंपा गया, हंसराज विश्वकर्मा को एमएसएमई मंत्रालय से जोड़ा गया और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का विभाग दिया गया। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन उर्वरक अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के सरदार पटेल चौराहा स्थित सांसद जनसंपर्क कार्यालय में जनसंवाद किया। उन्होंने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम जनमानस व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बारी बारी से सबकी समस्याएं सुनी। जौनपुर में कल ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में आयोजित संगोष्ठी एवं समरसता सम्मान समारोह में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि गोरखपुर को गोरक्षा पीठ आध्यात्मिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन अखबारों की सुर्खियों के साथ 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
1: चलते रहे इश्क भी बढ़ जाते
2: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
0: आपके अपने रेनबो की जबानी।
1: सुनाओ प्यार की एक कहानी।
3: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
4: ये प्रूफ
5: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।

मिटा दो खुद को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो खुद को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आकांक्षा। इस्तकबाल करती हूं आपका प्रोग्राम सदाबहार गीत में।

बिल्कुल, जिस तरह से ये लिरिक्स इनोसेंट होते हैं ना, कि पहले जो लिरिक्स लिखे जाते थे, जो बोल लिखे जाते थे, वो बिल्कुल आपके दिल की बात रख देते थे, जैसे आपके दिल के हाल और उस वक्त जो देश के हालात होते थे वैसी बातें रखी जाती थी, क्योंकि उस वक्त इनोसेंट लोग बहुत होते थे, उनके मन में जो होता था वो सब कह देते थे। इसी के साथ, अगर कोई मेहमान है तो वो भगवान के बराबर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पुरानी किताबों में कहीं ना कहीं कैद है लेकिन हमारे दिलों में आज भी बसी हुई है। जब भी आप पलट के देखते हैं या फिर ऐसे इंसान से मिलते हैं जो उस वक्त का था, तो वो बताता है अपने किस्से, अपनी कहानियाँ। तो आज प्रोग्राम सदाबहार गीत में बस कुछ पुरानी यादों को टटोलेंगे, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई आज आप उस चीज़ को जब याद करते हैं तो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ और इसे होना भी चाहिए था आज भी, और काश हम अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें सिखाएं, बताएं। तो बस इन सारी बातों को जानने के लिए और सुनने के लिए और साथ ही साथ आप अपने एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करिएगा बताने के लिए, आपको यही रहना होगा हमारे साथ सदाबहार गीत प्रोग्राम में आकांक्षा के साथ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बेशक जब हम कुछ ऐसी यादों से जुड़ते हैं ना, तो चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है। जैसे कि अभी मैं खुद का एक बात याद कर रही थी कि किस तरह से अगर आपसे बात करूं कि पुरानी चीज़ों के बारे में बात करूं, तो वो बात कौन सी हो सकती है। आपको याद है जब आप अपने मम्मी पापा के साथ या किसी के साथ भी जाते थे, कभी मार्केट में जाते थे या किसी काम से जाते थे, तो आज के दौर में तो जैसे कि बच्चे मोबाइल ले लेते हैं या फिर कोई स्टोरी बुक ले लेते हैं, लेकिन उस वक्त पे क्या होता था कि ज़्यादातर अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो हमारे पेरेंट्स हमसे यही कहते थे कि तुम ये होर्डिंग्स लगी हैं इनको पढ़ते हुए चलो, स्पेलिंग्स अगर तुम अपनी सुधार सकते हो। कई कई सेंटेंसेस मिल जाते थे, बहुत से मुहावरे लोकोक्ति मिल जाती थी जिनको पढ़ के हमें बहुत सी नॉलेज हो जाती थी, और मज़ा तब भी आता था कि उसमें हम कंपटीशन भी कर लेते थे कि बताओ इसका मतलब क्या होगा, या फिर कोई इंग्लिश में सेंटेंस है तो उसका मतलब क्या होगा। ये बात बहुत असरदार थी। उस वक्त जो होर्डिंग्स और बोर्ड्स लिखे जाते थे उन पर बहुत ही कायदे की चीज़ें और बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ें लिखी जाती थी, क्योंकि वो एक सबब थी कि इसको पढ़ने वाला कुछ सीखेगा, शायद समझे।

और इसको पढ़ने वाला हर उम्र का हो सकता है। यही कुछ चीज़ें छोटी छोटी होती थी जो उस दुनिया को बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बनाती थी। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें आज भी हमारी जो आज की जनरेशन है उनको सिखानी चाहिए कि आप जो भी होर्डिंग्स हैं, जितनी भी हैं, आप उनको पढ़ते चलें, उनकी स्पेलिंग्स करेक्ट करते चलें। चीज़ों को हम अगर मज़ेदार बनाएंगे ना तो देखिए वो बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती हैं।

बिल्कुल। और जब आप बाजार से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं ना, तो पहले तो आप बड़े उससे चुनाव करते हैं कि भाई चीज़ तो खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ टीम टाम करके आप उसको कभी खूबसूरत भी बनाने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आकांक्षा कैसी बात कर रही हो, जब हम बाजार से खूबसूरत चीज़ लाए ही हैं तो फिर हम और मशक्कत और मेहनत क्यों करें उस चीज़ को और अच्छा बनाने में। लेकिन आपको बताएं, उस दौर के लोगों में ये चीज़, ये खासियत होती थी। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सदाबहार गीत में उस दौर की कुछ चीज़ों के बारे में जो आपकी यादों से जुड़ी हैं।

अभी कल वट पूजा थी तो मुझे याद आया कि उसमें पंखे का इस्तेमाल होता है, हाथ का बेना जिसे आप बोलते हैं। तो पहले के लोग, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, तो निर्भरता यही थी कि उनके हाथ में जो गर्मियों का साथी होता था ये बेना होता था। तो क्या करते थे कि इसके चारों ओर गोटा लगा देते थे, बहुत तरह तरह की डिज़ाइन लगाते थे, कभी लेस से, कभी फूलों का गोटा लगाते थे कपड़े का बना बना कर, और हवा में कोई कमी नहीं आती थी। दो चीज़ें थी इसके साथ, एक तो वो खूबसूरत लगे, दूसरा ये कि भाई कभी टूटे फटे ना, क्योंकि कहते हैं ना कि उनकी गर्मियों का जब लाइट नहीं आए तो उनका सहारा यही होता है। तो मानेंगे ना आप कि उस वक्त के लोग बड़े खूबसूरत होते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा काम करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि वो अपनी चीज़ को, चाहे कैसी भी हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, उसकी वैल्यू हो या ना हो, मगर उन्हें संवार के सहेज के रखना अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, इसमें हर चीज़ को संभाल के संवार के रखना पड़ता ही है।

जी हाँ, शहरी बाबू का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब भी हम यादों की बात करते हैं तो हमें गांव कैसे पीछे छूट सकता है। बिल्कुल, गांव में वो बरगद का पेड़ जो बहुत पुराना हुआ करता था, जिसकी छांव में हम सब पले बड़े, और आने वाली कई जनरेशन्स या बीत गई हैं जो जनरेशन, उन्होंने भी उस छांव का आनंद लिया है। बात यह कि गर्मी का सीजन है, और हम अगर बात करें कि जो हमारे पूर्वजों ने या फिर जो हमारे बड़े लोगों ने हमें बताया ना, कि अक्सर वो पेड़ों के पास बैठकर सिर्फ उसकी छाया या उसके फल का इंतज़ार नहीं करते थे, उनका बहुत बड़ा दोस्त हुआ करता था। अभी हाल ही में एक मैंने किस्सा देखा कि एक बहुत पुराना जब पेड़ काटा गया तो एक बुज़ुर्ग उस पेड़ के पास बहुत रोई बैठ करके। तो ये बताता है, ये हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से जुड़ी चीज़ों से कैसे जुड़े होते हैं, और न सिर्फ हम उनका इस्तेमाल करने के लिए बल्कि हमारा अपना एक लगाव होता है। इसीलिए तो हमारी संस्कृति में प्रकृति की कोई भी चीज़ हो उसको हम पूजते हैं, जैसे कि आप धागे बांधते हैं वृक्षों पर, जैसे कि आप जल देते हैं, ये कह के कि ये हमारी धार्मिक मान्यता है। मगर कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना कि आपको इसलिए जोड़ा जाता है धर्म से, ताकि आप उसकी प्रकृति की रक्षा करें, और जो हमारी रक्षा करता है वो माँ के समान होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि प्रकृति से जुड़े रहिए और उसे गंदा ना करिए। इन्हीं बातों के साथ जुड़ेंगे हम और एक प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

जी हाँ, और कुछ चीज़ें हम ना भूलें, या फिर वो पुराने लोग बहुत कोशिशें करते थे कि कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएं जिनको हम यादों के पिटारे में जब निकालें तो बहुत कुछ हमारे सामने आ जाए, वो वक्त फिर से लौट आए। क्योंकि भाई पहले के टाइम पे लोगों के पास आपकी तरह इस तरह से सेलफोन्स नहीं होते थे, उन्हें नहीं पता था कि पता नहीं ये वक्त कभी कैद हो पाएगा या नहीं, या हम इसे कैसे दोहराएंगे। तो वो लोग क्या करते थे कि उन यादों को तस्वीरों में ना कैद करके चीजों में कैद करने की कोशिश करते थे। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? वो ऐसे कि आज भी क्या आपके पास आपका पुराना वो बचपन का कपड़ा रखा हुआ है, कोई शूज का सेट या फिर कोई टोपी? बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके बचपन की होंगी, जब आपको सुध भी नहीं थी कि ये चीज क्या है, क्यों पहनाई जा रही है, किसके लिए है, लेकिन आपके गार्जियंस ने, आपके पेरेंट्स ने उसको संभाल के रखा होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि जब तुम बड़े हो तब इन सारी चीजों को देखो। तो ये खासियत थी उस दौर के लोगों की, भले ही जगहें कम हो लेकिन हाँ वक्त होता था अपनी की यादों को कैद में करने का। और उन यादों को अगर वो तस्वीरों में नहीं कैद कर पाते थे, वो इसी तरह से आपकी छोटी छोटी चीज़ों में उन चीज़ों को कैद कर लेते थे। उन्हीं में से आपको याद है कि बुराई का उस दौर में जब बाबा सूट बनते थे, आज हमें लगता है जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि ये बाबा सूट आज का फैशन है, लेकिन आपको बता दें कि बाबा सूट बहुत पुराना है। पहले के लोग इसे बनाते थे और एकदम टेडी बेयर जैसे बच्चे उसमें बड़े क्यूट से लगते थे, और आज भी इसको फॉलो किया गया। बहरहाल अब बुनाई में नहीं, लेकिन अब अलग अलग फैब्रिक्स आ गए, बहुत से डिज़ाइंस आ गए, लेकिन जो खूबसूरती उस दौर की है वो आज भी बरकरार है। तो बस इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ हम जुड़ेंगे, और आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको उन दौर की याद दिलाता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें लिखिएगा और हम शामिल ज़रूर करेंगे।

जी हाँ, होश तो तब उड़ते हैं जब हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं पुरानी, खाने में स्पेशली, तो हम कहते हैं अरे यार ये आज भी है। बिल्कुल जी, मैं बात करी उन कैंडीज की, आज तो बड़ी हाईफाई कैंडीज आती है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सी वेराइटीज आपको मिल जाएंगी, हर शॉप पे मिल जाएंगी, लेकिन उस दौर में कुछ सिलेक्टेड कैंडीज आती थी, और खासकर वो कंपट जिसमें फ्लेवर सिर्फ एक ही मिलता था। आज के टाइम पे आप अगर खरीदने जाएं उस कंपट को, तो आपको बहुत से फ्लेवर्स मिल जाएंगे, लेकिन उस दौर में उस कंपट का फ्लेवर सिर्फ एक ही होता था, और वो सबकी फेवरेट कैंडी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो ये कहे कि नहीं, वो कैंडी हमारी फेवरेट नहीं थी। मुझे तो आज भी दिख जाती है तो मैं खरीद लेती हूँ, और बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। अंत तक उसको पिघलाते रहना, चूसते रहना, और ना चबाने की कसम खानी, तो कुछ ऐसी ही यादें हैं पुरानी। इसी के साथ हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा मेल आया है। बबीता राव जी ने भी कुछ अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं और कह रही हैं कि 6 बजे से हमें सुन रही हैं, वॉइस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। पुष्पांजलि, सदाबहार गीत, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा इनको, और कहते हैं बेहतरीन, लाजवाब। अच्छा, ये कभी कभी अजीब लगता है, आप लिख कर भेजते हैं और हमें अपनी तारीफ पढ़नी पड़ती है, मन करता है किसी को बैठा दें कि जो आपने लिखा है वो हमें, आपको पढ़ के सुना दें कि आपने क्या लिखा है। और हाँ, ये बड़ा खूबसूरत लाइन लिखी है कि इतनी अच्छे तरीके से आप पेश करते हैं तो जैसा लगता है कि कोई पिक्चर का सीन चल रहा हो, बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। और कहती हैं कि मेरी मम्मी बास्केट, जी हाँ, डलिया बनाती थी, बेना बनाती थी, इन्हें याद है, और इन्हें तो बनाना नहीं आता, लेकिन जो बास्केट, जो डलिया थी, वो इतनी बढ़िया बनाते थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे भी याद है बबीता जी, मैंने भी वो डलिया देखी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम जब देखते हैं ना कि किसी बेकार चीज़ से कुछ इस्तेमाल की चीज़ कैसे बनाई जाए, तो बहुत से आर्ट एंड क्राफ्ट्स में हम सामान खरीदते हैं, फिर उसको बनाते हैं, रीयूज़ कैसा किया जाए, लेकिन उस दौर में पन्नियों से जोड़ जोड़ कर, जो पॉलीथिन्स आती थी उनको जोड़ जोड़ कर वो डलिया बना देती थी, हर चीज़ का, चाहे कपड़ा हो, बुनाई इतना हाथ में कला थी कि चाहे किसी भी चीज़ से उनमें एक नए रंग, नया तरीका और नई इस्तेमाल करने की चीज़ें जुड़ जाती थी। तो ये थी खूबसूरती उस दौर की, और ये चीज़ें जो भले यादों में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके गीत हमेशा हम गाएंगे।

जी हाँ, सफ़र खूबसूरत होते हैं तो मंजिल और भी शानदार लगती है। और बस देखिए, 7:55 हो चुका है और ये वक्त कह रहा है कि सदाबहार गीत से आकांक्षा को दीजिए अनुमति। मिलेंगे आपसे हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, और उससे पहले जी हाँ 8 आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और 8:15 एक दोस्त के साथ होंगे हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की।

0: दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने

0: उद्योगों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के

0: तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा कर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में

0: रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रतन आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। और वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा, कैसी हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग रतन, और सभी लिसनर्स को बहुत बहुत शुभ सुप्रभात। और जैसे कि हमने कहा था कि भाई वादे के मुताबिक एक दोस्त हमारे साथ रहेंगे, तो रतन हमारे साथ आ गए हैं बहुत ढेर सारा पेपर्स के साथ, बहुत ढेर सारी खबरें लाए हैं आपके लिए। और कह रहे हैं भाई आज बहुत कुछ बताने को है।
0: और एक बात बताएं, जब सुबह मैं आपको सुन रहा था तो वाकई में पूरा भक्तिमय माहौल आपने बना दिया पुष्पांजलि में, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और वाकई में जब इस तरह के भजन सुनने को मिलते हैं ना आकांक्षा
1: जी,
0: तो दिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है।
1: जी हाँ, थैंक यू सो मच। और यही हमारी कोशिश रहती है कि भाई हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो आप तक, आपके दिल से जरूर जुड़े। और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ आपके दिल से, आपकी शहर से, आपकी बहुत ढेर सारी खबरों के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर रहेंगे हाजिर रतन और आकांक्षा। कहीं जाइएगा नहीं, बस ये पहला सा गीत। और कहते ना कि एक जो सुबह होती ना, उस सुबह को सूट करता हुआ ये गीत है।
0: क्या बात है,

0: दोस्तों 8:22 का समय हो चुका है और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिसमें आज आपके साथ हैं आपके दो दोस्त रतन और आकांक्षा। और अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को आप तक पहुंचाया जाए। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है आकांक्षा?
1: जी हाँ, आज का मॉर्निंग मंत्रा कहता है, जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास जरूर आएगा।
0: जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात आकांक्षा आपने बताई। और वाकई में अगर आप दुनिया को अच्छा देते हैं तो आपके पास वापस लौटकर अच्छा ही आएगा। इसीलिए कहा जाता है, जो कुछ भी कीजिए पॉजिटिव कीजिए, अच्छा कीजिए। तो इस दिन की शुरुआत इस पॉजिटिविटी के साथ कीजिए कि आप लोगों के साथ अच्छा करें और आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। तो ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए आपके रेडियो सेट्स पर मैं भेज रहा हूँ, इसे एंजॉय कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: 8:29 हो चुका है और वक्त वक्त यूं चलता रहता है और वक्त और भी खूबसूरत हो जाता है जब बातें अच्छी हो भाई, बहुत ढेर सारा हमारे पास कंटेंट हो। तो बात यह है कि
1: और वक्त तब भी अच्छा रहता है जब बातें अच्छी होने के साथ साथ साथी भी अच्छे हों और हमारे लिसनर्स और भी ज्यादा अच्छे हों, है ना।
0: अच्छा, और रतन मैं अभी आज सदाबहार गीत जब प्रोग्राम कर रही थी तो देखिए आज क्या कोइंसिडेंस हो जाता है चीजों का कि आज मैं ये कह रही थी कि भाई पुराने जमाने के जो लोग थे ना, वो पहले उनके पास कैमरा नहीं होता था, फोन हमारी तरह नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, ऑब्जेक्ट्स में, चीजों में अपनी यादों को सजो कर रखते थे। और वो पुरानी चीजें आज भी वो कोशिश करते हैं कि वैसी की वैसी रहें ताकि वो अपनी जनरेशंस को दिखा सकें। संग्रह करके रखने की जो आदत है ना रतन, ये बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि इससे चीजों का भी इस्तेमाल होता है और यादें भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही। और वाकई में अगर संग्रहित की गई चीजें आज ना होती तो शायद हम लोग अपनी संस्कृति की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम परिचित ही ना हो पाते हैं। एक संग्रहालय ही होता है ऐसी जगह जहां पर हमें वो सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी विरासत से जुड़ी हुई होती हैं।
0: बिल्कुल, और आज हम बात संग्रह की इसलिए कर रहे हैं और कोइंसिडेंस यही हुआ कि भाई आज मैंने भी थोड़ी संग्रह की बात सदाबहार गीत में भी करी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस।
1: क्या बात है दोस्तों, आप सभी को आज के इस दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल यानी कि आज ही के दिन 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और ये दिन दुनिया भर के संग्रहालयों के महत्व को रेखांकित करता है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक उपलब्धियों को सहजते हैं।
0: बिल्कुल, और इस दिन विभिन्न संग्रहालयों में विशेष प्रदर्शनियां, सेमिनार्स और कई वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं लोगों को इतिहास के बारे में जानने के लिए, कला विज्ञान के बारे में। और अगर ऐसे ही जुड़े तो देखिए रतन, बहुत से ऐसे म्यूजियम्स बने हुए हैं जहां पर हम उन पुरानी चीज़ों को देखते हैं, याद करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा कदम पीछे करेंगे और हम अपने लोगों से, यानी कहें कि लिसनर्स से कैसे जुड़ेंगे, इस पर आज का मुद्दा कुछ ऐसा है।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का।
0: जी हाँ, मुद्दा आज का पूरे समाज का। आज हम आपको म्यूजियम में जाने के लिए नहीं कह रहे ना, बहुत तो बड़ी चीजों के बारे में बताने के लिए कह रहे हैं। अपने घर में, आपका घर भी छोटा

जानकारी देते हैं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तो संग्रहालय दिवस की आप सभी को, विश्व संग्रहालय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन में भी अगर आपको कुछ ऐसी मौका मिले और जैसे

जी हाँ, 8:35 और मुझे लग रहा था कि आपको उम्मीद होगी कि ये गाना सुन सकेंगे तू शायर, मगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ कि हम वो गीत आपको नहीं सुना पाए, लेकिन उससे भी बेहतरीन एक गीत आपके रेडियो सेट्स पर ना सुना पाने के लिए माफी। एंजॉय करते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: जी हाँ दोस्तों, 8:41 का समय और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। आपके दो दोस्त आकांक्षा और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, हमारे शहर में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पर तो हम आप की नजर वहां तक पहुंचाएंगे ही, और साथ में आज एक विशेष जानकारी और भी है जो कि आप तक पहुंचानी है, और वो क्या है?
1: जी हाँ, आपको बता दें कि भाई, अगर डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग सत्र 2025-26 के MSW दूसरे व चौथे सेमेस्टर के आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये खबर है। विद्यार्थियों को 20 मई को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी, और इसका जो समय दिया गया है वो 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक रहेगा, जिसके बाद कॉपी नहीं दिखाई जाएंगी। तो याद रखिए भाई, 11 से 1 बजे तक आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जांच कर देख सकते हैं।
0: अगर आपने अच्छा काम किया है या फिर आपने बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिखे हैं, तो आप जाके जरूर देखिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपने पाए होंगे। वैसे मैं जब भी लिखता था तो मुझे थोड़ा सा डाउट रह जाता कि मैं पूरा मतलब लिख के तो आया हूँ, मगर मार्क्स कितने मिलेंगे ये सोच सोच के मतलब हमारा पूरा मतलब दिन ही खराब हो जाता था। और अंत में जाके जब देखते थे तो हाँ, लगता था उम्मीद से ज्यादा मिल गया।
1: रतन, उस वक्त पे बहुत सी चीजें, आपको पता है कि मूल्यांकन का भी चीजें चेंज हुई है। जैसे कि पहले क्या होता था कि राइटिंग के, प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाते थे। आज होगा ये कहीं कहीं, मगर आज सबसे ज्यादा यही है कि अगर आपने कंटेंट सही लिखा है, ठीक है, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वहां तक सेटिस्फेक्शन हो जाता है लोगों।
0: और वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के परास्नातक के 10 और पाठ्यक्रमों के चौथे सेमेस्टर के परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। MSc कंप्यूटर साइंस चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 मई से 5 जून तक होंगी। MA पॉलिटिकल साइंस चौथे सेमेस्टर, MA MIH चौथे सेमेस्टर, MA लिंग्विस्टिक चौथे सेमेस्टर और MA इकोनॉमिक्स चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई से 3 जून तक आयोजित की जाएंगी। और इसी तरह MA कंपोजिट हिस्ट्री की परीक्षाएं 26 व 29 मई को, और MA अरेबिक चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से 5 जून तक, और MA अरब कल्चर एंड सिविलाइजेशन चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से 8 जून तक, MA MSc रिव्यूनल चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से 3 जून तक, और MA MCOM अप्लाइड इकोनॉमिक्स चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 से 17 जून तक संचालित की जाएंगी। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हमने आपको लगभग तो बता दिया, लेकिन अगर आप विशेष और पूरी जानकारी चाहते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिटेल्स में। और साथ में अगर आप उसको देखना भी चाहें या फिर उसकी जानकारी को अपलोड करना चाहें तो पूरी तरह से आप कर सकते हैं, अपलोड कर दी गई है और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारियां हैं, और आप पूरी तरह से अपनी तैयारियों में लगे रहें ताकि बहुत अच्छे नंबरों के साथ आप उत्तीर्ण हो और भी अपना और अपने शहर का नाम रोशन करें। और हमारे साथ आप इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी बातें तो हम लगातार आपके साथ कर ही रहे हैं,
1: लेकिन
0: कोशिश हमारी ये भी है कि जो भी गीत हम आपके लिए प्ले करें वो बहुत अच्छे प्ले करें, जो कि हम आपके लिए लगातार प्ले कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने

0: सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आठ बज के 51 मिनट और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ। रतन और आकांक्षा हैं आपके साथ। और भाई, हमने आज आपसे पूछा था कि क्या क्या बजा कर रखा है आपने उन पुरानी चीजों को। बहुत बड़े पे मत जाइएगा कि आप विरासतें मत गिनाइएगा हमें कि ये जमीन ये जायदाद और ये तिजोरियां, ये सब नहीं जानना हमें, छोटी चीजों को जानना है।
2: आकांक्षा, एक बात हम आपको बीच में रोक रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या कुछ ऐसा संग्रहित करके रखा है जो लगता है आपको कि हाँ, ये आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां होंगी या फिर हमारे जो आगे आने वाले जितने भी लोग होंगे वो देखें, इनको समझें, जानें, इनको पहचाने।
1: बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि पहले के जमाने में सिंदूरदानियां, जो सिंदूरदानी यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे बक्से आते थे, उन्हें बहुत सी आप मसाले रखे, आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज रखे, तो वो मेरे पास आज भी रखी हुई हैं, जो मुझे मिली थी अपने किसी घर के मेंबर से। और फिर उसके बाद खासियत देखिए, आज भी उसमें कोई भी ना क्रैक है, ना कोई लकड़ी में खराबी आई है, और वैसी की वैसी वो छोटे छोटे डिबिया रखी हैं। ऐसे कहें कि कजरोटा जो पहले के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो भी हमारे पास वो चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भी हमारे पास रखा हुआ है। तो ऐसे ही आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, छोटी छोटी विरासत
2: है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्चुअली ये एक वॉच है, बहुत पुराने जमाने की है, और वो आज भी चलती हुई कंडीशन में है, क्योंकि वो हमारे जो बाबा थे उन्होंने यूज किया, उनसे पहले उनके जो पिताजी थे उन्होंने यूज किया, तो वो तब से चली आ रही है। और उसमें जानते हो आज भी उसमें चाबी भरनी पड़ती है।
1: अरे वाह। और वो उस टाइम की जो चाबी भर के वॉच चलती है,
2: उस समय की वो वॉच है, और आज भी वो उसी तरह से संजो के हम लोगों ने रखी हुई है। और बिल्कुल मतलब एक यूनिक पीस वो बन गया है हमारे घर का। और जो भी कोई आता है, जैसे तो कभी बातचीत होती तो हम लोग दिखाते भी हैं कि देखो हमारे पास ऐसी यूनिक चीज है जो इतनी पुरानी है।
1: बिल्कुल। और आप देखेंगे ना, कभी कभी कुछ लोगों के घर का जो मेन डेकोर होता है वो इन्हीं पुरानी चीजों से होता है। बहुत संग्रह, छोटी छोटी मछियां आपको देखने को मिलेंगी, बास्केट्स प्यारी प्यारी दिखेंगी, बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे, तो वो बताते कि ये इस काम का आता था। पानदान को भी आजकल लोग सजा कर रखने लगे, भले उसमें कुछ और रखे या खाली रहे, लेकिन डेकोर करते हैं उस चीजों से। तो हमारी लिसनर्स ने भी बहुत कुछ भेजा।
2: और अच्छी चीज आपको बताएं कि आजकल कई हमने ऐसी पार्टीज देखी हैं कि उनमें ये जो पुरानी एंटीक पीस होते हैं उनको वहां पे डेकोरेट करके रखा जाता है, और लोग वहां पे आते हैं, उन एंटीक पीसेस को देखते हैं, वहां पे खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, उनके साथ फोटोज खिंचाते हैं। तो ये जो एक शौक है, या फिर एक कहें एक जो एक्साइटमेंट है, जो एक उत्सुकता है, वो लगातार बढ़ती है जब इस तरह की चीजें हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि क्या ऐसा भी इससे पहले होता था और ऐसी भी चीजें हुई हैं।
1: बिल्कुल। और रतन, अगर हम अपनी बातें तो हमने बता दी, क्यों ना चाहते लिसनर्स की भी बात जान लें कि भाई वो क्या हमसे कह रहे हैं। सोनू परवाना जी का मेल हमारे पास आया है। और कोई भी व्यक्ति अपने पास तीन कारणों से आता है।

0: भाव से, अभाव से, प्रभाव से। यदि भाव से आया तो प्रेम दो, अभाव से आया तो मदद करो, प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी। परमात्मा खुश, आप खुश, हम खुश। थैंक यू सो मच इस पॉजिटिव थॉट के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: क्या लिख रही हैं
1: आंचल सेठ? लिख रही हैं कि जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट ना हो।
0: अभी ये पॉजिटिव थॉट्स का दौर चल रहा है और हम चाहेंगे कि मुद्दे पर आप जरूर लिखें।
1: बिल्कुल आंचल सेठ, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिसपुर से आपकी मेल हम तक पहुंची। और मोनू सेठ क्या लिखते हैं? रतन भैया जी नमस्ते, और मैम जी आपको भी नमस्ते। रतन भैया, पुष्पांजलि में आपको याद कर रहे हैं, कई दिनों से आत्म अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो लोग बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करते हैं उनकी आयु, ज्ञान, प्रसिद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और बहुत कुछ आप अच्छा और पॉजिटिव हमें भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मेल के लिए।
0: राजेश वर्मा, गुड मॉर्निंग आपको भी। थैंक यू सो मच प्रोग्राम सुनने के लिए। बंजन उत्तर प्रदेश से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। राम मोहन गुप्ता जी और लिख रहे हैं कि जी गीत तो दूसरे दिए हैं सुनाए, टेक्निकल समावश आज का मुद्दा सुन नहीं पाया। अच्छा, समस्या बस ये आज का मुद्दा नहीं सुन पाए, इसलिए बहुत जरूरी है एक बार फिर से मुद्दा बता दें। तो मुद्दा आपको हमने बताया कि आज हम विश्व संग्रहालय दिवस मना रहे हैं, जिस पर हमने आपसे पूछा था कि आपने अपनी कौन सी पुरानी चीजों को संग्रह करके रखा है और कैसे रखा है, क्या प्रिकॉशंस आप लेते हैं, उनके बारे में हमसे शेयर करें। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।
1: 8:56 का समय और मदन गुप्ता साहब लिखते हैं कि सुनने में कुछ हास्यास्पद लगेगा, परंतु मुझे याद है मेरे घर में मेरी मम्मी द्वारा पुराने कपड़ों की तकिया बनाई जाती थी जो कई कई सालों तक चलती थी। अभी करीब एक साल पहले मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें मेरे बचपन के कपड़े भरे थे, जिसे देखकर पुरानी यादें ताजा कर हो गई। इसी प्रकार मेरे मकान में दो छतियां थी जिसमें पुराने सामान रख दिए जाते थे। अब जब हम लोग उसे उस पर चढ़कर देखते हैं तो 50 साल पुराने सामान उसमें रखे मिलते हैं, जिन्हें देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इस प्रकार पुराने लोग जाने अनजाने सामानों को संग्रहित कर लेते थे। वाकई में ये जो पुरानी यादें हैं हम लोगों के लिए बहुत एक्साइटमेंट देने वाली होती हैं और बहुत सारी हमारी यादें इनसे जुड़ी होती हैं और हमारी यादों को वो उन गलियारों में ले जाती हैं जहां हमने कभी इन चीजों को देखा था और इनको छुआ था, इनको महसूस किया था।
0: बिल्कुल रतन, और इन यादों पे और भी बातें होती रहेंगी। बहरहाल 8:57 और ये वक्त कह रहा है कि प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये पहला घंटा वाइंड अप किया जाए, उसके बाद मिलेंगे आपसे और भी गीतों के साथ और भी बातों के साथ। तो बस बने रहिए यहीं पे ओनली 100.7 FM रेडियो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, प्रातः के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अनुदेशकों के सम्मान समारोह में कहा कि 20,000 से अधिक अनुदेशकों और नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ेगी। लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने इस खबर को अपनी लीड बनाते हुए इस पर शीर्षक दिया, 11,508 शिक्षकों की भर्ती होगी। समाचार पत्र अमर उजाला इस पर लिखता है, प्रदेश में 11,500 शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों की होगी भर्ती। हिंदी दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत ने इस खबर पर लिखा, 20,000 नए शिक्षक अनुदेशक बेसिक शिक्षा को बनाएंगे मजबूत योगी। समाचार पत्र अमृत विचार इस खबर पर लिखता है, बच्चों से श्रमदान कराने पर शिक्षकों को दंड नहीं, सम्मान दें योगी। हाईकोर्ट के आदेश पर भारी हंगामे और विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने कल रविवार को लखनऊ कलेक्ट्रेट के आसपास बने वकीलों के चैम्बर व अवैध दुकानों को ढहा दिया। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, वकीलों का कब्जा हटाने पर बवाल। समाचार पत्र स्वतंत्र भारत इस पर लिखता है, लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज। दैनिक जागरण ने लिखा, वकीलों के 100 अवैध चैम्बर ध्वस्त। अमर उजाला इस पर लिखता है, अवैध चैम्बर हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर वकीलों का पथराव, लाठीचार्ज। प्रदेश में 20 मई से गर्मी और सख्त तेवर दिखाएगी। प्रदेश के आधे से अधिक ज्यादा शहरों में लू चलेगी। मौसम से संबंधित खबर को स्वतंत्र भारत ने प्रमुखता से स्थान दिया है, जिस पर अखबार ने लिखा, यूपी @45 आसमान से बरसी आग। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दो प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पेपर तैयार करने वाला पूरा पैनल जांच के दायरे में है। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, नीट प्रश्न पत्र बनाने वाला पूरा पैनल जांच के दायरे में। स्वतंत्र भारत ने इस पर लिखा, नीट पेपर लीक मनीषा मंधारे 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर। राज्य मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में नए और प्रोन्नत मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस खबर पर समाचार पत्र दैनिक जागरण ने लिखा, भूपेंद्र को एमएसएमई और मनोज को खाद्य रसद विभाग मिला। अमर उजाला इस पर लिखता है, भूपेंद्र को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य विभाग। समाचार पत्र अमृत विचार लिखता है, सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा। स्वतंत्र भारत ने इस खबर पर लिखा, नए मंत्रियों को विभाग आवंटित। अमृत विचार ने इस खबर पर लिखा, सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा। सीएनजी की कीमतों में रविवार को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। इस खबर पर अखबार ने लिखा, सीएनजी अब 1 रुपये और महंगी। अहमदाबाद में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी फैजान सलमानी मामले में एनआईए की जांच टीम जांच के लिए रामपुर जिले की नगर पंचायत नरपत नगर पहुंची। इस खबर पर समाचार पत्र अमृत विचार ने लिखा, एनआईए ने संदिग्ध आतंकी फैजान और उसके दोस्त मुकीम का घर खंगाला। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
6: जी हाँ, वेलकम बैक। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ का सेकेंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और अगर आपकी मॉर्निंग नहीं हुई है तो भाई उठ जाइए, क्योंकि बहुत कुछ आप मिस कर चुके हैं और मिस कर देंगे।
7: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस प्यारी से सुबह में मरतन और मेरे साथ आकांक्षा, हम दोनों आप सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। पिछले घंटे आपने हमारा भरपूर सहयोग दिया, साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस घंटे भी बस हम दोनों यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से हमारा साथ निभाएंगे, है ना आकांक्षा?
6: बिल्कुल, और साथ निभाने के लिए कहते ना कुछ भाई, इनको कंटेंट देना पड़ेगा, तो कंटेंट ये होता है कि हम मुद्दा आपको देते हैं जिसपे आप अपनी राय रखते हैं। तो आज का मुद्दा हमने वर्ल्ड म्यूजियम डे से रिलेटेड था, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि आप अपने घर में क्या छोटी छोटी चीजें संग्रह करके रखी हैं, पुरानी चीजों को, और कैसे रखा है ये भी हमसे बताया fmakashwani@gmail.com पर।
7: तो बस हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बचकर नॉमिनेट का समय प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ आपके दो दोस्त रतन और आकांक्षा आपके साथ। और दोस्तों गुड मॉर्निंग लखनऊ में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपसे हमसे डायरेक्टली रिलेट करती हुई होती हैं। और चूंकि आज का मुद्दा भी हमारा कुछ ऐसा ही है और मुद्दा भी हमने आपको भी बता दिया थोड़ी देर पहले, तो आप अपने विचार अपनी बातें आज हम तक शेयर कीजिए, हमें आपकी ईमेल्स का इंतजार है। और वहीं दोस्तों अब आपको एक बहुत खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जानकारी ये कि जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को एम्बुलेंस की जरूरत जरूर पड़ती, क्यों
1: एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है और कब कौन सी एम्बुलेंस को बुलाना है, किसका क्या नंबर। जैसे 108 तो बहुत कॉमन सा नंबर है और हर किसी को लगभग पता ही है कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी आए, मेडिकल इमरजेंसी आए, तो 108 हम डायल कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसमें भी कैटेगरीज हैं, क्या इमरजेंसी है उसके हिसाब से आपको एम्बुलेंस का नंबर पता होना चाहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसा कि अभी आकांक्षा ने आपको बताया कि 108 जो नंबर है ये एम्बुलेंस का नंबर है, 102 भी एम्बुलेंस का ही नंबर है। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों एम्बुलेंस के नंबर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो 108 जो नंबर है वो अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को भी इमरजेंसी हो गई, हार्ट अटैक हो गया या पैरालिटिक अटैक हो गया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, तो आप 108 नंबर पर डायल करेंगे। लेकिन वहीं अगर एक इमरजेंसी किसी गर्भवती महिला के साथ हो जाती है, प्रेग्नेंट महिला के साथ हो जाती है, तो आप क्या 108 नंबर मिलाएंगे? नहीं, उस वक्त आप 102 नंबर डायल करेंगे, क्योंकि उस एम्बुलेंस में वो सारी सुविधाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं जो कि एक प्रेग्नेंट महिला के लिए उस वक्त जरूरी होती हैं। तो ये जो सुविधाएं ये 102 नंबर की जो एम्बुलेंस होती है उसमें होती हैं। और 108 अगर आपको कोई ऐसी एक्सीडेंटल या कोई ऐसी नॉर्मल फिजिकल या प्रॉब्लम ऐसी आती है, तब आप 108 नंबर डायल कर सकते हैं। और वहीं अगर किसी का एक्सीडेंट हाईवे पर हो जाए,
1: अगर आपका एक्सीडेंट हाईवे या नेशनल हाईवे, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई देखिए अगर आप इतना डिफरेंस बता रहे हैं, तो अगर कोई भी एक्सीडेंट आपको हाईवे पे दिखता है, अगर आपको हेल्पलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपको डायल करना होगा 1073।
0: जी हाँ।
1: और अगर यही चीज, यही एक्सीडेंट अगर नेशनल हाईवे पे होती है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर जो है 1033 पे हेल्प मांगनी होगी।
0: जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप हाईवे पे 102 या 108 डायल करेंगे तो शायद वहां पे आपको ना मिल पाए एम्बुलेंस। इसलिए अगर हाईवे पे कोई भी एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंटल केस होता है, आप वहां पर देखते हैं, आप एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर 1073 पर आपको कॉल करना होगा और आपको एम्बुलेंस और सहायता जरूर मिलेगी। और वहीं अगर नेशनल हाईवे पे अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, एक्सीडेंटल केस दिखता है या एक्सीडेंट होता है, आपका भी होता है, किसी और का भी होता है, तो आप हेल्प के लिए 1033 डायल कर सकते हैं, आपको तुरंत मदद दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिन्हें आपको नोट जरूर कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप समय आने पर इनका यूज कर सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें।
1: बिल्कुल, और मदद करने के लिए आपको ये नंबर्स और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहरहाल हमने तो आपको जानकारी दे दी, और मैंने जैसे पहले ही कहा था कि रतन बहुत ढेर सारा कंटेंट लेके आए हैं, तो कुछ ऐसी बातें हमारे पास और भी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक प्यारा सा ट्रैक आपकी रेडियो सेट्स पर।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री

0: क्षेत्र तुम्हें चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 9:19 प्रोग्राम चल रहा है, गुड मॉर्निंग लखनऊ। दो दोस्त हैं आपके साथ, रतन और आकांक्षा, और आप हैं हमारे साथ या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमें मेल करना होगा हमारे मुद्दे पर कि आप उन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं उनको बचा कर रखते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और रतन, हम देखते हैं ना कभी कभी किसी किसी घर में वो चक्की जो पहले हम आटा आटा वगैरह
1: पीसते
0: थे, चकिया, हाँ गलत कहा मैंने, चकिया किसी किसी के घर में आज भी रखी, भले इस्तेमाल ना हो। और सबसे बड़ी बात, आज जैसे कि बड़ी जो कुम्हार के बर्तन बनाने वाली जो मशीनें हैं, आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें आ चुकी हैं, उसमें आप मतलब बैटरी के हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन पहले जो चलता था वो उसी चकिया जैसी कोई चीज होती थी जिसपे रख करके कुम्हार अपने घड़े वगैरह बनाता था। वो भी चीजें आज कई लोगों ने अपने घरों में सेव करके रखी हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारी ऐसी एंटीक चीजें हैं जो आज भी लोगों ने संग्रहित करके अपने घरों में संजो कर रखी हुई हैं, बहुत सारी यादों के रूप में, बहुत सारी ऐसी बातों के रूप में जो उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हुई। और आज आपको हमें यही बताना है, चूंकि आज का दिन अपने आप में बहुत खास है, आज 18 मई का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ आज एक और महत्वपूर्ण घटना भी घटित हुई थी जिसके लिए आज का दिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस की। जी हाँ, आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष यानी कि 18 मई को ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था। दोस्तों, इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद वर्ष 1998 में भारत ने 11 मई व 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था।
0: जी हाँ, और आपको बता दें, अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह गए थे, और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण एक कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी थी। तो ये कुछ छोटी छोटी कामयाबी, छोटी क्या कहें कि बहुत बड़ी कामयाबी हमारे देश का नाम रोशन करती है, और बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स से ये कुछ कारगर चीज़ें हासिल होती हैं। तो इसकी भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, चमकता रहे, और हमारा योगदान उसमें बराबर का हो।
1: जी हाँ दोस्तों, 9:22 का समय हो चुका है, बहुत सारी और भी बातें हैं आज के इस प्यार से शो पर। आपकी मेल्स का भी सिलसिला लगातार जारी है और वो हम तक पहुंच भी रही हैं, कुछ मेल्स हमने अभी शामिल कर ली, कुछ मेल और हैं जिनको हम ज़रूर ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन आप मेल भेजने का जो सिलसिला है वो मत रोकिएगा, वो लगातार हमारे साथ हमारे पास आप भेजते रहिएगा, हम आपकी मेल्स का लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए, और उसके बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बातें आज के गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
1: बिल्कुल दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर और हम आपके साथ हैं, यानी कि मैं रतन और मेरे साथ हैं आकांक्षा।
2: जी हाँ, और चलते हैं आपको ट्रैफिक अपडेट की जानकारी देने के लिए कि शहर में आज ट्रैफिक का क्या है हाल। इसके लिए आपको ले चलते हैं हम TSI विकास सिंह जी के पास।
1: विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है सर। सर, आपके माध्यम से अवगत करा

0: सेंट्रम होटल में अमर उजाला का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है
1: जी।
0: इस दौरान बड़ा कार्यक्रम होने के नाते जो है कुछ देर के लिए लगभग 11 बजे जो है अहिमा मऊ चौराहे के पास में थोड़ा देर के लिए ट्रैफिक को रोका जाएगा और मात्र 5-10 मिनट का ये रहेगा। तो इस दौरान यदि अति आवश्यक न हो तो अगर आप 11 बजे अहिमा मऊ चौराहे का जो है यूज आप करना चाह रहे हो तो आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें तो ज्यादा उचित रहेगा। और दूसरी तरफ आप अगर बात करें तो शाम को 4 बजे लोक भवन में कार्यक्रम प्रस्तावित होने के नाते लोक भवन के आसपास का जो डायवर्जन रहता है वो रहेगा हमारा, जैसे हजरतगंज से लोक भवन ये मार्ग जो है यातायात हेतु प्रतिबंधित रहता है। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग जो हमारा रहता है उस वैकल्पिक मार्ग का हम प्रयोग कराते हैं। ग्रीन कॉरिडोर ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करने की सलाह दी जा रही है ताकि आपको कहीं भी जाने आने में असुविधा का सामना न करना पड़े। लखनऊ फैजाबाद मार्ग, लखनऊ अयोध्या मार्ग हमारा थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट रहता है जब हमारा पीक आवर्स चलता है और ये पीक आवर्स का समय है, तो ऐसे में हमारा जो कमता चिन्हट मटियारी वाला मार्ग है ये पॉलिटेक्निक से ये थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट रहता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा लखनऊ अगर कानपुर की बात करें तो बारा बिरुआ के पास में थोड़ा सा प्रेशर रहता है और लखनऊ सीतापुर मार्ग पर मड़ियाओ के पास में, तो ये हमारे ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट है। यदि इस मार्ग का आप प्रयोग करें थोड़ा सा घर से जल्दी निकले ताकि आपको असुविधा ना हो।
1: और सर जैसे कि आप हमेशा हमारे दोस्तों से कुछ खास बात कहते हैं प्रत्येक दिन, बताइए आज क्या कहने वाले हैं कुछ खास?
0: बिल्कुल सर, मैं यही अनुरोध करूंगा सभी श्रोताओं से कि जैसे अब अगर मार्केट जा रहे हैं आप और या कहीं खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं
1: जी,
0: तो अपने वाहन को ऐसी जगह जो है पार करें जिससे कि दूसरे जो व्यक्ति हैं जो रोड यूजर हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो आप जो है पार्किंग नियमों का पालन करें, पार्किंग में ही अपने वाहन खड़ा करें, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।
0: जी धन्यवाद सर।
1: दोस्तों विकास सर ने तो बता दिया कि आपको अगर उन रूट्स पर जाना है जहां पर ट्रैफिक जैम है वहां पर आपको अपने वैकल्पिक मार्गों का यूज़ करना चाहिए, और अगर आप कभी भी ऐसी कोई जगह जाते हैं जहां पर आपको कोई मॉल है या फिर ख़रीदारी करने आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की पार्क अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर आपके साथ साथ किसी अन्य को भी असुविधा ना हो। तो दूसरों का आप जब तक ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आप को भी पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल सकती, इसलिए दूसरों की सुविधा का विशेष ध्यान रखिए ताकि आपको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो।
2: जी हाँ, और इसी के साथ छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक, फिर उसके बाद एक प्यारा सा ट्रैक और बहुत ढेर सारी बातों के साथ हम जुड़ेंगे आपसे।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
2: MK बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, रतन और आकांक्षा है आपके साथ, और हर दिन अपने आप में खास होता है। जैसे कि आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में बात करी, पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस के बारे में भी बात करी, और आज एक और चीज बहुत खास है, वो है 18 मई को आज ही के दिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, जिसे एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। और ये दिन एचआईवी एड्स के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन की खोज के महत्व को उजागर करता है, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों को सलाम करता है। और आपको बता दें कि अभी कोई वैक्सीन है तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। और इस दिन दुनिया भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो एचआईवी की रोकथाम, सुरक्षित व्यवहार, वैक्सीन शोध के बारे में जानकारी फैलाते हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एड्स के प्रति सचेत रहें, भ्रांतियों को दूर करें और वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करें।
2: और दोस्तों, इसी विषय पर और ज्यादा और खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय सोलंकी, ज्वाइंट डायरेक्टर केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सीएसटी, उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी लखनऊ से। चलिए करते हैं उनका स्वागत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
3: सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी,
3: 18 मई का दिन संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है।
2: जी,
3: जिसे एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है।
2: जी,
3: इसकी शुरुआत 18 मई सन 1997 में यूएस के तत्कालीन प्रेसिडेंट
2: जी, सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे पास। हेलो सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? दोस्तों, हो सकता है कुछ तकनीकी समस्या की वजह से डॉक्टर साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम उन्हें पुनः कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि

0: ये जो दिवस है अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस दिवस की खास बात यह है कि अभी जैसा कि आपको आकांक्षा ने बताया कि अभी एचआईवी की जो वैक्सीन है उसका जो है पूरी तरह से खोज नहीं हो पाई है और वो खोज लगातार जारी है। और अभी डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जब जुड़े उन्होंने इसकी जो शुरुआत की वो भी यहीं से की। चलिए डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पुनः स्वागत करते हैं। सर आपका पुनः स्वागत है।
1: तो सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 18 मई का दिन संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है
0: जी,
1: जिसे एचआईवी वैक्सीन एवेंजर से भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 18 मई सन 1997 में यूएस के तत्कालीन प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन द्वारा मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच से होती है
0: जी।
1: जिसमें उन्होंने एक संकल्प लिया था, समस्त विश्व के वैज्ञानिकों का आह्वान किया था कि अगले 10 वर्षों में एड्स से बचाव का टीका तैयार करने की चुनौती दी थी और कहा था कि एक वास्तविक प्रभावी और बचाव करने वाला टीका ही एड्स के खतरे को सीमित कर सकता है
0: जी, बिल्कुल,
1: और अंततः इसे जड़ से खत्म कर सकता है। इसी स्पीच में लिए गए संकल्प की याद में 18 मई सन 1998 को पहला वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया था
0: जी।
1: वो परंपरा आज तक चली आ रही है। इस दिवस के माध्यम से एचआईवी से बचाव की वैक्सीन तैयार करने में कार्यरत विश्व स्तर के साइंटिस्ट, वॉलंटियर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स के प्रति हम लोग आदर सम्मान प्रकट करते हैं और एचआईवी की वैक्सीन के महत्व के बारे में जनमानस में जन जागरूकता का प्रसार करते हैं
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक एचआईवी संक्रमण से उत्पन्न बीमारी एड्स का कोई भी कारगर इलाज नहीं हो पाया है और ना ही इसकी कोई कारगर वैक्सीन तैयार हो सकी है
0: जी।
1: इस वैक्सीन की तैयार करने में जो हमारे विश्व लेवल के साइंटिस्ट, वॉलंटियर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, उनके मान सम्मान और आदर को प्रकट करते रहेंगे हम लोग हर वर्ष 18 मई को इस दिवस को मनाते रहेंगे। और मिस्टर बिल क्लिंटन द्वारा लिए गए संकल्प को याद करते रहेंगे और जब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस दिवस को मनाते रहेंगे और जन मानस को जागरूक करते रहेंगे।
0: तो सर जितने भी अभी अगर ऐसे पेशेंट्स जो इस वक्त आपको और हमें सुन पा रहे हैं जो कि इस खतरनाक और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आप उनके लिए क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां बताना चाहेंगे, प्लीज बताइए सर।
1: इसमें यही है जो कि जैसे सभी भली बात जानते हैं कि इसका अभी तक इलाज संभव नहीं है लेकिन इसका मैनेजमेंट संभव है
0: जी।
1: जैसे कि अन्य बीमारियां होती हैं, सपोज दैट हाइपरटेंशन, डायबिटीज के मरीज होते हैं, ये भी प्रतिदिन दवाई लेते रहते हैं लॉन्ग लाइफ और अपना जीवन संपूर्ण जीवन आप स्वस्थ और लॉन्ग लाइफ जीते रहते हैं
0: जी।
1: इसी तरीके से एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति भी लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट लेते हुए जो अभी तक इलाज संभव है, दवाइयां हैं वो उसको लेते हुए वो अपना संपूर्ण जीवन स्वस्थ और पूरा जीवन जी सकते हैं। बस कमिटमेंट ये करना पड़ेगा उनको, प्रतिदिन दवाई लेते रहना है
0: जी।
1: और इसका जो ट्रांसमिशन होता है, जो जैसे बीमारियां फैलती हैं, जो चार ही तरीके हैं, उन तरीकों से सुरक्षित रहना है आपको, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध, साझा सुई का इस्तेमाल, संक्रमित खून या अवयव के ट्रांसफ्यूजन से, और संक्रमित गर्भवती माँ से बच्चे में इसका ट्रांसफर होता है, तो इससे बचाव के लिए आपको पूरे प्रयास करते रहने हैं। तो इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है, क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन इजाद नहीं हो जाता है, जब तक इसका कारगर इलाज इजाद नहीं जाता है, तब तक
0: बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका कहेंगे। और वाकई में दोस्तों पूरे हमारे भारत समेत पूरे विश्व के जो डॉक्टर्स हैं इस विचार में लगे हुए हैं कि इस बीमारी से किस तरह से बचा जाए और इसकी वैक्सीन को कितनी जल्दी इजाद किया जाए। और हम सभी आप सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसका ऐसा वैक्सीन निकले जिससे इसका इलाज पूरी तरह से संभव हो सके। सर आप हमारे साथ जुड़े और आज के इस दिन पर आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।
2: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय सोलंकी जी, जॉइंट डायरेक्टर केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी लखनऊ से, जिनसे हमने बात करी कि भाई देखिए वैक्सीन तो अभी नहीं है लेकिन कोशिशों को

याद करने के लिए और ये प्रयास और भी निरंतर रहें, इनको सराहने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो बस ऐसे ही दिनों के साथ, ऐसी बहुत ही खास बातों के साथ आप रहेंगे हमारे साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।

0: दोस्तों, आपको जज्बातों को जरूर जगाना है और हमारे साथ इसी प्यार इसी मोहब्बत के साथ रहना है, यानी जुड़े रहना है एफएम रेनबो के साथ। और दोस्तों, अब अपनी इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश सर, मौसम की पूरी और तरोताज़ा जानकारी देने के लिए। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और उनसे लेते हैं जानकारी आज के मौसम की, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। जी सर।
1: जी, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग सर, और प्लीज बताइए आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला है।
1: जी, मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, तेज धूप खिली रहेगी। कुल मिलाकर अब यहाँ से अगले 4-5 दिन थोड़ा अलर्ट रहने की संभावना है, मतलब अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि तापमान बढ़ चुका है काफी पिछले 2-3 दिनों में, और फिलहाल 2-3 डिग्री अभी और बढ़ने की संभावना है आने वाले अगले 2-3 दिनों में। तो कुल मिला के है तो गर्मी चरम पर है, हमको इसमें बचाव रखने की संभावना है। इसी के चलते जो सदर्न पोर्शन है, यूपी का जो साउथ वाला इलाका है, बुंदेलखंड, प्रयागराज डिवीजन, आगरा डिवीजन

0: वहाँ पे लू का अलर्ट जारी है।
1: अच्छा, लू का अलर्ट जारी है। और लखनऊ में सर, अगर हम बात करें तो लखनऊ में क्या लू का या फिर कोई ऐसा आंधी या जो है?
0: नहीं, लू का कोई अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन हालांकि तापमान अपने सामान से 2 से 3 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है, तो हमको बचाव रखने की आवश्यकता,
1: बचाव करने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौसम की इतनी अच्छी और तरोताजा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
0: ओके, धन्यवाद।
1: दोस्तों, दानिश सर ने तो बता दिया कि भैया अपने आप को थोड़ा सा बचाव करके रखना है, क्यों आकांक्षा?
2: बिल्कुल, बच के रहना है और एंटरटेनमेंट से नहीं बचना है, क्योंकि इसका पैकेज आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलता है।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
9: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
8: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
9: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
7: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन

0: डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और वहीं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हम कैसे भूल सकते हैं, उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
1: जी हाँ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। अगर खास है दिन आपका और इस दिन को खास बनाने के लिए कौन है आज जिनका जन्म हुआ आज के दिन, उनके बारे में भी आपको बता दें कि आज के दिन वेंकट रमन राधाकृष्णन एक प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिकविद थे जिन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अमूल योगदान दिया। 18 मई 1929 को जन्मे राधाकृष्णन ने न्यूट्रॉन तारों और अंतरिक्षीय धूल पर गहन शोध किया। वे भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के निदेशक रहे और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अध्यक्ष पद तक पहुंचे।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत बड़ी बड़ा व्यक्तित्व और बहुत बड़ा अगर हम कहें तो व्यक्तित्व जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहराम जी मालाबारी, जिनका जन्म आज ही के दिन 1853 में हुआ, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, कवि और पत्रकार थे दोस्तों, जिन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर नामक पत्रिका निकालकर सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मालाबारी ने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। उनकी कविताओं और लेखों ने लोगों को जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनका जीवन समाज सेवा और न्याय के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है और आज इनकी जन्म जयंती पर हम इन्हें नमन करते हैं और इनके इस योगदान के लिए हम इन्हें वंदन भी करते हैं कि इन्होंने समाज को सुधारने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज आप इस महान व्यक्तित्व के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, 9:56 का समय हो चुका है, लगातार मेल्स भी हमारे पास आ रही हैं और आपकी मेल्स को पढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको भी हम जरूर जरूर शामिल करेंगे। हमारे पास अगली मेल आ चुकी है, किनकी, सदानंद की मेल आई है और इन्होंने हमें मेल में भेजा है कि इनकी पसंद का गाना हम प्ले कर दें, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद जब हमारा प्रोग्राम होगा जिसमें आपका फरमाइशी गीत बजाए जाते हैं उसमें हम जरूर प्ले करेंगे। जावेद अख्तर साहब की मेल हम तक पहुंची है, रतन और आकांक्षा जी को हम अपने खुशनुमा अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं, कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हम बहुत जब छोटे थे तब हमारी मम्मी जो हमारे यहाँ बनारसी साड़ियाँ बनती हैं उस साड़ियों के जो टुकड़े बचते थे उन कपड़ों के तकिए के गिलाफ हाथों से पंखे बहुत सी चीज़ें आज भी एक यादगार हमारे पास मौजूद है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती थी उनकी मम्मी। और आखिर में ये जो कलाकारी है बहुत अच्छी लगती है जब इस तरह से रंगीन पंखे बनाए जाते हैं और उनको झला जाता है तो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से ये हमें मेल जावेद अख्तर साहब ने किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: इसी के साथ सिमरन सोरांजली का भी हमारे पास मेल है, गुड मॉर्निंग आपको भी। और इनके घर में घर से दही से घी निकालने वाली लकड़ी की मथानी है, लकड़ी का पाटा है बैठने वाला, सिलबट्टा, लकड़ी की चकली, बेलन, चकिया, बल्ले से बनी डलिया और जो कि इनकी मम्मी ने बनाई थी, ये सारी चीजें इस्तेमाल भी होती हैं और पुरानी चीजें हैं तो सुकून भी मिलता है इनको देख के। थैंक यू सो मच हमें मेल।
0: रोशनी रावत कहती हैं कि हमारे घर में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं मगर उनमें से एक मेरे पास दीपक है, यानी कि दिया है, टॉर्च, रेडियो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मगर ईमेल करने का समय भी बहुत कम अभी है हमारे पास, इसलिए ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी एंटीक चीज़ें हैं जो इनके पास हैं और ये इन्हें संजो कर रख रही हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त ये प्रोग्राम को हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी आपकी इस मेल के लिए।
1: इसी के साथ तेज बहादुर यादव, बाबू अंसारी, दीप्ति प्रकाश, राम मोहन गुप्ता जी, ब्रजेश सिंह जी, एम के राज जी और वारिस अली खान जी, आप सभी को थैंक यू सो मच मेल करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए इजाजत और आगे का सफर आप तय करेंगे रतन के साथ।
0: तो बस अगले कुछ घंटे आपके साथ रहने वाला हूँ, आकांक्षा को यहीं से कहते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं न्यूज ब्रेक के बाद।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह स्वीडन ने के हमारे उन सभी साथियों को भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया है, एक मजबूत आधार दिया। स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला यह 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के शहजादजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश की सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। बहराइच नानपारा मार्ग पर थाना मटेरा अंतर्गत डेवा के निकट कल देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायल हैं। यह हादसा तेज रफ्तार अनियंत्रित कार के कंबाइन से टकराने पर हुआ। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव व एसएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन में कुछ समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा

0: जा सकता है
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते जुड़ता है मन आस्था से संस्कारों से देवभूमि उत्तराखंड से केदारनाथ की दिव्यता बद्रीनाथ का आशीर्वाद गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है आइए पांच

0: गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ दोस्तों, 10:05 का समय और साथ में 17, 18 और 19 सेकंड प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुपरहिट सॉन्ग्स। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले घंटे आप बिल्कुल नॉनस्टॉप म्यूजिक सुनेंगे आपके अपने प्यारे से चैनल FM रेनबो पर। तो पहला ट्रैक आप सबके लिए, इसे एंजॉय कीजिए, हमारे साथ यूं जुड़े रहिए इसी मुस्कुराहट के साथ।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: खिले गुल खिले जब दे
1: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी
2: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
3: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी
4: आपके अपने रेनबो की जबानी
2: सुनाओ प्यार की एक कहानी
5: जी हाँ पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर
6: ये प्रूफ
7: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा
4: 100.7 FM रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

10:55 का समय हो चुका है फ्रेंड्स, और ये समय हमें इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग को हम यहीं पर वाइंड अप करें और उसके बाद न्यूज़ ब्रेक, और न्यूज़ ब्रेक के बाद होगी आपकी हमारी पुनः मुलाकात आपके अपने प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे में। तो बस इसी अंतिम गीत के साथ, यानी कि सुपरहिट सॉन्ग के इस अंतिम गीत के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, आता हूँ न्यूज़ में और न्यूज़ ब्रेक के बाद आपका अपना प्यारा सा शो संदेश आपके गीत हमारे, मैं रहूंगा आपके साथ।

नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में शामिल हुए और प्रमोट किए गए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए हैं। नए शामिल हुए कैबिनेट मंत्रियों में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग दिया गया, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। नए शामिल हुए राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और डेयरी विभाग दिया गया है। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग सौंपा गया। हंसराज विश्वकर्मा को एमएसएमई मंत्रालय से जोड़ा गया और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारिकाधीश और श्रीकृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: हजार नहीं।
1: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
0: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
0: 100.7 FM रेनबो। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।

0: कलेवर।
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
2: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 11:05 का समय और प्रोग्राम शुरू हो चुका है संदेश आपके गीत हमारे, जिस पर आज आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और आप भी अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने संदेश भेजने के लिए हमारी मेल आईडी का यूज कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज अपने विचार, अपनी बातें और क्या कुछ खास कहना चाहते हैं, आपका संदेश क्या है, वो हमें भेज सकते हैं। और वहीं अगर आपको कॉल मिलानी है या फिर आपको फ़ोन मिलाना है तो आप हमारे नंबर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, यानी कि एफएम रेनबो के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है, कोड के साथ हम बताना चाहेंगे, 0522-298-2377। जी हाँ, हमारा नंबर है 0522-298-2377। इस नंबर के साथ जुड़कर आप हमसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं और साथ में जो संदेश आपका हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए है।

जी हाँ दोस्तों, 11:10 का समय, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे और आपका हमारा है प्यारा सा साथ, और हमारे साथ कोई जुड़ चुका है, चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो हेलो, हमारे साथ दोस्तों चांदनी जी जुड़ी थी मलिहाबाद से, और फिलहाल ये इनकी कॉल हो सकता है कट गई हो या फिर इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है किसी कारण से, और ये हमारे साथ जुड़ी और कह रही हैं कि हम इस वक्त अपने मायके आए हुए हैं मलिहाबाद में आम खाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे लोग आम खाने के लिए, और जब आम का ये सीज़न होता है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, और जब मलिहाबाद की बात होती है तो वहाँ के आम अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो दोस्तों ये तो पहुंची हैं चांदनी जी अपने मायके मलिहाबाद में आम खाने के लिए। आप हमें अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारा नंबर है 22, हमारा नंबर है 0522298237। इस नंबर पर आप हमसे जुड़कर बातें कर सकते हैं और आज अपना जो संदेश है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कई मेल्स आ चुकी हैं, उनको चलिए शामिल कर लेते हैं। रामराज जी का मेल हम तक पहुंचा है, श्री गणेशाय नमो नमः, संदेश आपके गीत हमारे, ऐसा इन्होंने लिखा है प्रोग्राम का नाम, ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, मधु, पवन कुमार यादव, मिर्ज़ा इमरान बेग, ये सब इस वक्त सुन रहे हैं और हमारी तरफ से ये कहते हैं कि आपको प्यार भरा नमस्कार। तो आप सब की तरफ से हमने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया, और हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और ये संदेश ये दे रहे हैं कि लोगों से कह दीजिए झूठ मत बोला करें, नहीं तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, और वाकई में झूठ बोलना कोई अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए हमारी आपकी कि हमें झूठ का सहारा ना लेना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी। अगली मेल हम तक पहुंची है वारिस जी की, लिखते हैं आदाब, सुपरहिट सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच वारिस जी। कुछ लाइनें इन्होंने हम तक भेजी हैं कि मेरे मिजाज का कोई कसूर नहीं, तेरे सुलूक ने बदल दिया है लहजा मेरा, क्या बात है। और संदेश इनका यह है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए आप हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने, हो सके तो ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने, इससे आपको गर्मी का एहसास कम होगा। अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, लोग डार्क कलर के कपड़े हीट क्योंकि डार्क कलर के कपड़े हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है, साइंटिफिक ये बात है, और वाकई में जब इतनी गर्मी पड़े तो हमें बहुत लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, ताकि हमें गर्मी से पूरी तरह से बचाव हमारा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेल हमें भेजी है संजय नगर ऐशबाग से वारिस अली जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वारिस जी आपकी इस मेल के लिए। अजय दुबे की भी मेल हम तक पहुँची है, अजय द्विवेदी के नाम से मेल, तो इनके जो मेल आईडी है वहाँ पे अजय दुबे लिखा हुआ है, लेकिन मैं अजय द्विवेदी ऐसा इनका कहना है। मलहोसी ज़िला औरैया से हूँ, ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय जी, और नमस्कार आपको भी, आपकी मौजूदगी ही हर प्रोग्राम को खुशनुमा बना देती है, क्या बात है, आपकी मेल्स हमारे दिन को बहुत खुशनुमा बना देती हैं, इसलिए आपकी मेल्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शो का पंचलाइन और बोलने का अंदाज हमेशा बेहतरीन होता है, थैंक यू सो मच, आप गंभीर मुद्दों पर भी इतनी आसानी से मुस्कान ला देते हैं, आपकी कॉमिक टाइमिंग कमाल है, और आज का शो मैंने बहुत इंजॉय किया रहा।

सॉन्ग का सवाल तो जो भी आप बजा दें वह मेरे लिए अच्छा होगा। अजय जी, लेकिन इतनी सारी बातों में, इतनी तारीफों के बीच में आपने संदेश नहीं भेजा कि आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को। फिलहाल अभी आपके पास बहुत ढेर सारा समय है, आप उस समय को यूटिलाइज कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और अगर आप कोई अच्छा सा संदेश पहुंचाना चाहते हैं हमारे लिसनर्स तक तो जरूर जरूर पहुंचाइए। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए, आपके अपने प्यारे से शो संदेश, आपके गीत हमारे पर, और मैं हूं आपका अपना दोस्त रतन।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
3: MK बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: ग्यारह बजकर 23 मिनट का समय, प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे और आपका हमारा ये प्यारा सा साथ। और हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम मिंटू तिवारी, ग्राम बखरना, तहसील खागा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग सर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम बताया आपने?
1: मिंटू तिवारी।
0: जी मिंटू जी, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
1: जी।
0: तो ये बताइए, आज क्या संदेश है आपका हमारे श्रोताओं के लिए? आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क में आइए।
1: नहीं, नेटवर्क तो हमारे
0: अभी भी नहीं आई। थोड़ा सा इधर उधर हो लीजिए, देखिए सही कहीं से भी नेटवर्क पकड़ लेगा। जी जी, आ रही, बहुत बताइए।
1: तो यही संदेश है कि जो लोग घूमने जाते, मतलब बाहर पानी की बोतल ले अंगूठा डाल के निकले, मतलब प्यार लोग मिल जाते हैं कि पानी प्यास लगे तो उनको भी हेल्प, मतलब पानी यानी पिला दें।
0: जी बहुत

0: अच्छी बात आपने कही मिंटू जी, और वाकई में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी की बोतल लेकर निकलें, और अगर कोई रास्ते में प्यासा है तो उसको भी जरूर पानी पिलाएं, है ना?
1: हाँ जी, हम थोड़ा नाम ले लें किसी का?
0: बिल्कुल लीजिए।
1: पहले तो आपको, आप हो गए, आपके जितने आरजे एफएम के उन सभी के लिए, मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, रसूलपुर गुलरा से प्रभाकर तिवारी जी हो गए, और मुकेश कुमार हो गए, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा मिंटू जी।
1: ठीक।
0: तो दोस्तों, मिंटू जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचा दिया, और लगातार आपकी मेल्स भी हम तक पहुंच रही हैं, और इन मेल्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो अगली मेल हमारे पास पहुंची है वो अनुराग साहब की मेल पहुंची है। आज के गाने सच में दिल को छू गए, आपकी आवाज़ और बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अनुराग जी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतनी शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं। आप हर शो में इतनी अच्छी एनर्जी लाते हैं, सुनने का मज़ा दुगना हो जाता है, और वाकई में आपकी जो मेल्स हैं वो हमारी एनर्जी को बढ़ाती हैं। इतनी प्यारी प्यारी मेल्स, इतना हौसला अफजाई आप हमारा करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तभी शायद हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाते हैं। वैसे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, और सोशल साइट पर भी आपने अपनी जो आईडी है वो बना रखी है, और वाकई में अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप इस तरह से अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी बातें पहुंचाते हैं तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। और हमारा बस इतना कहना है, जो भी बात आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ उसमें ऑथेंटिसिटी और सटीकता और सच्चाई ज़रूर होनी चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आपकी ये मेल हम तक पहुंची है सीतापुर से, और आपने कुछ नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, काजल गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, अंश गुप्ता, यश गुप्ता, अनुराग गुप्ता भेजने वाले हैं, लेकिन आपने संदेश जो था वो आपने हमें नहीं पहुँचाया। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आलोक शाहू, आलोक साहू जी की भी हमारे पास मेल आया है, और कह रहे हैं गर्मी बहुत जोरों की है, लू चल रही है, सबको ही अपने घर में रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए आलोक जी, अगर सब अपने घर में रहेंगे तो काम कौन करेगा? अगर सब छुट्टियां मनाएंगे तो काम कौन करेगा, कैसे काम चलेगा? चलिए हम भी जो है लू के कारण घर में बैठ जाते हैं, आप भी लू के कारण घर में बैठ जाइए, फिर आप ही कहेंगे बताइए लू तो बाहर चल रही है, आप प्रोग्राम करने नहीं आते। तो ऐसा आपकी बात और आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि काम आप सारे कीजिए लेकिन बचाव के साथ, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आप जब तक बचे रहेंगे, आप जब तक स्वस्थ रहेंगे, तब तक आप अपने सारे काम बहुत अच्छी तरह से पूरे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपकी इस मेल के लिए। वकील अहमद साहब की भी मेल हम तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम, संदेश ये है धूप बहुत तेज़ हो रही है, अगर बाहर जा रहे हैं तो बहुत सुबह जल्दी निकलें। इस्माइलपुर से कमालुद्दीन, और 12 बजे तक सुनते हैं। वकील अहमद अंसारी, वकील अहमद मंसूरी, कटका हतूरी, ज़िला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की, इतनी प्यारी मेल्स हम तक पहुंची हैं और लगातार और भी पहुंच रही हैं। आप हैं अपने प्यारे से शो संदेश, आपके गीत हमारे में, और मैं हूं आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन। फिलहाल ये खूबसूरत सा गीत इस दोपहरी में आपके लिए।

0: 11:33 और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे और हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: सर मेरा नाम रेशु तिवारी है, ग्राम मैं तुरवा से बोल रही हूँ, ग्राम आपोश लखनऊ, जिला लखनऊ से बोले।
0: जी रेशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर। क्या करती हैं आप?
1: सर मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: क्या बात, हाउस वाइफ है, और आज क्या संदेश देना चाहती हैं आप?
1: मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि सब लोग हो सके तो ये तरबूज आते हैं, खरबूजे आते हैं, खाइए, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।
0: क्या बात,
1: पानी भी पिएंगे तभी आपको ये तरबूजे खरबूजे आपकी शरीर में पानी की पूर्ति करते रहेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और वाकई में इस गर्मी के माहौल में ऐसे फ्रूट्स का यूज़ ज़रूर किया जाना चाहिए जिसमें आपको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और आपके शरीर में पानी की कमी की वो पूर्ति करें, है ना?
1: इस समय सर इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
0: बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, और साथ में एक प्यारे से गीत की भी ज़रूरत है जो हम आप सबके लिए प्ले ज़रूर करेंगे। आप
1: एक लड़की से बात कर लीजिए, परेशान कर रही है।
0: बताइए जी। हेलो हेलो,
2: गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम है उर्वी तिवारी।
0: उर्वी,

0: क्या?
1: रूही। मेरा नाम है रूही तिवारी।
0: रूही तिवारी, तो रूही आपका स्वागत है एफएम रेनबो पर। आप रेनबो सुनती हैं? गाने सुनती हैं या नहीं सुनती हैं? रूही आप गाने सुनती हैं?
1: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है?
1: सर मेरा नाम लाडो तिवारी है।
0: राधा?
1: नहीं, लाडो तिवारी।
0: लाडो?
1: यस सर।
0: तो लाडो आप किस क्लास में है?
1: मैं 7th पढ़ती हूँ।
0: क्या बात है। तो ये बताइए, आपके एग्जाम्स हो गए?
1: यस सर, हमको अच्छे लगते हैं।
0: हम तो ये पूछ रहे हैं, आपके एग्जाम हो गए?
1: सर हो गए।
0: तो रिजल्ट आ गया?
1: यस सर।
0: अब किस क्लास में गई आप?
1: क्या सर?
0: अब किस क्लास में गई हैं आप?
1: मैं अब 7th में गई हूँ।
0: अरे वाह, वेरी गुड। तो आप एफएम रेनबो सुनती हैं?
1: यस सर।
0: क्या बात, बहुत अच्छी बात। आप मन लगा के खूब पढ़ाई करिए और हमारे साथ हमेशा इसी प्यार के साथ जुड़ी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय भैया भी आएंगे, जरूर आएंगे। अभी वो थोड़े व्यस्त हैं और आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, ठीक है?
1: सर, मैं नाम लेना चाहती हूँ अपनी फैमिली का।
0: नाम फिर कभी लेंगे क्योंकि अगला कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉल के लिए, दोबारा जरूर कॉल कीजिएगा। तो दोस्तों, लगातार हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं और मेल्स भी आ रही हैं, और हमारे पास जो अगली मेल पहुंची है वो पहुंची है किन की? वीके गुप्ता साहब की। रतन भैया को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका प्रोग्राम, इन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। विनोद कुमार गुप्ता गोला गोखरनाथ लखीमपुर खीरी से हमारे साथ। अजय कुमार मिश्रा भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। बिल्कुल, ज़रूर सुनना भी चाहिए और हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े भी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास पिंकू सोनी जी की भी मेल हम तक पहुंची है। सर जी, आपको सादर प्रणाम। मैं पिंकू सोनी परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूं। यही कहना है कि जो बातें आपको बुरी लगती हैं वो बातें आप दूसरों से भी ना करें। आज मैं 3 दिन के बाद आपको मेल कर रहा हूं। प्लीज़ ऐड ज़रूर करके करें। सो थैंक्स, बट प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, कुलदीप जी उधौली से और आकाश वर्मा जी मुरारपुर दरियाबाद से। क्या बात है, और वाकई में आपने जो बात हम तक पहुंचाई है वो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकू जी आपकी इस मेल के लिए। तो दोस्तों, लगातार जो मेल्स का सिलसिला है हमारे पास जुड़ा हुआ है, और साथ में बहुत सारी मेल्स ऐसी भी आ रही हैं जो अपने गीतों की फरमाइश भी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम आता है जिसमें आपके जो पसंद के गाने हैं, जो गीत हैं वो प्ले किए जाते हैं, उसमें आपकी मेल्स ज़रूर शामिल होंगी। बस आप थोड़ा सा कीजिए इंतज़ार। 11:30 का समय, ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए, आपके अपने प्यारे से शो संदेश, आपके गीत हमारे पर।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और प्रोग्राम है आपका अपना प्यारा सा ये शो, जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे। और इस प्रोग्राम में आज आपके साथ मैं हूं, आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
2: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं सर। और बताइए आप कैसे हैं?
1: शमा जी, आपकी आवाज सुनकर हम और भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। और आप कैसी हैं पहले ये बताइए।
2: बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए। और सुबह से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं।
1: थैंक यू।
2: जल्दी जल्दी आया करिए प्रोग्राम करने।
1: बिल्कुल,
2: अच्छा प्रोग्राम करते हैं।
1: जब आप नमाज पढ़ा करिए तो हमारे लिए थोड़ी सी दुआ करा करिए।
2: सबके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए भी दुआ करते हैं।
1: तो आपकी दुआ करिएगा कि हम और जल्दी आया करें। ठीक है, तो हम और जल्दी आएंगे।
2: बिल्कुल।
1: तो और क्या करती हैं शमा जी?
2: आप बस घर का काम करते हैं, और आपका एफएम रेनबो, आकाशवाणी और विविध भारती आपके तीनों चैनल से जुड़े रहते हैं। हम आपके रेगुलर लिसनर हैं।
1: क्या बात है,
2: लेके शाम तक
1: इतना प्यार, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आप कहाँ से लाती हैं?
2: ये सब आप लोगों की देन है।
1: तो ये बताइए, आज क्या कहना चाहती हैं आप हमारे श्रोताओं से?
2: आज संदेश ये देना चाहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एसी में कम रहें, पंखे की हवा जरूर लें, और ना एसी में ज्यादा रहेंगे, एसी यूज करेंगे तो फिर बाहर निकलेंगे तबीयत खराब हो सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और वाकई में इस भरी गर्मी में अगर एसी में आप ज्यादा रहते हैं, एसी का यूज ज्यादा करते हैं, और अचानक से आप बाहर निकल जाते हैं, तो फिर तबीयत खराब होने के या फिर दिक्कत होने के
2: हो सकती है। अपना ख्याल रखें,
1: बहुत चांसेस होते हैं।
2: और सर, हम नाम लेना चाहते हैं अपने भाई बहन का।
1: बिल्कुल लीजिए।
2: और हम अपने भाई बहन से कुछ कहना भी चाहते हैं।
1: बिल्कुल कह दीजिए। जी,
2: साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी और वकील अहमद भाई और मोहम्मद आसिफ भाई
1: जी,
2: इन लोगों से मतलब मेरा कहना यह है कि हमने कभी आकाशवाणी लखनऊ पे इन लोगों को नहीं सुना है। आज 45 वाला नंबर चल रहा है, और वकील अहमद भाई, साहिबा अंसारी, मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद जो तेलंगाना से हैं, आकाशवाणी से जुड़िए, अपनी पसंद का गाना सुनिए, हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है।
1: तो चलिए, आपका संदेश पहुंच चुका है जिनके तक पहुंचना था। जी,
2: और जैसे रिंकी पिंकी और जो ये मोहम्मद आसिफ भाई, वकील अहमद भाई जब मैसेज करते हैं इसमें, तो हमारा नाम उसमें जरूर लिख के भेजते हैं, हमें सुनकर के बहुत खुशी होती है। और इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार, और हम आकाशवाणी पे इंतजार कर रहे हैं, फोन करिए सब।
1: बिल्कुल, सब आपको सब फोन करेंगे, और सब हमारे श्रोता हैं, और सबके सब
2: भी सुन रहे हैं, वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल, सब के सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सब हमारे साथ जुड़कर प्रोग्राम्स को एंजॉय करते हैं। शमा जी, आप की कॉल हम तक पहुंची, और आपने जुड़कर इतना अच्छा संदेश हम तक पहुंचाया कि गर्मी में अगर आप एसी में रहते हैं और अचानक बाहर निकलते हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए पंखे का यूज ज्यादा करें, एसी का यूज कम करें। 11:48 का समय हो चुका है, लगातार आपकी मेल्स भी हम तक पहुंच रही हैं। चलिए, मेल्स की तरफ भी कुछ नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेल्स हम तक आ चुकी हैं। अमन नवाब जी की मेल हम तक पहुंची है। नमस्ते रतन सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ये बात हमें आप पता है, बिल्कुल पता है, और आप हर बार हमारी तारीफ बहुत करती हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। मेरा संदेश यह है कि बाहर निकलते वक्त अम्ब्रेला और पानी की बोतल लेकर जाएं। बहुत सारे लोगों ने यही संदेश हम तक पहुंचाया है। घर पर नींबू पानी पिएं, यह संदेश सर आपके लिए भी है। आप भी छाता और पानी की बोतल लेकर 12 बजे जाइएगा। बिल्कुल, मैं अपनी गाड़ी में बोतल लेकर आया हूं, और इस वक्त भी हमारे पास हमारी बोतल है। और दूसरा संदेश भी ये दे रही हैं कि घर के बाहर और अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये बात आपने पहुंचाइए हमारे लिसनर्स तक। अगर आप घर के बाहर छांव में कोई जानवर बैठा है, तो उसे मारकर मत भगाइए। खूबसूरत जिंदगी का राज, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। बहुत अच्छी बात है अमन, आपने इतना प्यारा संदेश हम तक पहुंचाया, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया। आपकी इस प्यारी सी मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नीलू यादव जी की भी मेल हम तक पहुंच गई है। नीलू यादव, राधे राधे, हमें बोल रही हैं, आपको भी राधे राधे। आई एम नीलू यादव फ्रॉम आशियाना बंगला बाजार लखनऊ। सभी प्रोग्राम्स इन्हें बहुत पसंद आते हैं, इनकी बेटी अनुराधा और अशिया भी।

सुनती हैं प्रोग्राम को, वो भी हमें बहुत धन्यवाद कर रही हैं, थैंक यू सो मच। रतन सर गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। मृत्यु अंत नहीं बस थके हुए जीवन का विश्राम है, शौक तो उसका होना चाहिए जो सांस लेते हुए भी मर चुका है। मुसीबत एक फिल्टर की तरह काम करती है, ये फालतू के लोगों को छान कर बाहर कर देती है, सिर्फ उन्हीं को पास रखती है जिनमें साथ निभाने का दम होता है। बहुत ही गहरी बात आपने नीलू जी हम तक पहुंचाई है, और वाकई में मुसीबत एक फिल्टर, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि फिल्टर का काम करती है, तो वाकई में ये फिल्टर का ही काम करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में रहें, लेकिन वो भी बिना हमारे चाहे हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बिल्कुल पूरी तरह से फिल्टर हो जाते हैं। बस बचते वही हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारा साथ निभाने का दम रखते हैं। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच इतने प्यारे से संदेश के लिए। अनिल कुमार जी की भी मेल हम तक पहुंची है, अनिल कुमार लोधी विलेज सदाठेर डिस्ट्रिक्ट बदायूं। राधे राधे रतन सर, आपको भी राधे राधे। अभी हम अपने खेत पर मक्का की फसल में पानी लगा रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्राम सुनते रहिए, आगे आने वाले प्रोग्राम्स और भी अच्छे हैं, उनमें भी आपको आनंद आने वाला है, बहुत प्यारे प्यारे से गीत आपको सुनने को मिलेंगे। राजेश कुमार की भी मेल हम तक पहुंची है, कोई संदेश नहीं भेजा है, बस नमस्ते भेजा है, तो आपको भी नमस्ते। तो आपकी प्यारी प्यारी मेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: जी दोस्तों, 11:55 का समय और ये समय इशारा कर रहा है कि संदेश आपके गीत हमारे इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते चलें और साथ में एक प्यारा सा गीत भी आपके लिए छोड़ के जाएं। लेकिन उससे पहले हमारे एक प्यारे से लिसनर हम तक पहुंच चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम पीयूष है, मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ।
1: पीयूष जी, स्वागत है आपका FM रेनबो पर। क्या करते हैं आप?
2: मैं पढ़ाई करता हूँ।
1: किस क्लास में है इस वक्त?
2: 9th में।
1: क्या बात है, तो FM रेनबो सुनते हैं आप?
2: हमको FM रेनबो बहुत ज्यादा पसंद है।
1: क्या कहना चाहते हैं आज, आपका क्या संदेश है, जल्दी से बताइए।
2: लोग कार से चले, बाइक से चले, रोड पे नहीं रुके, 3 से 4 लीटर पानी पिए।
1: ओके, कि आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो कैसे चले? रोड पे चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं?
2: अगर कार से चले, बस से चले, रोड पे नहीं थूके, कहीं और जाके थूकाएं, 3 से 4 लीटर पानी पिए।
1: क्या बात है, 3 से 4 लीटर पानी पिए। वाकई में बहुत अच्छा ये संदेश आपका पहुंचा हमारे पास, और आपकी इस कॉल के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है पीयूष?
2: ठीक है
1: दोस्तों। तो पीयूष ने हम तक अपना संदेश पहुंचा दिया कि अगर आप बाहर चल रहे हैं तो आप 3 से 4 लीटर पानी इस गर्मी के मौसम में ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप इतने प्यारे प्यारे से संदेश आज के इस प्रोग्राम में आपने हम तक पहुँचाए। आपके इतने प्यारे प्यारे सभी संदेशों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिनकी कॉल्स हमने अटेंड की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिनकी मेल्स हमने पढ़ी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिनकी मेल्स हम तक पहुंची नहीं अभी तक और वो लिख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों, बस इसी अंतिम गीत के साथ आज के संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम से अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन से बातचीत की। श्री मोदी ने दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रधानमंत्री मोदी को 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडुलिपियों को भारत की आत्मा का अध्याय मानते हैं। वेद, उपनिषद, रामायण जैसे ग्रंथ हमारी धरोहर हैं। पांडुलिपियों में गणित, विज्ञान, दवा और कला का ज्ञान है। यह हमारी संस्कृति और सोच को दिखाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आगे आएं। यदि आपके पास भी कोई भी प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ, पत्र आदि उपलब्ध हैं तो इसकी जानकारी ज्ञान भारत मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रमेश चिन्नाथला, केपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पी के कुनहाली कुट्टे शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस समारोह पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते जुड़ता है मन आस्था से संस्कारों से देवभूमि उत्तराखंड से केदारनाथ की दिव्यता बद्रीनाथ का आशीर्वाद गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं संस्कार और संकल्प की पहचान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी
2: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी

0: हमारी और आपकी साझा कहानी,
1: आपके अपने रेनबो की जबानी।
2: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
3: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
4: ये
5: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
6: 100.7 FM रेनबो,
7: धड़कन लखनऊ की।

बारह बजकर छह मिनट और दस सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा, जिसमें आज हम करने वाले हैं हेल्थ की बात। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे का हम रखते हैं आपका खास ध्यान। लेकिन एफएम रेनबो आपका हर दिन कुछ ना कुछ खास ध्यान रखता ही, कहीं ना कहीं से हम प्रोग्राम में आपकी हेल्थ की बात करते ही करते हैं। जैसे बीता हुआ दिन संडे, कल हेल्थ एंड फिटनेस में हमने आपकी भी हेल्थ की बात की थी इसी समय, और आज बात खास बहुत होने वाली है प्यार की, एहसास की। ये प्यार और एहसास हेल्थ से कैसे जुड़ता है ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक जो बीत चुका है, हमने क्या सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल कंगारू केयर अवेयरनेस डे, जी हाँ, जिसे हम शॉर्टकट में अगर कहें तो KMC, कंगारू मदर केयर कहते हैं। और इसकी क्यों जरूरत होती है, क्या खास होता है, किस लिए इसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, इसकी हम बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे हमेशा की तरह एक्सपर्ट। जी हाँ, जब एक्सपर्ट कोई बात बताते हैं ना आपको, तो ज्यादा ध्यान आती है और आप ध्यान भी देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो कौन होगा हमारे साथ, हम बताएंगे आपको इस गाने के बाद। तो रेडी हो जाइए ध्यान से सुनने के लिए, जुड़ना है आपको। वैसे तो 12 से 4 रहेगी शालिनी आपके साथ, लेकिन अगर इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है।

0: बारह बजकर 12 मिनट और 28 सेकंड का वक्त प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ आज लेकर बात कंगारू मदर केयर। जी हाँ, केएमसी पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जो कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले सर का करते हैं वेलकम अपने स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी मुझे एफएम रेनबो में आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
0: सर सबसे पहले श्रोताओं को बताइए कि कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी क्या होता है। बहुत सारी जानकारी तो है हमारे श्रोताओं पर लेकिन आपसे जो जानकारी मिलेगी वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी।
1: देखिए सालिनी जी, कंगारू मदर केयर नवजात शिशु की देखभाल की एक सरल सुरक्षित और प्रभावी विधि है जिसमें बच्चे को माँ के सीने से स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखा जाता है। बच्चे को केवल डायपर कैप एवं मोजे पहनाकर माँ के सीने पे सीधा रखा जाता है और ऊपर से कपड़े या कंबल से ढका जाता है जिससे क्या होता है कि बच्चे को गर्माहट सुरक्षा प्यार और बेहतर पोषण मिलता है। केएमसी विशेष रूप से समय से पहले जन्मे बच्चे और जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होता है।
0: अच्छा सर, इस जो केयर को कंगारू ही नाम क्यों दिया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
1: देखिए शालिनी जी, कंगारू एक विशेष प्रकार का स्तनधारी जीव है जो कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है
0: जी।
1: मादा कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसमें वो अपने छोटे बच्चे को पेट की थैली में रखकर सुरक्षित और गर्म रखती है। उसी तरह केएमसी में माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर गर्माहट और सुरक्षा देती है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा गया है। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इमोशनल बॉन्डिंग एंड वार्मथ एंड प्रोटेक्शन।
0: बहुत अच्छी बात। सर जैसा कि आपने बताया कि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जन्म समय से पहले जन्मे बच्चे और जो वजन जिनका कम होता है उन्हें ये केयर दी जाती है, तो क्या ये नॉर्मल न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उसके लिए भी ये केएमसी यानी कि कंगारू मदर केयर फायदेमंद होती है?
1: केएमसी सबसे अधिक प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबी के लिए उपयोगी माना जाता है लेकिन यह सामान्य न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बहुत लाभकारी है। सामान्य बच्चों में भी इससे ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होती है, बच्चा शांत रहता है, माँ एवं बच्चों की बॉन्डिंग मजबूत होती है एंड बच्चे का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है।
0: बहुत अच्छी बात। सर ये

0: कंगारू केयर से बच्चों को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है?
1: केमसी के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिससे बच्चे का तापमान नियत रहता है, संक्रमण खतरा कम होता है, बच्चे का वजन जल्दी बढ़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होती है, बच्चा कम रोता है एंड नींद बेहतर होती है, एवं माँ एवं बच्चों का भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, एवं इसके करने से बच्चे के अस्पताल में रहने की अवधि भी कम हो सकती है।
0: अच्छा, ये जो वजन जल्दी बढ़ता है, इसके बारे में जरा बताएं, अभी आपने कहा ना?
1: हाँ, केएमसी से बच्चे की एनर्जी बचती है क्योंकि उसे शरीर गर्म करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होने से बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलता है, इससे वेट गेन तेज और बेहतर होता है।
0: बहुत अच्छी जानकारी। और सर, 12:16 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि एक प्यारा सा गाना सब तक पहुंचा दिया जाए, और उसके बाद अभी आपसे ढेर सारे सवालों का जवाब लेना है, जैसे कि बच्चों में ये केएमसी से इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से कैसे बचाव में ये मदद मिलता है, क्या कंगारू केयर से ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होती है, या इमोशनल जो बाउंडिंग होती है इसका क्या असर पड़ता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे श्रोताओं को जानना है। तो सर, प्यारा सा गाना सबके लिए।

0: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। दोस्तों 12:24 और 4 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में। शालिनी है आपके साथ लेकर कंगारू मदर केयर के बारे में बात, और हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज के सा विश्वविद्यालय से। ढेर सारी बातें सर से जान चुके हैं लेकिन और भी बातें हैं जो हमें जाननी है। सर, क्या बच्चों की जो इम्यूनिटी है या इन्फेक्शन बच्चों में कुछ हो जाता है तो क्या उससे भी बचाव में मदद करता है ये KMC यानी कि कंगारू मदर केयर, और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, इसे माँ के संपर्क में रहने से बच्चे को सुरक्षित वातावरण मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग अधिक होने से बच्चे को माँ का दूध मिलता है जिसमें एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी के फैक्टर्स होते हैं, स्किन से स्किन कॉन्टेक्ट करने से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का खतरा भी काफी कम हो जाता है।
0: अच्छा सर, ये जो आपने बताया ना KMC से ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे मदद मिलती है, कैसे बेहतर होता है ये?
1: हाँ शालिनी जी, KMC से ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बेहतर होती है क्योंकि बच्चा माँ के करीब रहता है, बच्चे के जो फीडिंग क्यूज होते हैं जल्दी पहचान में आते हैं
0: जी।
1: इससे माँ में जो दूध बनने वाले हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं जिससे बच्चा बार बार फीड कर पाता है।

0: और इसके लिए उसकी ब्रेस्टफीडिंग की संभावना बढ़ जाती है।
1: जैसा कि सर आपने बताया कि माँ और बच्चे का जो इमोशनल टच है, बाउंडिंग है, उस पर भी असर पड़ता है, तो क्या असर पड़ता है, कैसे?
0: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इससे KMC कराने से माँ और बच्चे के बीच प्यार, विश्वास और जुड़ाव बढ़ता है। माँ को बच्चे के प्रति कॉन्फिडेंस आता है एंड पोस्टपार्टम स्ट्रेस भी कम हो सकता है। बच्चा भी माँ की आवाज, हार्ट बीट और टच से सुरक्षित महसूस करता है।
1: अच्छा, जब KMC केयर हम बच्चों को देते हैं, वो माँ के पास होता है, उसका एहसास होता है, तो क्या इससे बच्चे की नींद और रोने में जो कमी होती है, इसमें भी कुछ मदद मिलती है?
0: हाँ, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से बच्चा शांत और सुरक्षित महसूस करता है, इससे रोना कम होता है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग भी स्टेबल रहती है।
1: सर, जैसे कि आपने बताया कि कंगारू मदर केयर बहुत अच्छा होता है, इसका एहसास माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि न्यूबॉर्न बेबी को ज़्यादा गोद में रखने से उसकी आदत ख़राब हो जाती है, तो ये जो मिथ है इसके बारे में भी बताएं।
0: हाँ, ये एक पूरी तरीके से मिथ है। नवजात बच्चे को प्यार, गर्माहट और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। KMC से बच्चे को इमोशनल और फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है, इससे बच्चे की आदत खराब नहीं होती है।
1: अच्छा, जो ये कंगारू केयर है ना, ये कब से शुरू करना चाहिए, इसका सही समय क्या होता है?
0: देखिए, यदि बच्चा स्टेबल है तो जन्म के तुरंत बाद इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रीमेच्योर बेबी है या बच्चा वेंटिलेटर सपोर्ट पे है या ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको शुरू किया जाना चाहिए एंड डॉक्टर की निगरानी में ही करा जाना चाहिए। अगर बच्चा स्टेबल है, खुद से सांस ले रहा है, तो हम उसको कभी भी जितनी जल्दी हो सके उसको शुरुआत में कर सकते हैं।
1: अच्छा, इसे कितनी देर तक करना चाहिए, इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: इसको जितनी देर किया जाए उतना ही अच्छा होता है। यूजली रिकमेंडेशन होता है कि 8 to 24 hours पर डे। स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, मिनिमम टारगेट हमारा 8 hours पर डे रहता है और उसको ग्रेजुअली 24 hours पर डे करना चाहिए। इसको केवल बच्चे के डायपर को चेंज करते समय हटाना चाहिए, अदरवाइज 24 hours तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 घंटे से कम के सेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बार बार हटाने से बच्चा डिस्टर्ब होता है।
1: बिल्कुल सही बात है, उसकी भी उसके भी आराम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो KMC केयर की बात हम कर रहे हैं, कंगारू मदर केयर की, तो माँ के अलावा क्या दादा, दादी, पापा या जो भी उसके बड़े भाई बहन भी हैं, अगर समझदार हैं, तो क्या वो भी ये केयर दे सकते हैं बच्चों को?
0: हाँ, यदि माँ उपलब्ध ना हो या फिर माँ किसी अन्य काम में बिजी है, तो उस कंडीशन में पति, दादी या अन्य कोई भी ट्रेन केयरगिवर इसकी केयर दे सकते हैं। इससे कंगारू फैमिली केयर भी कहा जाता है।
1: क्या बात है, मतलब कंगारू मदर केयर और कंगारू फैमिली केयर, ये दो नाम भी हमारे, दूसरा नाम भी हमारे सामने आया। दोस्तों, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, ढेर सारी जानकारी भी मिल रही होगी। अब केवल बच्चे को आपको दूर से नहीं खिलाना है, उसे अपना एहसास देना है, उसे कंगारू केयर भी देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जैसा जैसा डॉक्टर हिमांशु गुप्ता हमें बता रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी कि बाल रोग विभाग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से, उसी तरह की चीज़ों को अपनाना है। और अब वक्त हो चला है प्यारे से ट्रैक का, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस फिर से ढेर सारी जानकारी के साथ होंगे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों, एफएम रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है शत्रु पर, जिसमें आज हम करते हैं हेल्थ की बात। और हेल्थ की बात आज प्यार और एहसास से हो रही है, यानी कि कंगारू मदर केयर, जिसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बालरोग विभाग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं हिमांशु सर। और सर, आप बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो छोटे घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो कैसे कंगारू मदर केयर आसानी से कर सकती हैं, अपना सकती हैं?
4: हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, केएमसी के लिए किसी महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ साफ कपड़ा, आरामदायक बैठने की जगह, स्वच्छता, परिवार का सहयोग। इसमें बस आपको क्या करना है, आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखें और कोई जो सामने से खुलने वाले जो गाउन होते हैं उनको आपको पहनना है।

0: बच्चे को टोपी पहनाना है, मोजा पहनाना है, डायपर पहनाना है और सामने से खुले आधी बांह के आस्तीन वाले कपड़े पहनाकर बच्चे को अपने दोनों आस्तीनों के बीचों बीच में रखें और गर्दन सीधी रहे। बच्चे का सर एक तरफ हल्का सा मुड़ा होना चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए, जिससे बच्चा और माँ का आई टू आई कॉन्टेक्ट रहे, जिससे बॉन्डिंग बढ़ेगी और माँ को भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। और उसके बाद ऊपर से एक कोई कंबल या कोई तौलिया से उसको आप अच्छे से कवर कर दें।
1: अच्छा सर, जो वर्किंग वुमेन है जो काम करने के लिए बाहर जाती हैं ऑफिस में, घर पे ज़्यादा काम टाइम नहीं दे पाती हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा केएमसी के से रिलेटेड?
0: देखिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो घर आने पे केएमसी कर सकती हैं, रात में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सकती हैं और परिवार के सदस्यों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
1: सर जरा एक बार फिर से कंगारू केयर का जो सही तरीका है वो उसके बारे में जरा बताइए।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हाथ अच्छी तरीके से धोना चाहिए। बच्चे को केवल डायपर, कैप, मोजे और सामने से खुलने वाली बिना बांह वाली शर्ट पहनाना चाहिए। बच्चे को माँ के सीने पे सीधे रखें, बच्चे का सिर एक तरफ हल्का ऊपर रखें, बच्चे की पीठ को कपड़े या कोई शॉल से सब ढक दें और बच्चे की ब्रीदिंग पे ध्यान रखें।
1: सर हमें ये लगता है कि कंगारू मदर केयर के लिए ये जो तरीका है कंगारू केयर का सही तरीका, इसको सही से आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को पकड़ने का और बच्चे को कपड़े पहनाने का सही तरीका एक बार फिर से बता दीजिए।
0: ये आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पोजीशन क्या करें केएमसी देने के लिए। इसलिए आपको ध्यान देना है कि बच्चा माँ के दोनों आस्तनों के बीच सीधी पोजीशन में रखना चाहिए एवं बच्चे का सर एक तरफ टर्न होना चाहिए एवं गर्दन सीधी रहनी चाहिए, जिससे बच्चे एवं माँ का आई टू आई कॉन्टेक्ट हो सके और बच्चे का जो कूल्हा है वो एक फ्रॉग लाइक पोजिशन में होना चाहिए। हाथ मुड़े होने चाहिए अंदर की ओर और बच्चे का पेट और माँ का पेट का ऊपरी हिस्सा एक लेवल पे होना चाहिए एंड बेबी का जो बॉटम है उसको एक स्लिंग से सपोर्ट करना चाहिए।
1: जी असर, इसके अलावा कंगारू मदर केयर करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ शालिनी जी, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आराम से सांस ले रहा हो, बच्चे का चेहरा ढका ना हो, माँ बहुत थकी नहीं हो एंड बच्चा बहुत ठंडा या बहुत गर्म ना लगना चाहिए। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: सर क्या कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जब कंगारू मदर केयर नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए?
0: देखिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है यदि बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है या बच्चा कोई वेंटिलेटर सपोर्ट पे है या उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसको कोई सीवर इन्फेक्शन हो, उसको सीजर्स आ रहे हों या माँ खुद गंभीर रूप से बीमार हो। ऐसी कंडीशन में केएमसी नहीं करना चाहिए या ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होती है।
1: सर जैसा कि आपने बताया कि NICU में है बच्चा, तो क्या तब हम कंगारू केयर कैसे हेल्प करते हैं बच्चे की?
0: हाँ देखिए, NICU में अगर कोई माँ अपने बच्चे की केएमसी करती है तो इससे बच्चे की रिकवरी में बहुत फायदा करती है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का खतरा, मृत्यु दर में बहुत कमी आती है, बच्चे की ऑक्सीजन स्टेबिलिटी बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है, बच्चे का शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है और साथ साथ इसके क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो भी इम्प्रूव होती है और केएमसी करने से पेरेंट्स की बॉन्डिंग मजबूत होती है।
1: तो दोस्तों सुना ना कितनी इम्पॉर्टेंट है ये कंगारू मदर केयर। जैसे कि कंगारू अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखता है ना, देखा होगा आगे से थैली होती है, इसके अलावा और किसी एनिमल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कंगारू मदर केयर लिया गया है। लेकिन कंगारू फैमिली केयर भी किया जा सकता है, मदर अगर अवेलेबल नहीं है तो पिता, दादी, दादा, नाना, नानी जो भी है उसको केयर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, केयर कैसे देनी है, कैसे पोजिशन में रखना है, कैसे ध्यान रखना है बच्चे का, इन सारी बातों का खास ध्यान रखना होगा आपको। और अब आ रही है एक प्यारे से ट्रैक की और उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम दोबारा भी पूछ सकते हैं सर से, ताकि आपके कहते ना कि ये बात दिमाग में आ जाए, गांठ बांध लें इस बात को। ठीक है, सुनते हैं प्यारे से ट्रैक।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री

0: पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों 12:45 और 55 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में हेल्थ की बात डॉक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ। और शालिनी है कंगारू मदर केयर लेकर, यानी कि कंगारू केयर केवल मदर ही नहीं कोई भी कर सकता है। तो एक फिर से सवाल को रिपीट करते हैं और सर से जानते हैं, क्या सिर्फ माँ ही कंगारू केयर कर सकती है या और भी कोई?
4: नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पति और परिवार के अन्य सदस्य भी ट्रेन गाइडेंस में KMC दे सकते हैं।
3: सर, क्या सर्दियों में कंगारू केयर सुरक्षित है?
4: हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है। असल में KMC बच्चे को प्राकृतिक गर्माहट देता है एंड हाइपोथर्मिया से बचाता है।
3: सर, अच्छा, जो कमजोर बच्चे होते हैं, कम वजन वाले बच्चे होते हैं, उसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है?
4: हाँ, ऐसे बच्चों में सही पोजिशनिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, फीडिंग ऑब्जर्वेशन एंड रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी होता है।
3: अब माताओं के लिए, नई माताओं में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं नई माताओं को संदेश देना चाहूंगा कि हर माँ अपने बच्चे की सबसे अच्छी देखभाल कर सकती है। KMC कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आपका प्यार, स्पर्श और समय ही बच्चे की सबसे बड़ी दवा है। इसलिए सभी नई माताएं अपने बच्चे में KMC जरूर से जरूर करें।
3: सर, कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं, यानी कि उनका पहला जब बेबी होता है तो उन्हें अपने बेबी के केयर करने में भी डर लगता है और ब्रेस्ट फीडिंग में भी उनको डर लगता है। तमाम सारे सवाल उनके आते हैं कि बॉडी का, हमारा जो बाहरी बॉडी है वो ना अच्छी रह जाए या और भी सारी चीज़ें, दिक्कतें होंगी, क्या करें? उनके डर के लिए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके बारे में भी ज़रा बताएं।
4: देखिए शालिनी जी, डरना स्वाभाविक है। जो नई माँ है वो बच्चे के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं, उनको छोटी छोटी बातों से डर लगता है। बट इसके लिए आपको डरना नहीं है, धीरे धीरे सीखें, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से मदद लें, परिवार का सहयोग लें, हर दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
3: और अब सर, एक लाइन में श्रोताओं को हमारे कंगारू केयर का सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे?
4: मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ का स्पर्श ही नवजात के लिए सबसे सुरक्षित, सस्ती एवं असरदार दवा है। माँ का स्पर्श जीवन का आधार है। कंगारू केयर से नवजात का उज्जवल संसार है। धन्यवाद।
3: क्या बात है, स्पर्श की बात की गई है, प्यार की बात की गई है, एहसास की बात की गई है और ये हर रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद करते हैं बात और साथ ही साथ हम विदा लेंगे कौन, अपने एक्सपर्ट से, जो कि डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर थे हमारे साथ अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट KGMU से।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

12:55 और 55 सेकेंड होने को है। और दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे थे प्रोग्राम शत्रुपा, क्योंकि थे इसलिए आया है, अब वक्त चला है इसे वाइंड अप करने का। और जो कंगारू मदर केयर के बारे में हमने बताया है वो फैमिली केयर भी बन सकता है, बस देने का सही तरीका, सही समय, कब देना है, कैसे देना, हर कोई दे सकता है। बच्चे के साथ बाउंडिंग अच्छी होगी, उसे एहसास अच्छा लगेगा, बच्चे की कई सारी चीज़ जैसे कि कम नींद आना, उसे उसके रोना, ये सारी चीज़ें कम होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दिया जा सकता है। और मज़े की बात क्या है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है ना, और तो और जो देता है ना उसे भी अच्छा एहसास होता है। तो डॉक्टर हिमांशु सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसे फॉलो करना है और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहना है, यानी कि FM रेनबो के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात में शालिनी होगी फिर से आपके साथ, अभी भी है, कहीं नहीं जा रही है। और आज हम लेकर आते हैं और लोगों की बातचीत, तो बातचीत में आज हम लेके आए कि आपको अकेले घूमना पसंद है या अपनी फैमिली के साथ घूमना पसंद है या कोई खास दोस्त है आपका, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडुलिपियों को भारत की आत्मा का अध्याय मानते हैं। वेद, उपनिषद, रामायण जैसे ग्रंथ हमारी धरोहर है।

लिपियों में गणित विज्ञान दवा और कला का ज्ञान है। यह हमारी संस्कृति और सोच को दिखाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आगे आएं। यदि आपके पास भी कोई प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ, ताड़पत्र आदि उपलब्ध है तो इसकी जानकारी ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार ने 2400 मेगावाट क्षमता की नई तापीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत लगभग 38,358 करोड़ होगी। इस परियोजना को प्रदेश सरकार एवं एनटीपीसी ने संयुक्त उपक्रम के माध्यम से स्थापित और संचालित किया जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखीमपुर बहराइच नेशनल हाईवे 730 पर आज सुबह सड़क हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत से हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारियों ने घायलों को सीएससी कमरिया भिजवाया जहां 2 गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर आ रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि 19 मई को राहुल गांधी रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र के मेहरी गांव में बारात घर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कीरू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर लालगंज में महिला संवाद में भाग लेंगे। 20 मई को वह सुबह गेस्ट हाउस में लोगों से मुलाकात करने के बाद लोधवारी गांव में वीरा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वापस दिल्ली जाएंगे। देश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाए।

0: के बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: एक बजकर 4 मिनट और 14 सेकंड हो चले हैं। प्रोग्राम होटो पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत, और आज हम बहुत ही खास बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शालिनी, इतनी गर्मी हो रही है और आप घूमने झूमने की बात कर रही हैं। देखिए, घूमने तो जाते ही हैं, लेकिन हाँ, तरीके से जाते हैं, प्लान बना के जाते हैं, सोच समझ कर जाते हैं कि कब कहाँ कैसे जाना है और किसके साथ जाना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना दोस्तों, जो हम प्लान बनाते हैं, प्लान हमारा रह जाता है, धरे के धरा रह जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कई बार बिना प्लान के ही हम अचानक से सैर पर निकल जाते हैं और कई बार निकलने के बाद भी उस जगह पर पहुँच नहीं पाते हैं, तब फिर हम क्या कहते हैं, हाँ, वक्त को यही मंजूर था। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही प्यारी सी बात, कि आपको किसके साथ घूमना पसंद है, फैमिली के साथ, अकेले, या कोई खास फ्रेंड, या बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आपको बता डाल रहे हैं अपनी बात FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। बाकी

लोगों की बातचीत तो हम लेकर ही आए हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। और इन सब चीजों के लिए क्या करना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा, सुनते रहना होगा 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो
1: धड़कन लखनऊ।
2: और अब सुनिए इलाकाई खबरें।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। स्वीडन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से नवाजा। ये स्वीडन का किसी भी सरबराह ममलकत को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वीडन का आला तरीन एजाज़ हासिल करना सिर्फ उनके लिए एजाज़ नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एजाज़ है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब तक मिला 31वां आलमी एजाज़ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कैबिनेट मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के मजमूई तरक्की, गुड गवर्नेंस और अवामी सहूलियात की तौसी से मुतालिक मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर फैसले किए गए। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने

0: ऑन म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: साथ तो आपको कहाँ कहाँ घूमने जाने हैं इसकी बात हम नहीं करने वाले। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो कैसे आपको पसंद है जाना, फैमिली के साथ, अकेले, या अपने फ्रेंड्स के साथ? तो जरा सुनिए इनका क्या है कहना।
1: मैं चंद्रश कुमार हूँ। वैसे तो अकेले भी बढ़िया लगता है घूमने में। अकेले में जैसे कोई रोक टोक नहीं, चाहे जहाँ जा सकते हैं कहीं भी, और फैमिली में ये रहता है उन्हीं के हिसाब से जो है देख के मतलब घूमना उमना पसंद करना पड़ता है, ये है। बाकी तो दोनों मजा आता है। अभी मैं भी इससे कश्मीर गया था दोस्तों के साथ, बहुत मजा आया। चाहे मन चाहे जो भी कहीं भी जा सके, और फैमिली के साथ ये रहता है देख रेख के, मतलब साथ में उनको लेके चलना पड़ता है, ये सब रहती है उसमें। वैसे तो दोस्त के साथ ज्यादा अच्छा लगता है घूमने में, और तो बढ़िया।
0: देखिए, हर कंडीशन के साथ घूमने का अपना अलग मजा है। अकेले गए तो कोई रोक टोक नहीं, फैमिली के साथ गए तो उसका अलग मजा है, फ्रेंड्स के साथ तो क्या कहने। गुलाबसा सिद्दीकी का मैसेज आ चुका है, इन्होंने हमें संडीला से मैसेज किया है। इनका कहना है कि इन्हें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमने जाना अच्छा लगता है, और कई बार ये लखनऊ जाती हैं घूमने, बड़ा इमामबाड़ा और घंटाघर। बिल्कुल सही बात है, घूमने जाना चाहिए। और ये बबीता राय जी का भी मेल आ चुका है, लखनऊ गोसाईगंज से ये हमें मेल कर रही है। लिख रही है कि मैम जी, मुझे कहीं भी बाहर जाना हो तो मैं अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ जाना पसंद करती हूँ, अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलिए ठीक है, और भी मेल शामिल करेंगे लेकिन इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

0: दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे प्रोग्राम उठो पे तेरी बात, और रोशनी रावत जी का मेल आ चुका है सफीपुर जिला उन्नाव से, और इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना फिरना, इसीलिए बहुत सी जगहों पर गई, और मुझे अकेले नहीं ग्रुप में जाना ज़्यादा पसंद है, और हर जगह के अनुभव अलग अलग हैं। और इन्होंने कहाँ कहाँ की घुमाई कर ली है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, सभी जगह पर घुमाई है, और ये बस शुरुआत है, अभी तो भारत भ्रमण करना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भारत के अंदर ही जहां जाकर हमें सुकून मिलता है, बढ़िया वाला अनुभव होता है जो किसी से शेयर किया भी नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर अच्छा वाला अनुभव, तो भारत की कई जगहों पर घूमने चाहिए, और हर जगह का अनुभव लेकर आइए और लोगों से शेयर करिए, बताइए अपने भारत के बारे में। और किसका मेल आ चुका है, ये किसका मेल आया है, अर्पित शर्मा, निर्मला और तुषिका शर्मा, और थाना राम शर्मा जी का मेल है राजस्थान से। और अच्छा, इन्होंने बस हमारी तारीफ लिख दी है, अपनी बात इन्होंने नहीं लिखकर भेजी है कि घूमने से रिलेटेड इन्हें किसके साथ जाना पसंद है। और जिला रायबरेली पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु और शंकर भैया और कई सारे लोगों ने मेल हमें लिखकर भेजा है। अच्छा, इन्होंने भी जो काम की बात है उसकी तो बात ही नहीं की है कि इन्हें कैसे घूमने जाना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ, अकेले या अपने दोस्तों के साथ। और मैम जी, आपको सादर प्रणाम। पिंकू सोनी परिजा, और इन्होंने कहा से बाराबंकी से हमें लिखकर भेजा है, और इन्होंने लिखा है कि फैमिली टूर इज़ बेस्ट, सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, इन्हें अपने फैमिली के साथ कहीं जाना पसंद है। और दोस्तों, इसके अलावा जो हम बातें लेकर आए हैं तो इनकी भी सुन लेते हैं कि इनका क्या है कहना।
1: मेरा नाम कौशिक है, मैं लखनऊ से हूँ, और मैं भी दोस्तों के साथ घूमने प्रेफर करूँगा, ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और मेरे पेरेंट्स ज़्यादा घूमने का शौक़ रखते भी नहीं है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगी लेकिन मस्ती नहीं कर पाऊँगा मैं लोगों के साथ, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता हूँ। दोस्तों के साथ अगर मेरे को कहीं पर जाना है तो मैं कहीं पर जा सकता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा एडवेंचर करना है जो कि पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकता वो भी कर सकता हूँ, तो हाँ बेटर रहता है दोस्तों के साथ, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स के साथ घूमना।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: मौसम चाहे जैसा भी हो, घूमने सुमने जाना सभी को पसंद है। और इसके लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल बच्चे ही पसंद करते हैं, बड़े नहीं, बूढ़े नहीं और जवान नहीं, सब जाते हैं। और देखिए ये मेल किया है समशुल कमर राही बेगम, रुखसार रकीबा शाहीन तूफा आफरीन, इन्होंने आजमगढ़ से लिखा है। इन्होंने लिखा है, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे साथ होते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और जब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना कि भाई हम जाएंगे तो घूमने, लेकिन बच्चों को नहीं ले जाएंगे, इनको घर में ही छोड़ कर, क्योंकि ये सभी नाक में दम जो कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं उनके बिना अच्छा नहीं लगता। तो अपनी चॉइस है, अपनी बातें हैं, अपना मज़ा है, तो इनका क्या है कहना, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं लखनऊ में अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, यहीं पे भी स्टे किया हूँ। ऐसे अगर घूमने की बात की जाए तो अभी आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि करेंटली आप किस सिचुएशन में। मान लीजिए अभी आप फैमिली मैन नहीं है, आपके शादी नहीं हुई है, इन केस तब आपको सिंगल घूमने में मजा आता, क्योंकि उस समय आपके साथ फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ जो इन्जॉयमेंट होता है वो अलग होता है। अगर आपके साथ फैमिली है, मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आप फैमिली के साथ घूम रहे हैं, फैमिली के साथ घूमने के साथ क्या होता है कि आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, अपने फैमिली के साथ माता पिताजी हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उसका इन्जॉयमेंट अलग होता है। इस पर आपके फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी जैसे होती है कि आपका नेचर क्या जा रहा है, फैमिली के इन्वायरमेंट में भी नेचर जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी बेसिकली तो फैमिली के साथ ही सबको प्रेफर करना भी चाहिए और जाना भी चाहिए। मैं भी फैमिली के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि एट ए टाइम फैमिली आपके साथ रहेगी, आप तो सिंगल दोस्तों के साथ तो हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं। थैंक यू।

0: और दोस्तों सभी लोग अपने दिल का ही हाल तो बता रहे हैं, जैसे कि सुधाकर राधे जाधव जी का भी मेल आया है कालेगांव जाफराबाद से और ये लिख रहे हैं कि धूप बहुत होने की वजह से ये कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम हमारा खेत और हमारा घर। भाई खेत का जो मौसम है ना वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ भरी दोपहरी में जब आप खेतों में काम करते हैं तब तो गर्मी होती ही है, और आप काम करते हैं, हमारा किसान काम करता है तो ही हमको अनाज मिल पाता है, खाने की चीजें मिल पाती हैं, उन्हें सलाम है। बसंत कुमार सिन्हा का भी मेल आ चुका है और ये हमें दमदार एयरपोर्ट कलकत्ता से मेल कर रहे हैं, और अकेले में कहीं घूमने में कोई मजा नहीं है, पूरे परिवार के साथ बच्चों के साथ घूमने में आनंद आता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे अगर हम कहें ना, जो अकेला है अभी तक, जिसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, उन्हें अकेले में घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों के साथ पसंद है, और जिनके बीबी बच्चे हैं, जिनका परिवार है, माता पिता है, वो चाहते हैं कि परिवार के साथ घूमने जाएं, और सुनिए इनका क्या है कहना।
1: हेलो, मेरा नाम रामजीत है, मैं लखनऊ से हूँ। मुझे घूमना जो है मेरे फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ मुझे अच्छा लगता है। जैसे कोई इधर है कोई बाहर है तो कभी 6 मंथ या 1 ईयर में आता है, तो फिर फैमिली के साथ एक साथ होते हैं तो घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब एक्सप्लेन होता है हर एक बात, हर एक।
2: मेरा नाम उद्भव मिश्रा है और मैं लखनऊ से हूँ, और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं प्रेफर करूँगा अपने दोस्तों के साथ घूमना, क्योंकि दोस्तों के साथ घूमने में ज़्यादा मस्ती हो जाती है। फैमिली के साथ भी प्रेफर कर सकता हूँ क्योंकि फिर उसमें जो एक्सपेंसेस है वो मेरे ऊपर नहीं आते, तो और एक्स्ट्रा वैकेंट ट्रिप हो सकती है।
3: मेरा नाम है सरफराज अहमद खान और मुझे घूमना फैमिली के साथ पसंद है, क्योंकि मेरा फैमिली जो है वो मेरे फ्रेंड की तरह रहता है, मुझे कोई भी उनके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सब एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। अक्सर मैं अपने फैमिली के साथ ही घूमता हूँ, और मैं एडवाइस तो नहीं दूंगा कि ऐसा सभी करें, जिसको जो बेहतर हो उसे वो कर

दोस्तों 1:49 का वक्त हो चला है और बाबू अंसारी जी का मेल बाराबंकी से आया है और इन्होंने लिखा है कि मुझे घूमना पसंद है और मैं अपने चाचा के साथ घूमने जाना पसंद करता हूं और उन्हीं के साथ सारी जगह का टूर बन जाता है। क्या बात है। अमन का भी मेल आ चुका है और अच्छा अमन, आपने आज टॉपिक ही नहीं सुना, यानी कि आपने देर से हमको ज्वाइन किया है ना। बहुत गलत बात है। देखिए चलिए हम बता देते हैं कि आपको जब कहीं घूमने जाना है तो अपनी फैमिली के साथ पसंद है, अकेले जाना पसंद है या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

और दोस्तों इसी के साथ बता दें कि वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, लेकिन उससे पहले मोहम्मद फैज रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से हमें कुछ कह रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इन्हें घूमने जाने का मौका मिलता है तो ये अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जाना चाहेंगे। और ये अपने बड़े भाई के मोबाइल की मेल आईडी से मेल कर रहे हैं और इनके दोस्त बाबू अंसारी भाई भी इनके साथ हैं। और ढेर सारे ईमेल और भी आ चुके हैं। प्रवीण जी का मेल आया है, अच्छा, अगर ये धार्मिक स्थानों पर जाएंगे तो परिवार के साथ, खूबसूरत प्राकृतिक जगह पर जाएंगे तो अकेले, और मौज मस्ती वाली जगह जाएंगे तो दोस्तों के साथ। भाई प्रवीण जी, अगर आपकी फैमिली सुन रही होगी ना, वाह, आज आपकी क्लास लगने वाली है। अमन का कहना है कि इन्हें अपने पापा के साथ घूमने जाना बहुत पसंद है और रास्ते में खूब सारी यमी चीज़ें खिलाते हुए पापा जाते हैं इनके। और अब इस प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक सुनिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में आप हमें ढेर सारी मेल वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन जो नए हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पे। बढ़िया बढ़िया वाले गाने पसंद कीजिएगा।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी हादसे में हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। लखीमपुर बहराइच नेशनल हाईवे 730 पर आज सुबह ट्रक ने सवारी वाहन में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक में नई तापीय ऊर्जा परियोजना को लेकर जानकारी देते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में लगभग 4000 मेगावाट की नई तापीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जिससे प्रदेश की तापीय ऊर्जा क्षमता लगभग 2 गुनी हो चुकी है। अब सरकार इसे 3 गुना करने के लक्ष्य में दिशा में कार्य कर रही है।

नई परियोजना उसी संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि जनसेवा, सुरक्षा व सुशासन सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्याओं के निस्तारण का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि पूरी तत्परता व संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सभी को न्याय मिले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी कल बरछरावा विकास खंड के मेहरी ठकुराइन खेड़ा पहुंचेंगे। यहां वह सांसद निधि से बने बारात घर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद खीरो में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी लालगंज में महिलाओं के साथ बैठक कर संवाद भी करेंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी जिलों के कई भागों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर मौसम शुष्क रहने के साथ ही लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
2: समय की शुरुआत से पहले ही ईमेल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है क्योंकि हम कह देते हैं कि आप हमें मेल करना शुरू करें, तो थैंक यू इतने ढेर सारे ईमेल्स के लिए। या ऐसे जब मेल्स आते हैं ना तो लगता है कि मौसम अच्छा है, बारिश का एहसास होता है। बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, तो शुरुआत करते हैं शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद शकील, मोइन तस्लीन अंसारी जी के ईमेल से जिन्होंने हमें मचकली ज़िला बरेली से मेल किया है और किसी भी गाने में इनका शामिल करें ऐसा कहा है। और खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो, पापा जी नानक चंद्र, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल और डुग्गू का भी मेल आ चुका है। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन दीपांशु ने भी हमें मेल कर दिया है। और किसका मेल आया, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेश, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा का मेल नरगोणा छत्तीसगढ़ से आ चुका है। और टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमन का मेल आया है मोहली चंडीगढ़ से। और कालका से शुभ बजा, शुभचंद बजा, साहिल और बिट्टा का भी मेल आ चुका है। अनिल कुमार नहीं, मेल आईडी अनिल कुमार है। अभिजीत गुहाकर राही, सरिता प्रणीता, सिद्धांत लाजो टुक टुक, उमरखेड़ा महाराष्ट्र से। और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से भी वैशाली, एकांश और ध्वनि का मेल आया है। सुदर्शन शाह का भी मेल, प्रखर पल्लवी, कुशल, नीति सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन, राजेंद्र के साथ पद्मा टाकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से आया हुआ है। और अब आ रही है इस प्यारे से ट्रैक।

इनका नाम जरूर शामिल करें, गाना कोई भी क्या, बहुत सारे गाने आपको हम सुना रहे हैं, किसी भी गीत में नाम शामिल करें। बक्सर बिहार से सफर सरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून के साथ मेल किया है, और डब्बू सोनम दानिश का भी बिहार से मेल आ चुका है, और शम्सुल कमर राही जी का मेल है शाहीन अदनान अनु खान के साथ में गंज डुडवारा से, ये हमें मेल कर रहे हैं, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और ये वाणीखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती, इनका भी यही कहना है किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कर ले। शुभ दोपहरिया जी आपको भी। और ये कौन है, ये हमें मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित पीयूष ने मेल किया है, और गाने की है फरमाइश। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद और भी ईमेल्स करेंगे शामिल।

और बिल्कुल ये वादा करो छोड़ोगे नहीं साथ, हमारे जितने लिसनर्स हैं उनके लिए है कहना, तो नाराज भी नहीं होना है, परेशान भी नहीं होना है, 3 बजे तक पूरा साथ देना है इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में भी रहेगी शालिनी आपके साथ, सुनील पाठक, कमल, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक जी का मेल आ चुका है अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल करें। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिगिया, नमन अपार का भी मेल आ चुका है और बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश की है आपने संजय, बहुत कम आप फरमाइश करते हैं वैसे। और ये गांव लोकड़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह दिल गिल और दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल अविराज का भी मेल आ चुका है और

0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों,
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों कभी कभी तो इतने प्यारे प्यारे गीत आप पसंद करते हैं तो बस मन करता है कि सिर्फ गीत ही प्ले किए जाएं, लेकिन ना ईमेल्स भी तो आपके लेने होते हैं। और सतीश अनेजा जी का मेल आ चुका है विमला के साथ में और बढ़िया से गाने की फरमाइश की है इन्होंने, चंडीगढ़ सिटी से ये हमें मेल कर रहे हैं। और नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साईं गायकवाड़ नादेड़ महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं और इन्होंने भी बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है। संदीप मक्कर जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने भी अच्छे से गाने की फरमाइश की है। ज्योति मन्नत, भरत कमल और ये हमें जालंधर पंजाब से मेल कर रहे हैं। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सनी का भी मेल आया हुआ है और किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लें, इस तरह के जो मेल होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई दुखनी, सफत आरजू, जूही इकबाल और इमरान, और नई दिल्ली से बिटिया आमना, नसरीन, आसमा, राबिया, मंतशा, आशु भाई और सभी पूरी फैमिली की तरफ से मेल आया हुआ है। और चलिए इतने मेल लेने के बाद ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जिसकी भी पसंद का था उन्हें समझ में आ गया होगा। और उत्तम कुमार भगत जी का श्वेता भगत किसु ताशु अर्णव आनंद सत्यम का मेल आया है झारखंड से, और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी का है। और प्यारे से गीत की फरमाइश की थी आपने उत्तम जी, आपको आपका गाना पसंद आया होगा। और बिट्टू गगनेजा जी का मेल है, ईमेल आईडी है सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी निमित जलालाबाद भेजते हैं। और प्ले करना गाना सभी के थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश है सबकी पसंद ली जाए। और फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद और पुष्पेंद्र जी का मेल आ चुका है। आफ्ताब अंसारी रियाज मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबनान सारी आलिया का गंग जुडवारा से मेल आ चुका है। और ये सुनते हैं गीत पहले और उसके बाद और भी ईमेल करेंगे शामिल।

0: भी है।
1: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बजकर 39 मिनट और 15 सेकंड का वक्त और हमारे बीच मेल आ चुका है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव। अच्छा, कई सारे लोगों का नाम है जो जिनके मेल अभी हमने पढ़े, ये सारे फ्रेंड्स आपस में बन चुके हैं और कई सारे ऑप्शन दिए हैं भाई। तो दिग्दर्शन जी, आपका मेल लेना बनता ही है। और मेल आया है सुधाकर राधे जाधव जी का है, काले गांव जाफराबाद से है। प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी है साथ में। और जॉन डी क्रॉस्टो, रोजी पर्ल विलियस का मेल जानकी जनकपुरी सहारनपुर से आया हुआ है। किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज और तलहत जहानाज, फरहत जहानात, रिहवत जना जहानाज, मतलब सबके नाम एक ही राइम्स में लिए गए हैं ना, तो एक साथ पढ़ पाना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। साजिया साहिन और नाजिया नूरी नाज का मेल आ चुका है। और मेल आया हुआ है दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश का है। और पीपर लोडस सरगांव छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। निसार अली जी का भी मेल तेलीवाला उत्तराखंड से आ चुका है। नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू के साथ में। नवी हसन जी का मेल है, शहनाज, नावेद हसन, रसीद, वारिस, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यसफ का दरवाजा ईठा से मेल किया है। तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आया है और बिहार कॉलोनी से इन्होंने चैतन्य मस्कीन के साथ मेल किया है। सुरेश नारंग का भी मेल आ चुका है, सोनाली के साथ सहारनपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। पीएस नहाकर, निर्मला, विशाल, नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर, नारायण इंगले, राजकुमार और आशीष जी का मेल आ गया है। राधे कुमार विद्यार्थी जी का भी मेल आया हुआ है। और इनका मेल कहाँ है भाई, जब आप कई बार एक ही मेल में लिखते हैं ना तो वो मेल आपका मिलता नहीं है, फॉरवर्ड होके दिखता है और क्या लिखा है आपने ये गुम हो जाता है। तो ध्यान से दोबारा जब भी मेल करें तो नया मेल कंपोज करें, राइट करें। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। सविता, राकेश, रंजन, राजीव, संजय, ओम, गुंजेश, कुमकुम और बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने लिखे हुए हैं। वारिस अली खान जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से मेल किया है।

नाम कांगड़ा जी का भी मेल है, बबीता बोट निखिल तन्वी के साथ में ये मेल कर रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से मेल आया है और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक के, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

और हम तो ना जाने आपको कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, और ये देखिए अब हम आपको ले जाने वाले हैं हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहाँ ने हमें मेल किया हुआ है, और हीरामणि वर्मा का पारस मणि पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल आ चुका है। अंकित कांगड़ा का भी मेल आया। मोनी प्रिंस बोर्ड सीताराम साहिल के साथ हरियाणा से मेल हमें कर रहे हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल आ चुका है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल कर रहे हैं। ममता रोनी तो और बेबी वॉनी का भी साथ में है। दिलावर खान का भी मेल आ चुका है। हसीना बानो एलिजा नवाब लड्डू के साथ रघुवीर नगर से, ये बहुत प्यारा सा नाम है। और किसका मेल है, मोहम्मद सादिक अहमद शाकिर और बहुत सारे नाम है, सनावत से ये हमें मेल कर रहे हैं। कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम का पिपरिया से, और समटी लामापारा से मुकेश श्रद्धा अदिति राधे दीपक का भी मेल आ चुका है। और कौशिक वंदना का भी मेल आया है। मम्मी पापा महेश के साथ में राजकोट गुजरात से हमें मेल कर रहे हैं। अशोक राज जी का मेल रायपुर मितौली लखीमपुर खीरी से आ चुका है। और संतोष भाकेर और सुनैना सुकन्या सविता का मेल नांदेड़ महाराष्ट्र से मेल आया हुआ है। लालगिरी का भी मेल हिना, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा, अच्छा लिखा है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। कहते हैं ना कि आंख कहीं और गई तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तभी तो नाम नहीं दिखा। और अब बारिश प्यारे से ट्रैक की एंजॉय कीजिए।

0: के बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं? और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 2:54 और 6 सेकंड हो चले हैं और लगभग लगभग सभी के नाम और सभी की ईमेल्स को मैंने शामिल कर लिया है। क्या बात है शालिनी, कितने स्मार्ट हो भाई। कोई तारीफ नहीं करेगा तो हम खुद ही कर लेते हैं। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा जी का मेल आया है। उदय भानपाल जी का भी मेल आ चुका है। एक नहीं कई सारे मेल आप कर देते हैं भाई, ऐसा मत किया करिए, थोड़ा सा दुख होता है। इन्होंने बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मेल किया है। जय सिंह, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश के साथ में आया हुआ है मेल। और बसंत कुमार सिन्हा का भी इस प्रोग्राम में मेल आ चुका है। और भाई दरकिनार बिल्कुल नहीं हम करते हैं, आपका मेल तो हमने हॉटमेल में भी शामिल किया था। कलकत्ता से आप हमें रेखा देवी के साथ मेल कर रहे हैं। पीके गुप्ता जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें अजय कुमार मिश्रा, विनोद कुमार, इन्होंने गोला गोकरण नाथ लखीमपुर खीरी से हमें मेल किया है। मनोज बंशल जी का भी मेल आया, हरियाणा से हमें ये मेल कर रहे हैं। मुकेश कश्यप जी का मेल है। सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मतलब कोई नाम बाकी नहीं है। अजीत यादव का हसनगंज रसूलपुर बकिया से मेल आया है। और ये साहिब आलम और बब्बन भाई का राजा जी पुरम लखनऊ से मेल आया हुआ है। रमाकांत सिंह का मेल है और अंकित कांगड़ा का मेल आ चुका है। और भाई किसी की नाराजगी नहीं हो, बाबू अंसारी आपका भी मेल आ चुका है और आपने हमें हॉटमेल में भी मेल किया था, एक नहीं दो दो मेल किए थे, थैंक यू साथ देने के लिए। दारा सिंह का मेल आया है, रामेश्वर है और संदीप मक्कर का मेल शामिल किया जा चुका है। रवि कुमार राहुल का मेल आ चुका है और हसीना के नाम से, रामराज के नाम से कई सारे मेल। बोधराज खुरवाल जी आपने भी हमें मेल किया है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका भानु प्रकाश के साथ में आप हमें रेगुलर ईमेल करते हैं, भूलते नहीं है, तो हम कैसे आपका नाम लेना भूल सकते हैं। विनीत कुमार का भी मेल आ चुका है। रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को करें वाइंड अप, क्योंकि लास्ट गाना आप तक पहुंचाना है और उसके बाद प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में सातों तरह के रंग बिछाने हैं। शंभुदयाल जी का मेल है, राजेश वर्मा है और देख लेते हैं कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो। शेख मूसा जी का भी मेल है, पंकज शर्मा का मेल आया हुआ है, स्वर्ण सिंगल, अनिल वर्मा, फगुरम यादव, दीपेश, शंभु दयाल, बस इसके अलावा महेश बोहारा, मोहम्मद आमिर, प्रवीण रानपारा, वकील अहमद के अलावा नेहा वर्मा और बस इसके अलावा किसी

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के लिए ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू करने से पहले आयोग की सिफारिश जरूरी है। इसके अलावा आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के तहत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई। वहीं लखनऊ में चारबाग से वसंत कुंज तक बनने वाले ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच लगभग 5,801 करोड़ रुपए की त्रिपक्षीय सहमति को भी स्वीकृति दी गई है। लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर इलाके में आज हुए सड़क हादसे में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है, जिसमें 2 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक की सवारी वाहन से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी में हुई सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए रामघाट पर वृहद सफाई अभियान जारी।

है आधुनिक मशीनों और मैन पावर की सहायता से नदी की तलहटी से काई जलकुंभी और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने आम जन मानस से भी नदी को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। बुंदेलखंड समेत प्रदेश में कई जिलों में आज लू का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने के साथ साथ दोपहर के वक्त घर से ना निकलने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पे रहने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
2: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
1: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
2: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
3: धड़कन लखनऊ की
2: 100.7 FM रेनबो।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की।

3:09 का वक्त प्रोग्राम शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया। और अगर इस वक्त का रंग देखें और लोगों से पूछें तो आपको डार्क ऑरेंज ऑरेंज कलर ही मौसम में दिखाई देगा, क्योंकि गर्मी ने अपना तांडव मचा रखा है। लेकिन हाँ, उसे डरना नहीं है, उससे बचना है और ध्यान रखना है। देखिए, हम रेडियो के जरिए आपको हर बार अलर्ट करते हैं, न्यूज़ में भी यही बताते हैं कि वक्त बेवक्त बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी दोपहर में आप घर से बाहर निकलें। अदरवाइज जितने भी काम हैं आप थोड़ी देर के लिए किसी और समय पर शिफ्ट कर दें। और करेंगे क्या घर पे रह के? सुनेंगे 100.7 FM रेनबो और मस्ती करेंगे। और ये प्यारा सा ट्रैक मौसम को लेकर सभी को अलर्ट करने के लिए और जोश भरने के लिए दिलों में।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

3:19:43 का वक्त हो चला है दोस्तों, और थोड़ा सा बाहर निकल कर देखिए टेम्परेचर क्या कह रहा है, मौसम का हाल क्या कह रहा है। 42 डिग्री दिखाएगा, लेकिन जलन तपन इतनी ज्यादा होगी, कहते हैं ना कि दिमाग गर्म हो जाए, तो दिमाग को गर्म नहीं करना है, ठंडा रखना है। इसलिए जहां भी हैं आप, घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी अंदर रहें, बाहर निकलें ना, और निकलने की जरूरत ही क्या है, अगर बहुत जरूरी है तो सावधानी के साथ सर को ढक कर, पूरे शरीर को ढक कर, पानी पी कर, ये सारी चीजों को करना है। समझदार हैं आप, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जिनका काम है सच को हूबहू आप तक पहुंचाना,
2: जिनकी कलम से निकले शब्द बनते हैं जनता की आवाज,
1: जो दिन के 24 घंटे रहते हैं सजग हर एक खबर के लिए,
2: उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे हम कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में,
1: हर बुधवार शाम 5:30 विविध भारती 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर,
2: और हर गुरुवार शाम 5:30 FM रेनबो 100.7 पर।
1: पत्रकार से संवाद।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।

अच्छा, हर मौसम में अलग अलग तरह की चीजें खाने को मिलती हैं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? देखो, प्रकृति कहती है कि इस चीज से बचना है आपको। मौसम अलग होता है, ये एक सर्कल है।

प्रकृति का नियम है जो कि होना ही होना है, और साथ ही साथ उससे बचाव के लिए भी हमें नेचर बहुत सारी चीज़ें देती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बेमौसम वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो हमें पसंद होता है। दोस्तों कभी कभी जो चीज़ें नहीं पसंद होती हैं वो भी हमें करना पड़ता है, खुद के लिए, अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए। तो बात किस तरफ जा रही है इस पर जरा ध्यान दीजिए।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
5: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।
6: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अच्छा दोस्तों, सब कह रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है, परेशानी है, अभी ये हाल है तो जून में क्या होगा, आगे चलकर क्या करेंगे, कहीं आना जाना सब बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जितने काम है वो होकर ही रहेंगे। लेकिन सोचिए, हम इंसान हैं, हम अपनी बात तो बता देते हैं, एक दूसरे से कह लेते हैं, हमारे लिए साधन भी है, घर है, घर में रह लेते हैं, एसी चला लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, कई सारी चीज़ें हैं ताकि गर्मी ना लगे। लेकिन उन जानवरों से पूछिए, उन पशु पक्षियों से पूछिए जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो जाएं तो कहां जाएं। तो बस एक इशारा कि उनका ख्याल रखिए, कैसे भी जैसे भी आप रख सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उन इंसानों को भी मदद कर लीजिए जो जिनके पास साधन नहीं है, परेशान है। इससे होगा क्या, बहुत सुकून मिलेगा, एक बार करके तो देखिए।

0: है। एमके बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: जिनका काम है सच को हूबहू आप तक पहुंचाना,
2: जिनकी कलम से निकले शब्द बनते हैं जनता की आवाज,
1: जो दिन के 24 घंटे रहते हैं सजग हर एक खबर के लिए,
2: उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे हम कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में,
1: हर बुधवार शाम 5:30 बजे विविध भारती 101.6 MHz पर,
2: और हर गुरुवार शाम 5:30 बजे FM रेनबो 100.7 पर।
1: पत्रकार से संवाद।
3: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 3:54 और 28 सेकंड हो चले हैं और हंसते गुनगुनाते कोई आ चुका है, स्माइल के साथ नाचते जिसे मौसम का कोई असर नहीं, बस फिकर है तो आपसे मिलने की, चाहत है तो आपसे मिलने की। कौन है वो खास, ये आपको पता चलेगा आपके ही प्रोग्राम 4 बजे से। और शालिनी इस उम्मीद के साथ आज जा रही है कि आज का साथ आपको पसंद आया होगा, नेक्स्ट किसी दिन होगी हमारी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, गर्मी बहुत हो रही है।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य MOU करने को मंजूरी दी गई है। चारबाग से वसंतकुंड तक बनने वाला यह कॉरिडोर लखनऊ में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। वहीं बैठक में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी मिर्जापुर की स्थापना के लिए उसकी प्रायोजक संस्था को आशय पत्र जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है और केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाराणसी में PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार कार्य कर रही है और इसमें सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक PNG सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के तौर पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

यह मैच हैदराबाद के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रैंकिंग में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें स्थान पर है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की.
4: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.
6: कोई न

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: बिल्कुल, कंट्रोल को लूज नहीं करना है, एक्टिव हो जाना है। ये जरूर कहूंगा, गर्मी का है मौसम, छुट्टियां बहुत सारे स्कूलों की हो चुकी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस की हो चुकी हैं, और यूथ लगातार अपने काम में है, पूरी तरह से कायम, पूरी तरह से बिजी। आगे क्या करना है, ढेर सारी बातें हैं उसके दिमाग में उछल कूद कर रही है ना, क्योंकि यूथ होता ही ऐसा है, और अगर उछल कूद नहीं है तो यूथ नहीं है। सही कहा ना मैंने? तो चलिए, मैं हूं जमशेद आपके साथ, और आज है मंडे। संडे के बाद आ गया मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, लगातार एक के बाद एक सेगमेंट होते हैं यूथ वेव में, और ये वेव चल रही है 100.7 एफएम रेनबो पर। तो अपने कंट्रोल को लूज मत कीजिए, बल्कि जो आपका गोल है उसको करिए। डिसाइड करना है क्या, ये सारी बातें, तो मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है और आपको क्या करना है। फिलहाल ये है ऐसी पाठशाला जहां पर कुछ बातें होंगी इसी तरह की, तो बस उन्हीं बातों के साथ आज रहिए मेरे यानी जमशेद के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: एमके बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
2: धड़कन लखनऊ की।
3: मैंने कहा कि कोई ना कोई रास्ता चुनना जरूर पड़ता है। कई रास्ते होते हैं जिंदगी में आफ्टर पढ़ाई के, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और उसमें वही जद्दोजहद, वही दिमाग में हलचल उहापोह मची रहती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर सही गाइडेंस मिल जाता है तो वो जो आपकी राह होती है, जो आपका रास्ता होता है, जो आपका गोल होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके करीब आ जाता है। क्योंकि ये जो मौजूदा वक्त है, ये आपके लिए करियर के लिए कैसे, कहाँ नौकरियां होंगे, कि बेरोजगार रहेंगे, कि रोजगार करेंगे, क्या करेंगे, कई सारे सवाल आपके साथ चलते रहते हैं। और टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ते ये जो विकास हो रहा है, इसमें इंटरनेट है, कई सारी चीज़ें हैं, एआई की बात कर लेंगे, तो कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं कि आप क्या करेंगे। और सबसे ज़्यादा डिमांड वाले टॉप करियर ऑप्शन आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन जो मौजूदा दौर है वो एआई का है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर में इसकी मांग लगातार आगे बढ़ने वाली है। तो क्या आपका लक्ष्य है, क्या आपका गोल है, कैसे उस गोल को हम प्राप्त करेंगे, सारी बातें आज मेरे साथ।

बिल्कुल, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। मैं बात कर रहा हूँ एआई की, तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एआई, मशीन लर्निंग यानी एमएल, इंजीनियर और चैट बॉक्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम बनाने वाले प्रोफेशनल की भारी मांग है आने वाले वक्त में। और डेटा साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो डेटा एनालिस्ट कंपनियाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक अलग तरह का विश्लेषण करती हैं। अगर आपका गणित या आपकी मैथ्स है या इसमें लॉजिक में कोई आपको इंटरेस्ट है तो एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर आप इसको अपना सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो वाकई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में भी बहुत सारा स्कोप है। और लगातार देखना, डिजिटल फ्रॉड और हैकिंग लगातार हो रही है और इसी को रोकने के लिए एथिकल हैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग भी छोटी बड़ी कंपनियों में लगातार होती रहती है। पर एक चीज और जुड़ जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिल्कुल, फुल स्टैक डेवलपर्स और क्लाउड आर्किटेक्ट्स के लिए हमेशा अच्छे पैकेज मौजूद रहते हैं। और भी कई सारी फील्ड्स हैं, हम डिजिटल क्रिएटिव फील्ड्स की बात करेंगे। जी, मीडिया एंड क्रिएटर्स इकोनॉमी बहुत बड़ा स्कोप है आपके लिए, लेकिन हाँ, कैसे हम उसमें अपने आप को शामिल कर सकते हैं उसकी भी बात करने वाला हूं मैं। फिलहाल ये ट्रैक और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला।

0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से. केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव.
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं. यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें.
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है. यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें. विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in.
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान. सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी.
4: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है.
5: MK बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद.
6: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
0: धड़कन लखनऊ की.
7: और गीत से पहले मैंने बात की थी डिजिटल और क्रिएटिव फील्ड्स की, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में क्रिएटिव युवाओं के लिए अवसरों की बाढ़ आ गई. बस बाहर निकल के देखें, झांक के देखना है कितनी ज्यादा आपके लिए ऑप्शन की बाढ़ लगी हुई है. यानी डिजिटल मार्केटिंग में SEO स्पेशलिस्ट, किसी भी ब्रांड या बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए इन प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है. कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के जरिए खुद का ब्रांड बना रहे हैं तो अच्छी कमाई हो सकती है. या फिर UI/UX डिजाइनर, वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स को यूजर फ्रेंडली और खूबसूरत बनाने का काम UI/UX डिजाइनर पर होता है. और ये काम कैसे होता है, चलिए उसकी भी बात करेंगे आगे. फिलहाल और अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस की दिशा में मैनेजमेंट और फाइनेंस का नाम भी आ जाता है, और इसमें टैलेंट की

तलाश हमेशा लोगों को होती है। तो कैसे होता है ये काम, वो भी बात होगी आगे। फिलहाल ये गीत धूम मचाने की बात है, तो धूम मचाइए पूरी तरह से।

समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल। कैंपस जॉयस, रिक्ति एक होगी। अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये है कैंपस। रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए बीई बीटेक सिविल में प्रथम श्रेणी, सातवें निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, सातवें निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, सातवें निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं RGIPT.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं ANIIDCO@gmail.com।

0: com, यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। टीजीटी गणित में अनारक्षित दो पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। टीजीटी हिंदी के लिए अनारक्षित दो पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। टीजीटी सामाजिक विज्ञान अनारक्षित एक स्थान रिक्त है, संविदात्मक। टीजीटी मराठी में अनारक्षित एक पद रिक्त हैं, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित एक पद रिक्त है, जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी एक पद रिक्त है अनारक्षित, और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में एक एक स्थान अनारक्षित, संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, तीन स्थान यहाँ रिक्त है, संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का, www.sainiksatara.org.in। करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

बिल्कुल, जब मंजिल मिल जाती है तो यही दिल करता है धूम मचा ले, धूम मचा ले धूम। और मैं कह रहा था कि मैनेजमेंट और फाइनेंस ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर टैलेंट की हमेशा जरूरत रहती है, तलाश रहती है। यानी बात करेंगे तो प्रोडक्ट मैनेजर, किसी प्रोडक्ट को बनने से लेकर उसकी मार्केटिंग और कामयाबी की जिम्मेदारी इनकी होती है, और इस समय ये सबसे हाई पेइंग जॉब में से एक है। और अगर हम दूसरी बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA और इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंस मैनेजमेंट, टैक्स और शेयर मार्केट से जुड़े इस क्षेत्र में करियर ग्रोथ की असीम संभावनाएं होती हैं। बिजनेस

एनालिसिस, यानी बिजनेस की समस्याओं को समझकर उनके तकनीकी समाधान ढूंढना, साथ साथ हेल्थ केयर और सस्टेनेबिलिटी ये भी एक फील्ड है। फिलहाल धूम मचाई है आपने और दिल कह रहा है कुछ यूं।

और बस जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब खुद ही से आप इश्क करेंगे, अपने आप से इश्क करेंगे, तो जाहिर सी बात है कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर और सस्टेनेबिलिटी की, कहाँ पर आपके पास सेक्टर्स हैं, कहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। हेल्थ डेटा एनालिसिस यानी इसमें टेलीमेडिसिन, पारंपरिक चिकित्सा के अलावा अब मेडिसिन डेटा और ऑनलाइन कंसल्टेशन से जुड़े नए करियर भी बन रहे हैं। हम एआई को लगातार साथ में अपने लेकर चल रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन जॉब्स जो हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी टेक्नोलॉजी में आ रहे बदलावों की वजह से सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट और इंजीनियर्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती रहेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें अब आगे बात करेंगे, फ्रीलांस और खुद का स्टार्टअप हम कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल जो भी चुनौतियां हैं उनका स्वैग से करिए स्वागत। Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message.

और अब बात आ गई है फ्रीलांसिंग और खुद का स्टार्टअप। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब हम खुद का कोई बिजनेस या कोई भी चीज शुरू करते हैं तब। और आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से मदद करती है और खुद का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं उनकी हेल्प से। गिग इकोनॉमी यानी कोडिंग, ग्राफिंग, डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग, ये कई सारी स्किल्स हैं, ठीक है ना। और इसको सीख कर घर बैठे आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। ढेर सारे क्लाइंट्स आपको पकड़ते हैं, आपके पास आते हैं। और यही अगर हम सफलता की कुंजी की बात करें, यानी जो की टिप है, उसमें आज के समय में केवल डिग्री नहीं है, उससे ज़्यादा स्किल इम्पॉर्टेंट है। कितनी स्किल है आप में किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र को आप चुन रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, आपने किस तरह से नए टूल्स डेवलप किए हैं या उसकी आदत डाली है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तभी ज़िंदगी में आप पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे और

लव यू जिंदगी, और ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर कि कैसे आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को चुना है, यानी 12वीं ग्रेजुएशन में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या इंजीनियरिंग, किस में इंटरेस्ट है आपका, ज्यादा किस तरफ है, कोडिंग, कंप्यूटर, क्रिएटिव काम, राइटिंग, डिजाइनिंग, बिजनेस मार्केटिंग, या फिर लोगों की मदद करना जस्ट लाइक अ टीचिंग। कई सारी चीजें जुड़ गई। और आप किस तरह का करियर चाहते हैं, यानी एक सिक्योर कॉरपोरेट जॉब, या फिर घर बैठे फ्रीलांसिंग, या फिर खुद का कोई स्टार्टअप, या फिर बिजनेस। और जहां जॉब की बात होती है तो कई तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं, चलिए, लेकिन हाँ, उन ऑप्शंस में सोचा विचारी भी होती है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, लेकिन हाँ, अगर गोल डिसाइड नहीं है तो दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, तो उनको बिल्कुल किनारे डालिए, गोल डिसाइड कीजिए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कहां पर हमें जाना है, ये सारी बातें सोच विचार कर ही आगे जाना है। फिलहाल 4:46 साथ में कुछ सेकंड जमशेद हूं आपके साथ इन प्रोग्राम यूथ वेव 100.7 FM रेनबो।

0: एमके बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
2: धड़कन लखनऊ की।
3: और मैंने कहा ना कि कई सारी चीज़ें, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं या हमने इंटर किया है, कई सारे ग्रुप हैं, साइंस ग्रुप की बात कर लेंगे या कॉमर्स ग्रुप की बात कर लेंगे, उसमें कई सारी फील्ड्स आती हैं। अगर हम बात करें साइंस की तो पीसीएम की बात हो जाती है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात हो जाती है, पीसीबी की बात हो जाती है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात आ जाती है। तो कई सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं कि मैं अब क्या करूँगा, इस फील्ड में कहाँ पर स्कोप है, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। तो चलिए, अगर आपने 12वीं या ग्रेजुएशन में साइंस लिया था और ट्रेडिशनल डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा कुछ और करना आते हैं, तो डेटा साइंस और एनालिटिक्स यानी ग्रेजुएशन के बाद आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। और ये इस वक्त की दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से एक है। और एथिकल हैकिंग की बात करें और साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो डिजिटल दुनिया में जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए कंपनियों को साइबर एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, उसकी बात कर सकते हैं। या फिर इंजीनियरिंग में नए सेक्टर्स यानी रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV टेक्नोलॉजी में भी इंजीनियर्स की मांग बहुत तेज़ी से, इसमें भी आप हाथ आजमा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं PCB की यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो बायोफाइनमेटिक्स यानी बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें दवाओं की खोज और जेनेटिक रिसर्च की हम बात कर लेते हैं। और साथ साथ हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की और डाइटेक्स की और फिटनेस की, लोग

बहुत ज्यादा इस समय जागरूक, जिसको देखो भाई दौड़ रहा है कायदे से, पार्क में दौड़ रहा है। पहले कोशिश नहीं करते, लेकिन बाद में पार्क में आपको बहुत सारे लोग दौड़ते नजर आ जाते हैं। तो अब फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा लोग जागरूक हैं, तो सर्टिफाइड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स हों या फिर जिम हो या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंट की बात हो, पूरी तरह से लोग इस तरफ भाग रहे हैं कि किस तरह से हम हेल्दी रहेंगे। और क्लिनिकल रिसर्च की बात करेंगे, यानी नई दवाएं और साथ में मेडिकल टूल्स और टेस्टिंग, ये भी रिसर्च से जुड़ा हुआ है, और इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। फिलहाल ये ट्रैक है, गलती से कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। और ये ट्रैक भी काफ़ी खूबसूरत है, ख़ास आपके लिए। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

लेकिन मिस्टेक के साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि वो मिस्टेक इतनी बड़ी ना हो जाए कि आगे की जो फील्ड्स है जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपसे छिटक के दूर हो जाए. फिलहाल 4:57 साथ में कुछ सेकंड्स मैं यहाँ से लूंगा विदा. अगले प्रोग्राम में होती है आपसे मुलाकात. फिलहाल मैं ये कहूंगा कि जो भी फील्ड हो, जैसी भी फील्ड हो, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बस शांत दिमाग से बच्चा आगे बढ़ते जाइए. तो फिलहाल यूथ वेव का सफर यहीं तक, और चलते चलते ये गीत आपके लिए आपके रेडियो सेट पर.

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नवीन परिसर शहीद पद स्थित गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 में 1010 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, नवीन ओपीडी ब्लॉक और टीचिंग ब्लॉक के निर्माण संबंधी परियोजना को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 855 करोड़ 4 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बांदा के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं, हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है। प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे 15 मई से 5 जून 2026 तक विश्व पर्यावरण दिवस पखवाड़े का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज विभिन्न पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया गया। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे नरेश पाल सिंह ने किया। रैली में अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। लखीमपुर में आज सुबह ट्रक और सवारी वाहन की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग।
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned.
3: 100.7.
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की।
6: बिल्कुल ऐसा ही फन होगा। टॉप 10 होंगे, गीत आपके सामने, लेकिन आज टॉप 10 के गीत कैसे होंगे, किस पर होंगे आधारित? कौन है ऐसा शख्स जिस पर आज के टॉप 10 गीत होंगे? सोचिए, गेस करिए। मैंने तो गाना पहला प्ले कर दिया। एक ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो करेक्टर है आज का, इससे रिलेटेड एक सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा और उसको मेल के माध्यम से आपको जवाब भी देना होगा। फिलहाल ये गीत एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला। 5:05, 7 में कुछ सेकंड्स, टॉप 10 लेकर मैं जमशेद एक बार फिर आपके साथ।

नजारा हर सुह में तो और कैसा नजारा होगा, ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई, चलिए मैं बता देता हूँ। टॉप टेन में आज मैं बात करने वाला हूँ 3 फरवरी 1958 को जन्मी बेहतरीन अभिनेत्री रीमा लागू की, और उन्होंने आज ही के दिन यानी 18 मई 2017 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। उन्हीं की बात करूंगा मैं आज टॉप टेन में, और टॉप टेन गीत होंगे उन्हीं के फिल्म से। पहला गाना आप तक पहुंच चुका है। फिलहाल हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री, माँ के किरदार में देखा होगा, और मैं बात भी करूंगा, एक सवाल भी करूंगा, लेकिन बीच में आऊंगा, यानी 5:30 पर मेरा सवाल होगा और आखिर में आपको जवाब देना होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए 5:30 मैं सवाल पूछूंगा आपसे। फिलहाल बात कर रहा हूँ रीमा लागू की, और बेहतरीन अदाकारी थी। ज़्यादातर आपने फिल्मों में उनको माँ की भूमिका में देखा होगा, शानदार भूमिकाएं उन्होंने निभाई। और फिल्म मैंने प्यार किया में अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छी माँ का किरदार निभाया था। वो माँ जो औलाद के साथ पूरी के पूरी साथ खड़ी हुई थी, और साथ में फिर वो वास्तव की कठोर माँ हो या फिर दिल्लगी की मालिकाना माँ, कोई भी किरदार हो, रीमा लागू ने बखूबी सभी किरदारों को निभाया है। यानी अगर मैं कहूं कि उनकी भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था तो शायद गलत नहीं होगा। और उन्होंने नए जमाने की माँ की भूमिकाओं को भी बखूबी निभाया था, फिर चाहे आशिकी हो या साजन, फिर या फिर कोई और भी गीत हो, सब में कुछ कुछ होता है। फिल्म देखी आपने, हम साथ साथ हैं, आपने देखा, एक किरदार उनका बार बार सवाल दिमाग में आ रहा। चलिए वो सवाल करूंगा बाद में, फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाऊं।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ओ, दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
7: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: जब वे पुणे के हुजूर पागा HHCP में पढ़ाई कर रही थी, प्रोफेशनल तौर पर अभिनय करने के लिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और फिर लगातार उन्होंने अभिनय का दामन थामा था। और अगर हम उनकी जिंदगी की बात करेंगे तो उनका विवाह मराठी अभिनेता विवेक लागू से हुआ था और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम रीमा लागू रखा था। अच्छा, एक चीज़ और कॉमन सी चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, अगर आपने नोट किया होगा तो ये तीन गाने मैंने प्ले किए उसमें कौन था इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो हमारा सवाल होगा 5:30 बजे मैं पूछूंगा वो इसी पर आधारित होगा।

किस किया कुछ? चलिए अभी बात चलती रहेगी, अभी 5:30 बजने बहुत वक्त बाकी है ना। रंगमंच से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाली रीमा लागू ने हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो कई सुपरहिट फिल्में जो थी उनमें उन्होंने काम किया और उनको हिंदी फिल्मों में माँ का किरदार, इससे पहले हमने बोला था ना, उसके लिए जाना जाता है। और बॉलीवुड में उनका सितारा फिल्म कयामत से कयामत तक में चमका था जब उन्होंने जूही चावला की माँ का किरदार निभाया था। रीमा अभिनय के फील्ड में लगातार आगे बढ़ती गईं और कहते ना कि कुछ भी हो जाए, अभिनय जब किसी को मिलता है विरासत में या कहा जाए उसका दिमाग उसमें जाता है तो फिर कामयाबी तो मिलती ही मिलती है। कई तरह की फिल्में, कई तरह के सीरियल, कई तरह के विज्ञापन फिल्में लगातार एक के बाद एक रीमा लागू को मिलती चली गई और देखते ही देखते बॉलीवुड की वो सबसे चहेती माँ बन गई थी। तो चलिए अगर हम पहली फिल्म की बात करेंगे तो इस गीत की बात जरूर करेंगे।

और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी आशिकी, बड़ी हिट, सुपर डुपर हिट थी, और इसमें भी रीमा लागू थी। मैंने कहा ना, माँ का किरदार बड़ी बखूबी, बड़ी खूबसूरती से निभाया उन्होंने। हालांकि अभी मैं बात करूँगा तो अगर हम बात करेंगे तो सलमान खान का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर में रीमा लागू का बहुत बड़ा योगदान था, शुरुआत से लेकर देख लीजिए जो भी फिल्में आपने देखी होंगी। और कुछ देर के बाद इसी से रिलेट करता हुआ सवाल भी होगा आपके लिए। फिलहाल ये गीत आपके लिए फिल्म आशिकी से।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
5: ओनली 100.7 FM रेनबो।

कलंदर। बिल्कुल जी लो जैसे मस्त कलंदर। मैंने वादा किया था कि 5:30 बजे के बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं बात कर रहा हूँ टॉप 10 में आज रीमा लागू की, बेहतरीन अभिनेत्री, बेहतरीन अदाकारा और कई सारी फिल्मों में उन्होंने माँ का किरदार निभाया। फिलहाल मैं आपको ऑप्शन दूंगा, 3 नाम लूंगा, सबसे ज्यादा किसकी फिल्म में उन्होंने माँ का किरदार निभाया है, सबसे ज्यादा किस एक्टर की माँ बनी है, किसके फिल्म में माँ का किरदार निभाया है। और ऑप्शन आपको दे रहा हूं, सलमान खान, आमिर खान या फिर शाहरुख खान। सलमान खान, आमिर खान या फिर शाहरुख खान, रीमा लागू ने इन तीनों में से किस एक्टर की माँ का किरदार सबसे ज्यादा फिल्मों में निभाया है? सलमान खान, आमिर खान या फिर शाहरुख खान। ये आपको मैंने दिया कि भाई टॉप 10 की बात हो रही है, उसमें एक छोटा सा सवाल हो जाए। और आपके पास जो मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com, ये है आपकी मेल आईडी। तो बस जल्दी से हमें कीजिए मेल, बता दीजिए कौन है, कितनी सबसे ज़्यादा फिल्में थी, किसकी सबसे ज़्यादा फिल्में थी जिसमें रीमा लागू ने माँ का किरदार निभाया है। फिलहाल ये ट्रैक है फिल्म रंगीला का, और इसमें तो कोई और था, और इसमें बस ये सारी बातें चलेंगी।

लिए मेरा कहना भी फिलहाल सुन लीजिए, क्योंकि 5:40 हो चुके हैं, अब 6 गाने तो हो चुके, 4 गाने अब तक आपको और पहुंचाने होंगे, है ना, मुझे अब तक पहुंचाने होंगे भाई, क्यों परेशान हो जाते हैं। फिलहाल रीमा लागू की बात हो रही है, उन्हीं की फिल्म से जुड़े हुए 10 गीत आप तक पहुंच रहे हैं। और हम आपको बताएं कि जितनी भी सलमान खान की फिल्में थी उनमें माँ की भूमिका रीमा लागू ने निभाई और सारी फिल्में सुपरहिट रहीं। और हालात तो ये हो गई थी कि लोग उन्हें सलमान खान की माँ कहकर पुकारने लगे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर ममता और स्नेह ने उन्हें वास्तविक जीवन में भी सलमान खान की माँ बना दिया था। और उस पर संयोग ये भी रहा कि जिस भी फिल्म में रीमा लागू रही सलमान खान के साथ, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर हम मैंने प्यार किया की बात करें, या फिर पत्थर के फूल की बात करें, या फिर साजन की बात करें, या हम साथ साथ हैं की बात करें, या फिर जुड़वा की बात करें, लेकिन फिलहाल ये गीत जो है ये है यस बॉस, इसमें थे शाहरुख खान, और ये गीत आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। और इस फिल्म में भी रीमा लागू थी।

0: के बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Stay tuned 100.7 FM Rainbow,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: और सलमान खान की हिट फिल्मों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है पत्थर के फूल का गीत। इसमें भी रीमा लागू ने माँ का किरदार निभाया था। 5:46 साथ में कुछ सेकंड्स, जमशेद आपके साथ टॉप 10 में।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाए, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned, 100.7 FM Rainbow।
3: धड़कन लखनऊ की।

चलिए सवाल मैंने पूछा था कि रीमा लागू ने सबसे ज्यादा किसकी फिल्मों में मां की भूमिका निभाई है। तीन ऑप्शन आपको दिए थे, मैंने कहा था सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान। ढेर सारे जवाब आपके आ चुके हैं। राधे श्याम जी ने हमें किया है मैसेज और प्रोग्राम आपको अच्छा लगा और आपने नाम लिया है सलमान खान की माँ के रूप में सबसे ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। देखिए कौन लोग हैं जिन्होंने, अच्छा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन शाहरुख खान, ये रवि रस्तोगी जी का कहना है और टिंकू सिंह है, उन्होंने हमें लखनऊ से कपूरथला अलीगंज से मेल किया है, और सबसे ज़्यादा सलमान खान इन्होंने भी लिखा है। अब देखना है किसका ऑप्शन सही है। ब्रजेश सिंह डीपू इटौवा कैसरगंज बहराइच से, नमस्कार गुड इवनिंग, और आपने भी सलमान खान का भी सलमान खान का ही नाम लिया है। और अजमत अंसारी ने सलमान खान लिखा है, नाम आपने लिखा लेकिन कहाँ से मेल किया ये आपने नहीं लिखा है। ओम

प्रकाश असैनी बाजपुर उत्तराखंड से। नमस्ते सर, आपने भी सलमान खान का नाम लिया है और मैंने कहा ना कि तीन ऑप्शन में से, देखिए आमिर खान का नाम किसी ने नहीं लिया, शाहरुख खान का नाम एक ने लिया, बाकी सब ने सलमान खान का नाम लिया। तो सही ऑप्शन है सलमान खान। सबसे ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने माँ की भूमिका निभाई सलमान खान की फिल्मों में।

और अगर चलते चलते मैं बात करूं तो रीमा लागू को फिल्म मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए साल 1990 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और अभिनेता राहुल राय की आशिकी और संजय दत्त की वास्तव के लिए भी उन्हें इसी सम्मान से नवाजा गया था। फिलहाल चलते चलते एक ट्रैक यानी आखिरी गाना, 10वां गाना आप तक पहुंचा रहा हूं और जिस पर ये गाना फिल्माया गया है, एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं, उसकी माँ का भी किरदार निभाया था इस फिल्म में रीमा लागू ने। मैं चलूंगा यहां से बबाई कहता हुआ, अगला प्रोग्राम शामे अवध उसको लेकर फिर मैं मौजूद रहूंगा आपके पास। छोटा सा न्यूज ब्रेक और आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा द्वितीय वर्ष 2026-27 में आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की कार्य योजना प्रस्तावित की गई है। इसमें से कुछ जनपदों में स्मारकों के निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी आगरा के प्रस्ताव पर वर्ष 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए बहादुर सिंह की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जनपद मथुरा में कारगिल युद्ध 1999 में शहीद श्याम सुंदर बेनीवाल की स्मृति में स्मारक का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। शाहजहांपुर में संभावित बाढ़ वर्ष 2026 से निपटने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्टीयरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ संभावित क्षेत्रों, तटबंधों और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि बीते 2 वर्षों में जिन सड़कों पर बाढ़ का पानी भरने की समस्या रही है, उन्हें चिन्हित कर वहां बैरिकेटिंग और संकेतक लगाए जाएं। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गर्मी के मौसम और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मंदिर परिसर एवं दर्शन मार्ग में विभिन्न स्थानों पर मटकों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दर्शन पथ पर जूट मैट बिछाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को नंगे पैर चलने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: स्टे ट्यून्ड।

और एक ताजा खबर ये भी है कि बहुत शिद्दत की गर्मी है बाहर। मैं तो भाई यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो गर्मी नहीं लग रही, लेकिन बाहर का मौसम कैसा है, मिजाज कैसा है मौसम का, ये तो आपको पता चला है। लेकिन फिर भी आप सभी को बधाई, सैल्यूट है साहब, जो इस समय इस गर्मी को झेलते हुए, शिद्दत की गर्मी को झेलते हुए अपने कामों को सरंजाम दे रहे हैं, सैल्यूट है आपको। और बधाई इसलिए दे रहा हूँ, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने आज का दिन भी गुजारा। शाम हो गई है, 6:05 हो गए, तो इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आज का दिन भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से विविधताओं से भरा रहा होगा। तो क्या रहा आज के दिन में खास, ढेर सारी बातें होंगी मेरे यानी जमशेद के साथ। तो बस प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत, उसका नाम है शाम ए अवध, यानी अवध की खूबसूरत सी शाम। और चैनल है 100.7 FM रेनबो, जिसे प्यार से आप कहते हैं, भाई साहब आपसे कह रहा हूं, धड़कन लखनऊ की। और इस गीत को करिए एंजॉय। पर्दे पर हैं संजय दत्त साहब, श्रीदेवी हैं, और इस गीत में और भी क्या क्या है। करेक्ट कर लीजिएगा, श्रीदेवी नहीं है, उर्मिला दिख रही मुझे, इससे पहले श्रीदेवी थी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
2: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
4: और मैंने कहा ना कि आज का दिन भी अपने अंदर बहुत सारी ढेर सारी खासियतों को समेटे हुए, क्यों सही कह रहा ना मैं? और मेरी खास बात यह है कि आज पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस है, जो हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई साल 1974 को किया था। और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। इसके बाद साल 1998 में भारत ने 11 मई और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। नहीं, किसी से कम है क्या? और अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई अचानक से ये बात हुई थी। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। और इससे पहले साल 1974 में जब भारत ने अपना पहला परीक्षण किया था, तब भी भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया में इसको देखा गया था, माना गया था। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी थी। तो बस इसी में तो हम कहेंगे तीन

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned, 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।

चल छैया छैया, ये मुझे दोपहर में कहना चाहिए था आपसे। आप तो ऑलरेडी छैया छैया हो गई, सूरज ढल चुका होगा, 6:23 हो चुके हैं, कुछ सेकंड्स भी हैं साथ में। जमशेद हूँ आपके साथ, शामियावाद प्रोग्राम है, लखनऊ की खूबसूरत सी शाम है। और इस समय अगर दिन की बात करेंगे, दिन में आदमी छैया की तलाश करता है, ऐसी जगह वो गाड़ी भी चला रहा होता है, सोचता है छैया छैया गाड़ी चलाएं, जिससे धूप कम लगे और गर्मी का एहसास उसको कम हो। लेकिन गर्मी तो गर्मी है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जब छैया छैया चलेंगे आप, तो हल्की सी जो हवा चलती है वो आपको बहुत अच्छी लगती है ना। तो चलिए फिलहाल आगे की बात करता हूँ मैं। और अगर आगे की बात करेंगे तो आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हर साल 18 मई को मनाया जाता है, क्योंकि संग्रहालय एक अनमोल चीजें होती हैं हमारे साथ। कोई भी संग्रहित चीज कर लेते हैं। पुराने नोट रखने का शौक है आपको? है भैया? बिल्कुल आपको होगा पुराने

नोट रखने का या पुरानी चीजों को रखने का। इसी तरह से अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है संग्रहालय में, और ये दिन पूरी दुनिया में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। लोग चले जाते हैं हमारे इस बात से, लेकिन उनकी यादें सुंदर तरीके से संजो कर रखी जाती हैं, जिससे हम भी उनके बारे में जान सकें। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे लिए रख दी गई हैं, हम संग्रहालय में जाकर देखते हैं, अच्छा ऐसा भी था, ये भी हुआ करता था, और उनको नुकसान ना पहुंचे इसलिए कई तरह के संग्रहालय बना दिए गए जिसको ये चीजें याद रखने में हमारी मदद करते हैं। कुछ बात करूं, वो स्टोव याद है किसी को? वो एंटीना याद है जो ऊपर जाके हिलाया जाता था? वो पुराना ट्रिंग ट्रिंग वाला टेलीफोन याद है? तो कई सारी चीजें हैं, बहुत से लोगों ने अपने घरों में संग्रहालय बना रखे होंगे, सजा कर रखे होंगे, पुराने कैमरा होंगे किसी के पास, कैसा होता था रील वाला कैमरा, अब तो आपके पास एक हाथ में मोबाइल है, छट से क्लिक कर लिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आप फोटो क्लिक करते थे, उसके बाद उस रील को धुलवाते थे, कुछ खराब होते थे, कुछ अच्छे होते थे, और जो अच्छे होते थे वो एक एल्बम में सजा कर रखे जाते थे, आज भी आपके पास होंगे। इसीलिए आज के दिन मनाया जा रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे पास से जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन संग्रहालय में संरक्षित हैं, हम उन्हें देख सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि पुराना वक्त कैसा था, कैसी चीज़ें थीं, कैसे बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की.

बिल्कुल दिल का चैन ले जाएंगे, लेकिन हाँ ताकने की अगर बात है तो इधर उधर जब गाड़ी चलाते हैं तो ताकने की जरूरत नहीं होती, गाड़ी चलाइए सामने देखकर गाड़ी चलाइए वरना बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये आपके लिए सावधानी के लिए बात कह रहा हूँ। फिलहाल अभी विकास जी से बात हुई, थोड़ा सा व्यस्त है मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे एरिए हैं अगर हम बंदरियाबाग की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है, और कमता चौराहे के आसपास थोड़ा सा शाम का वक्त है, आज सोमवार है और ट्रैफिक इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि लोग ऑफिस से घर की तरफ प्रस्थान कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो कमता के आसपास भी थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल सकता है। लेकिन मैंने कहा कि ताकने की बात नहीं है, सामने से चलिए देखकर चलिए, और अगर आपको लगता है कि आप ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने में अपना योगदान दे सकते हैं तो अपने साथ चलिए, लेन में चलिए, और इधर उधर जिगजैग करके ड्रैग करके गाड़ी मत चलाइए क्योंकि अक्सर जाम वहीं पर लगता है। और हाँ भाई साहब जो एफएम में सुन रहे हैं, टैक्सी वाले भाई साहब आपसे कह रहा हूँ, और ये देखिए आप भी बजा रहे ना रेनबो, ये बैटरी रिक्शा वाले भाई, आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, विनम्रता के साथ थोड़ा सा साइड दे दीजिए लोगों को, लोग निकल जाएं, और अगर आसपास एम्बुलेंस निकले तो बिल्कुल आगे मत लगाइए, साइड में किनारे लगा लीजिए, और ट्रैफिक को मैंने कहा ना व्यवस्थित करने में थोड़ा सा जो हमारा योगदान है, यानी लखनऊ की जो तहजीब है, पहले मैं नहीं निकल जाइए साहब, थोड़ा सा वक्त लगेगा, दो चार मिनट लगेंगे, दो चार हम ऐसा नहीं दो चार घंटे लग जाएंगे, थोड़ा सा देर में ही सही, लेकिन लोग सुकून से शांति से ट्रैफिक से चलेंगे, जाम भी नहीं लगेगा, है ना, दिक्कतें भी नहीं होंगे, है ना। ये गाना भी खूबसूरत सा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश है, और ये गाना है ये, और ये गाना कहता है कुछ यूं, छह बजकर 38 मिनट 7 सेकंड्स, जमशेद हूँ आपके साथ शाम अवध में। अभी और ढेर सारी बातें हैं, सोने चांदी का भाव भी बताना है, सेंसेक्स भी बताना है, आज मंडे हो गया है, ऊपर है या नीचे है, उतार चढ़ाव के साथ साथ ये सब बताऊंगा मैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर.
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर.
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-4444.
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की.
6: बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से. संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के. पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है अजब सा रिश्क है.
7: कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है. फिलहाल रिस्क इसमें भी है कि क्या है सोने का भाव, क्या है चांदी का भाव, ये भी आप तक पहुंचा दूं. तो अगर हम सोने की बात करेंगे, 24 कैरेट गोल्ड की बात करूंगा. खामोशी से सुन लीजिए. हालांकि कोई खास फर्क नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज का रेट है 1,62,005 रुपये. और वहीं अगर हम चांदी की बात करेंगे तो 2,90,000 प्रति किलोग्राम है, और सोना जो है वो प्रति 10 ग्राम है 24 कैरेट, यानी 1,62,005 रुपये. और चांदी है प्रति किलोग्राम 2,90,000.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: और हौले हौले वक्त आ गया है कि मैं आपको बता दूं आज का सेंसेक्स यानी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो 75,315.04 और निफ्टी की बात करेंगे तो 23,649.95 अंक रहा आज का।

ढेर सारी बातें होले होले होले होले। अगर जल्दबाजी वैसे भी जिंदगी में बड़ी कहते हैं ना दिक्कत देती है, तो कोई भी काम करें बस होले होले आराम से काम करें तो काम बेहतर भी होगा और अच्छा भी होगा। फिलहाल 6:54 हो चुके हैं, 7 में कुछ सेकंड्स। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं वेंकटरामन राधाकृष्णन की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 18 मई 1929 को हुआ था। एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य। साल 1988 से 1994 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के उपाध्यक्ष है और नीदरलैंड्स फाउंडेशन फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी की विदेशी सलाहकार समिति, ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप नेशनल फैसिलिटी CSIRO, ऑस्ट्रेलिया की संचालन समिति के वो रहे, ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप, नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यानी कई सारी उपाधियाँ कई सारे पद इनके पास रहे और लगातार इन्होंने जो भारत के लिए योगदान दिया वो भी अतुलनीय है। चलिए फिलहाल मैं यानी जमशेद आपसे लूँगा इजाज़त प्रोग्राम शामे वाज से। अगला प्रोग्राम आपका है जहाँ पर होंगे आपकी कॉल, लाइव बात करूँगा मैं, तो बस आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ। और नंबर कुछ देर के बाद बताऊँगा, बता दूँ नहीं अभी बताऊंगा न्यूज के बाद। फिलहाल आपसे ये कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ और चलते चलते ये गीत आपके लिए छोड़े जा रहा हूं।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 3932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस में कोई कमी नहीं है और केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। प्रदेश में ग्रामीण भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के तौर पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन का आमने सामने से टक्कर हो गई। पीलीभीत जिले में बाल विकास विभाग में चयनित 105 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर रामपुर रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय द्वारा संरक्षित दुर्लभ एवं ऐतिहासिक कलाकृतियों की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बलरामपुर जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने अपील की है कि वे 14 वर्ष आयु वर्ग की बच्चियों को HPV टीकाकरण अवश्य लगाएं। यह टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद देखने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद चांद कमेटियों ने कल 19 मई को इस्लामी माह ज़िलहिज्जा के पहले तिथि होने की घोषणा की। गोरखपुर के रामगढ़ताल में आज 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: मिशन रहेगा संग संग।
1: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: ये है 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की. Entertainment or information.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: चलिए करता हूं शुरुआत आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा बस हेलो एफएम बस जल्दी से हमें मिलाइए फोन नंबर्स 22 38 852 या 22 38 845 ये है आपके नंबर। मैं हूं जमशेद आपके साथ और जब तक आपके फोन आते हैं इस गीत को एंजॉय करते हैं। शुरुआत करें

0: बस एक छांव। बस पुकारता हुआ मैं भी चला हूँ और पुकारते पुकारते मैंने किसी को दी है आवाज और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है। जानते हैं कौन है और कहां से पहली कॉल लगी है, नहीं लकी कॉल है हमारे लिए, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, गुड इवनिंग।
1: जी गुड इवनिंग सर।
0: नाम बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। जी अब अपना नाम बता दीजिए, नाम सुनने को बेकरार हैं लोग आपका।
1: मेरा नाम है मोहम्मद फैज।
0: जी
1: रामपुर कटरा फुलवारी बाजार बाराबंकी से बोल रहे हैं सर।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने ऐसे अल्फाज कहे हैं, इतने स्टाइल में आपने बोला है कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है, कसम से बता रहा हूँ।
1: जी जी जी सर।
0: जी और कुछ अपने बारे में बताइए फैज साहब।
1: हेलो सर।
0: जी बताएं, सुन रहा हूँ।
1: क्या कहा सर जी आपने?
0: कुछ अपने बारे में बताइए, आज पहली बार बात हो रही शायद हमारी आपकी।
1: जी जी जी सर। आप जी मतलब जब से मैंने कम से कम 7 साल हो गए आप प्रोग्राम सुनते हैं रेगुलर, आपसे पहली बार आज बात हुई है सर।
0: क्या बात है, मेरी खुशकिस्मती है।
1: बाकी तो सभी आरजीओ से बात हो चुकी है लेकिन खास करके आपसे नहीं थी।
0: हाँ ये
1: हो भी गई तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई सर।
0: क्या

0: बात है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फैज साहब से बात कर रहा हूँ। फैज साहब, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जी सर, गाना सुनना चाहेंगे, जिंदगी भर का सनम सा तभी बाकी है, मुलाकात अभी बाकी है ना,
0: मुलाकात बाकी है, मुलाकात फिर भी होगी, किसी दिन होगी जरूर, मुलाकात अभी बाकी है। फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि जो जिंदगी भर का साथ अभी बाकी है, ये है फिल्म आजमाइश का गीत, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज, फैज साहब की पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। ये रहा फैज भाई, सुनिए।

0: और हमारे साथ अपनी फरमाइश के साथ कोई और जुड़ चुका है। हेलो।
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है?
1: जी गुलफ्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं। गुलफ्ता
0: जी, संडिला से आपने हमें किया है फोन।
1: जी सर।
0: जी, जी कुछ सर। अपने बारे में बताइए, मेरी तो पहली बार बात हो रही है आपसे।
1: जी सर, आपसे तो पहली बार बात हो रही है, लेकिन मेल से बात होती रहती है। आप जब रेनबो कैफे से आते हैं?
0: रेनबो कैफे नहीं, पॉप टाइम में आते हैं। नाम थोड़ा सा बदल गया है
1: हम लोगों को, रेनबो कैफे।
0: जी जी जी, और बताइए कुछ अपने बारे में।
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए हम कैसे। हम घर पर रहते हैं, हाउसवाइफ।
0: आप संडीला में हैं? संडीला में क्या गर्मी उतनी ही पड़ रही है जो लखनऊ में पड़ रही है?
1: तो हो ही नहीं सकता।
0: संडीला में गर्मी नहीं है, कोई बता रहा था कि संडीला में शायद गर्मी नहीं होती।
1: ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्मी नहीं है? शिमला थोड़ा ना, नैनीताल नहीं है।
0: अच्छा, मुझे लगा कि शायद संडीला वाले जो है इस बात से पूरी तरह से फ्री हैं कि यहाँ गर्मी नहीं हो रही, आराम से सुकून से ठंडी ठंडी हवा।
1: गर्मी झेल रहे हैं।
0: आप ही नहीं, समय पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है बांदा में आज सबसे ज्यादा। जी गुलफ्ता जी, बांदा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था आज, मालूम है आपको?
1: जी जी सर, आज बहुत गर्मी थी।
0: और उसका असर आपके संडीला में भी पहुंच गया है। है ना?
1: तो जी सर, संडीला चलिए दुनिया में है।
0: जी जी, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: टार्जन द वंडरकार
0: का। जी जी जी
1: जी सर, वही सुना दीजिए। कुछ नाम ले लें?
0: नाम ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए।
1: साहिबा अंसारी, सादिया अंसारी, समा परवीन, निशा अंसारी, ममता गौतम है, मैं कंसारी, जितने लोग सुन रहे हैं सबको।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत ये रहा आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
5: MK बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
6: प्रोग्राम चल रहा है हेलो FM और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है। हेलो,
7: मुसाफिर हूँ यारो, घर है ना
6: ठिकाना, मुझे चलते जाना है,
7: चलते जाना।
6: चलिए अपना तारुफ कराइए जल्दी से अपने सुनने वालों को।
7: जी
6: नाम बताइए अपना, अपना तारुफ कराइए। कौन सा?
7: सत्यम कुमार है, ग्राम पोस्ट पर सिंधी कैसरगंज बहराइच से बोल रहा हूँ सर।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो FM में, मैं हूँ जमशेद आपके साथ। जी
7: अगर आप कहें तो मैं नंबर सर एक बार दोहरा दूं, क्योंकि नंबर शायद जो आपने बताया है वो नहीं चल रहा।
6: हाँ हाँ जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए।
7: नंबर ये चल रहा है 0522 29 3 शायद 22।
6: चलिए मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। चलिए पहले गाना बता दीजिए, अपना गाना बता दीजिए, वरना न्यूज का टाइम हो जाएगा, आपकी बात कट जाएगी। गाना बता दीजिए
7: सर। गाना मुझे सुनना है
6: जी।
7: बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी।
2: परिषद के दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल

0: विभाग सौंपा गया है। चार नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
1: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटना स्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। का प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग,
2: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए।
3: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
6: धड़कन लखनऊ की।
7: और धड़कन लखनऊ की में मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त जमशेद। 7:33 साथ में कुछ सेकंड्स प्रोग्राम आपका अपना हेलो FM और उसमें हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। हेलो,
8: अस्सलाम वालेकुम।
7: जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है?
8: साहिबान सारी मेहवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बोलेंगे।
7: कैसी हैं आप? ठीक हैं
8: जी सर, हम बहुत अच्छे, अपना बताइए आपके।
7: नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों से बात होती तो और अच्छा हो जाता हूँ, यही बात है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए खास हैं, हमारे लिसनर हमारे लिए हैं, तो हम तो खुश हो ही जाएंगे। और बताइए कुछ अपने बारे में बता दीजिए।
8: आपसे बात हो गई हमारी।
7: जी जी जी बहुत शुक्रिया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपसे बात हो गई। और बताइए कुछ अपने बारे में। जी कुछ अपने बारे में बताइए।
8: खाना
7: बना लिया आपने?
8: जी हम खाना बनाते हैं। अरे आपका जो फोन ट्राई करे थे।
7: और फोन ट्राई करते करते आपका फोन लग गया।
8: जी लग गया, हमने नहीं सोचा कि आपसे बात होगी आज हमारी।
7: नहीं नहीं कहते ना, शिद्दत है अगर किसी चीज में तो वो चीज हासिल बहुत होती है, बहुत जरूर होती है।
8: सर आइए, हम आपको कद्दू के फूल की सब्जी खिलाए।
7: कद्दू के फूल की सब्जी बन जाती है? कद्दू की सब्जी तो मैंने खाई है।
8: कद्दू के फूल की नहीं खाई है?
7: नहीं मैंने भी नहीं खाई। कैसे बनती है ये किसी दिन पूछूंगा आपसे जरूर कि उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, कैसे बनती है कद्दू के फूल की सब्जी। बिल्कुल। चलिए गाना आपको खूबसूरत सा सुना दूं। दो गाने हमारे सामने हैं, एक गाना है गली में आज चांद निकला और एक है मेरा चांद मुझे आया है नजर। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
8: जी सर दूसरा वाला कौन सा बताया?
7: मेरा चांद मुझे आया है नजर, मिस्टर आशिक का, कुमार सानू।
8: जी सर यही वाला बजा दीजिए।
7: चलिए आपने कहा और मैंने आपको ये गाना सुनाया।

और इस तरह भी अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको फोन नंबर्स मिलाना है। फोन नंबर्स हमारे हैं 2982-378-52 या फिर 2283-845। और हाँ, इससे पहले लखनऊ का कोड यानी 0522 लगाना ना भूलिएगा। मैं हूँ जमशेद आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर आपकी अपने प्रोग्राम हेलो FM के साथ।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मैं संतोष कुमार मौर्य, ग्राम निकला कोथावा हरदोई।
0: जी जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम में।
1: जी सर,
0: गर्मी पड़ रही है कोथावा में?
1: जी, गर्मी तो आज खूब पड़ रही थी दोपहर को।
0: तो हमने सुना है कुछ लोगों ने जो है, गर्मी पड़ रही थी तो गर्मी में किसी ने रोटियां बना ली, किसी ने खाना वाना बना लिया। इतनी गर्मी है क्या?
1: जी सर, मेरे घर में आज खीर बन रही है।
0: खीर वो गर्मी में बनाई है आपने?
1: जी सर, गर्मी में ठीक होती है खीर।
0: नहीं मतलब धूप से खीर बनाई है या मतलब कैसे बनाई है? लोग कह रहे थे कि गर्मी जो इतनी है, धूप इतनी है कि उससे खाना बन जाता है।
1: जी सर, मैं कोहला में लकड़ी से बनी है।
0: अच्छा, लकड़ी से बनी है। कुछ अपने बारे में बताइए।
1: जी सर।
0: जी, कुछ अपने बारे में बताइए। और गाना आपने सुनना चाहे, कभी खुशी कभी गम का टाइटल ट्रैक किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी सर, मैं अपनी बीबी मीना देवी मौर्य को।
0: जी जी, आपने कहा और उनको हमने ये गाना पहुंचाया। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं गीत, तो बस हमें मिलाइए फोन। मैं हूं जमशेद आपके साथ।

0: 7:43 साथ में कुछ सेकंड्स फोन लाइन पर है हमारे साथ कोई। हेलो
1: जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं?
1: सुल्तान से बात कर रहा हूँ
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, पता बता दीजिए अपना।
1: मैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, बस यही तो बात है। और ये बताइए, कुतुब खाना सब्जी मंडी, ये जिला कौन सा लग रहा है?
1: बरेली।
0: बरेली, बरेली की क्या चीज मशहूर है? हमने बरेली का नाम बड़े गानों में सुना है, क्या खास है बरेली में?
1: बरेली का झुमका है सबसे ज्यादा,
0: और
1: उसके बाद आता है सुरमा।
0: बरेली का सुरमा और बरेली का झुमका, वाकई दोनों चीजें बड़ी मशहूर है। मैं जानना चाह रहा था, देखता कि आपको जानकारी कितनी है। और कुछ मशहूर है
1: बरेली के अंदर? बाकी तो और बहुत सारी ऐसी दरगाह हैं आला हजरत साहब की।
0: अच्छा, खान पान वहाँ का कुछ ऐसा मशहूर है जो लोगों तक पहुँचाया जा सके?
1: खाने में, खाने में जैसे यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं खाने, तो वो यहाँ पे वो मिलता है, मुरादाबादी बिरयानी आती है।
0: नहीं तो मुरादाबाद पहुंच गया, मैं बरेली की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, बरेली का झुमका मशहूर है, कौन सा गाना था, जरा गुनगुनाइए
1: गाना मेरे को।
0: गाना झुमका बरेली वाला कौन सा था, कैसा था, हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, बताइए गाना गुनगुनाइए।
1: वो जो मेरा साया फिल्म का गाना है।
0: कौन सा?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हेलो हेलो हेलो, देखिए शायद लाइन में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हो गया है, लेकिन ये गाना जरूर पहुंचाऊंगा। और ये है, दो लोग लाइन पर थे हमारे साथ और एक की लाइन कट गई, एक की लाइन चालू रही, और ये गाना आपके लिए आपके रेडियो सेट पर।

0: और फिर एक फोन हमारे साथ आ गया है, जुड़ गया है, और वो भी बरेली से। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, जिला सचिव बरेली, पुराना गांव चिड़िया सैदपुर।
0: हाँ, ये आपने अच्छा किया कि आपने पूरा पता बताया। और अभी बात ये चल रही थी कि गाना बड़ा मशहूर था बरेली से, तो थोड़ा वो गाना आप गुनगुनाइए गंगवार जी।
1: पूरा गाना तो नहीं,
0: गुनगुना दीजिए हल्का फुल्का।
1: अच्छा, जितना आता है उतना।
0: हाँ हाँ जितना आता है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाँ जी, वो क्या कहते हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, मुझे इतना ही मालूम है।
0: चलिए, आपने गाना सुनना चाहे दाग द फायर मूवी का, कुछ खास इस गाने में?
1: हाँ जी, जैसे मित्रों के नाम।
0: जी, पहले बताइए गाना जो सुनना चाहते हैं ये दाग द फायर मूवी का, मतलब कुछ खास है इस गाने में?
1: हाँ जी, इसका म्यूजिक और डांस बढ़िया लगता है गाने में।
0: म्यूजिक और डांस बढ़िया लगता है, लेकिन जो है गाना आप नहीं गुनगुना पाए हैं। हमें ये थोड़ा सा बड़ा मतलब अजीब लगा, बरेली वाला गाना आपने नहीं गुनगुनाया, लेकिन गाना हम आपको जरूर सुनाएंगे।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: साथ बजकर 51 मिनट, साथ में कुछ सेकंड्स में हूँ जमशेद आपके साथ, आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम में, और हमारे साथ भी कोई है। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उज्जैन के क्या हाल चाल है? उज्जैन किस चीज के लिए मशहूर है, किस चीज के लिए जाना जाता है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के लिए मशहूर है, फेमस है, प्रसिद्ध है, हमारा महाकालेश्वर बाबा का दरबार लगता है उज्जैन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई उज्जैन बहुत मशहूर है। और कुछ अपने बारे में बता दीजिए।
1: जी जमशेद जी बताऊँ, फिल्म का नाम है जन्नत, और गाने के बोले जो ख्वाबो ख्याल में सोचा नहीं था।
0: क्या बात है, जो ख्वाबो ख्यालों में सोचा नहीं था, ये गीत आपके लिए। और आप भी अभी मिला सकते हैं फोन 29 82 377 और 22 38 852 22 38 845 ये हमारे नंबर। मैं हूँ जमशेद आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: और मेरे इरादों में आप सभी लोग हैं जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं। और मेरा इरादा ये रहता कि ढेर सारी कॉल्स हों, ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़ें और उनसे बात हो। जैसे कि इस वक्त को कोई लाइन से जुड़ चुका हो लाइन पर हमारे साथ, और ये आखिरी कॉलर होंगे। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है?
1: सर, मैं यासमीन बानो बात कर रही हूँ, बिस्मा सीतापुर से।
0: जी अच्छा, सीतापुर में गर्मी उसी तरह से पड़ रही है जैसे लखनऊ में पड़ रही है?
1: हाँ सर, बहुत गर्मी पड़ रही। मैं तो धूप में जाती हूँ 10 बजे, तो इतनी अल्लाह तौबा करने वाली धूप है।
0: तो उस धूप का सामना कैसे करती हैं? मुंह ढक के जाती हैं मुंह पे?
1: सर, मैं पूरा हिजाब पहन के जाती हूँ, छाता लेकर जाती हूँ, ठंडा पानी भी लेकर जाती हूँ अपने साथ में।
0: ये देखिए बहुत जरूरी है, गर्मी में अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं लगता कब गर्मी लग जाएगी। और टेम्परेचर देख रहे हैं बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: जी सर, बहुत हाई हो रहा है आज तो। मतलब जब 10 बजा था तभी, शायद 11 बजा था, 38 डिग्री था शायद।
0: जी जी और आज बांदा में सबसे ज्यादा था जैसा कि हमने अभी समाचारों में सुना ना।
1: जी जी जी
0: चलिए, गाना किसको सुनवाना चाहेंगे बहुत जल्दी से बता दीजिए, वक्त बहुत कम है।
1: जितने लोग

0: सभी को गाना स्पेशली डेडिकेट है और बस।
1: जी बहुत शुक्रिया, और ऐसा ही डेडिकेशन बढ़िया रहता है, बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी कॉलर का गीत, और मैं यानी जमशेद अब लूंगा आपसे इजाजत इस वायदे के साथ कि फिर किस रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज, शबा खैर। और हाँ, चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नववर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं कर पाते यदि अच्छी सरकार नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा। मंत्रिमंडल में आगरा और लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बांदा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां कहीं पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है उसे तत्काल ठीक कराया जाए। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में

रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और भारत के पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में जमाखोरी न करने की अपील की है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आबशार 100.7 एफएम रेनबो पर।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned, 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: जरूरी नहीं कि हर आरजू पूरी हो, लेकिन फिर भी कुछ चाहतें ऐसी होती हैं जो मुकम्मल हो ही जाती है, और उन्हीं में से एक चाहत वो है जो अभी मेरी पूरी हुई है। जी हाँ, आपसे मिलने की ख्वाहिश, आपसे मिलने की चाहत, आपसे कुछ कहने की, कुछ सुनने की आरजू।
1: बस दूरी सी,
0: क्योंकि यूं तो जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, फिर भी कुछ लोग होते हैं तो लगता है जैसे नूर आ गया हो।

8:38 और 49 सेकेंड्स। आप शार से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए।

समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने

0: सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से। नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए

0: व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच

सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जान हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो।
3: तो भाई मुस्कुराना तो बनता है। मंडे का दिन फाइनली खत्म हुआ है और ये भी कोई कम बड़ा अचीवमेंट बिल्कुल नहीं होता है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये मंडे से फ्राइडे होने में इतना टाइम क्यों लगता है और फ्राइडे से खट से मंडे कैसे हो जाता है? ये वाला जो मतलब ये पहेली है ना, बहुत सोच करके भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन चलिए हटाइए पहेली, किनारे करते हैं फिलहाल, तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। यस यस यस गाइस, वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा, सबसे एनर्जेटिक और सबसे म्यूजिकल हैंग आउट का, जिसका नाम है पॉप टाइम। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त ज्योति मिश्रा। सभी लखनऊ के नवाबों, कॉलेज के नौजवानों और एफएम रेनबो के दीवानों, कैसे हैं आप सब? भाई हफ्ता कैसा भी गुजरा हो, लेकिन जब घड़ी की सुइयां इस वक्त पर आती है तो दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, छोड़ो सारी टेंशन्स और जस्ट वाइब। तो चलिए तैयार हो जाइए आज के एक सुपर कूल म्यूजिकल राइड के लिए, जहां है भरपूर स्वैग और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। एंड यस, गाने जिन्हें हम बजा रहे हैं बड़ी जोर जोर से, यस ये वो सॉन्ग्स हैं जिन्हें आप अगर हेडफोन में सुनो तो दुनिया म्यूट लगती है और अगर स्पीकर्स पर सुन लो तो पूरे मोहल्ले का मूड ऑन हो जाता है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए इस म्यूजिकल सफर को देते हैं रफ्तार और प्ले करते हैं आज का पहला ट्रैक जोर जोर से।

जी हाँ, वो गाना जिसने सोशल मीडिया पर रील्स की ऐसी बाढ़ ला दी है कि हर कोई चाय का कप हाथ में थामे खिड़की के बाहर देखते हुए बैकग्राउंड में हीरिये हीरिये ही गा रहा है। चाहे बाहर भयंकर धूप हो या फिर हो धूल भरी आंधी, रील प्रेमियों के लिए मौसम हमेशा एक सा रहता है ना। और फिर जीत सिंह की बात क्या करें भाई, उनकी तो आवाज का जादू ही ऐसा है कि जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कभी मोहब्बत आई ही नहीं, वो भी अपने दिल को पकड़कर बस ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि किसी ने उनका दिल तोड़ ही दिया है। यस, अरे भाई आपका दिल सलामत है तो फिर क्यों अपने सीने को पकड़े हुए घूम रहे हैं, ऐसा भी क्या म्यूजिक में खो जाना। प्रोग्राम का नाम पॉप टाइम, मेरा नाम ज्योति मिश्रा और चैनल अरे वही वाला जो आपका बड़ा पसंदीदा है, यानी एफएम रेनबो।

9:28, ढेर सारे ईमेल मेरे सामने गुलफशा सिद्दीकी ने लिखा है। संजीला से प्रोग्राम सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे लग रहे हैं। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, निशा अंसारी, ममता गौतम, हम सब एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, वाओ। विजय पाल यादव जी बबलू यादव के साथ में लिखते हैं ग्राम और पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मुनीश कुमार राज गांव भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से

लिख रहे हैं कि आजे जी रवा आवाज सुनते रवा आवाज क्या होता पता नहीं मुझे लेकिन चलिए कुछ अच्छा ही होता होगा सुनते दिन भर के टेंशन की छुट्टी हो जाती है रेनबो पॉप टाइम की प्रस्तुति अच्छी लग रही है गाना बजा बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ आई एम सो सॉरी लेकिन दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने ईमेल किया आपकी तारीफ सर आंखों पर वकील अहमद साहब ने लिखा है

लेकिन दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने ईमेल किया, आपकी तारीफ सर आंखों पर। वकील अहमद साहब ने लिखा है, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से, साहिब अंसारी, शाजिया अंसारी, वही नाम है फिर से, शमा परवीन, रिंकी मेकी, महक अंसारी, कमाल अंसारी, मास्टर इस्माइलपुर से लिख रहे हैं कि पूरे 12 बजे तक सुनते हैं प्रोग्राम। जी जरूर सुना करिए, क्योंकि हम इतनी मोहब्बत से और इतनी मेहनत से लेकर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम्स, तो अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो लगता है कि मेहनत सफल हो गई। ईमेल्स और भी है, लेकिन सॉन्ग्स भी तो है ना, जो आप तक पहुंचने के लिए बेताब बेचैन हो रहे हैं। सो लेट्स शेक विद शेकी शेकी।

अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे यंगस्टर्स पढ़ाई कर ही नहीं पाते अगर उनके कानों में हेडफोन ना लगा हो। भाई हमारे भी जमाने में कुछ ऐसे ही होता था, हम रेडियो पर गाने सुनते थे और रेडियो पर गाने सुनते सुनते म्यूजिक को एंजॉय करते करते ये शो करते थे कि बड़ा हमारा मन लग रहा है, लेकिन कई बार लिरिक्स में या बीट्स में कुछ ऐसे उलझ कर रह जाते थे कि पढ़ाई तो कहीं पीछे छूट जाती थी। अब भाई आज के टाइम क्या होता है मैं ठीक से कह नहीं सकती क्योंकि मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई है, बट यस आपका क्या कहना है, स्पेशली मैं उनसे जानना चाहूंगी जिन्होंने इस गाने को सुपर डुपर हिट बनाया है। क्योंकि बोलने को तो ये भी कहा जाता है कि ये वाला गाना सुनते सुनते पढ़ाई में जी बड़ा ही मन लग जाता है, बड़ा ही मन लग जाता है। तो अनुव जैन के म्यूजिक का कमाल है या फिर यूं ही फैशन का धमाल है? आजकल पढ़ाई का मतलब बारिश ही क्यों हो गया है? बारिश है मतलब ये सॉन्ग सुनिए और अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताइए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

नाचिए नाचिए, खूब धूम मचाइए, लेकिन भाई पायल वायल बिल्कुल भी मत तोड़िए, क्योंकि नाचते टाइम भी अपना ध्यान रखना ये तो आपका काम है, आपका खैर, मतलब इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना। प्रोग्राम के नाम पॉप टाइम, मेरा नाम ज्योति मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को 100.7।

मनोज विश्वकर्मा जी का भी ईमेल मेरे सामने और ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ और भी मजेदार से शेयर करिए हमारे साथ, तो बिल्कुल मजा ही आ जाए, है ना। सुल्तान रजा जी ने लिखा है प्रोग्राम की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई, ओके, जो शुरुआत में आपने बोला वो बात दिल को छू गई, और इन्होंने जो लिखा है वो भी बड़ी खूबसूरत सी बात है, कुछ सालों के बाद ना जाने क्या समा होगा, पता नहीं कौन सा दोस्त कहाँ होगा, फिर मिलना होगा तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। नीलू शर्मा, स्नेहा सोनी, इन्होंने लिखा है रिश्ता चाहे किसी से रखो पर हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल। कैसी हो ज्योति दीदी जी, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। सारा, पीयू, मनु, रोशनी, बबीता, वंदना जी को भी नमस्कार बोला है। मोनू सेठ जी लिख रहे हैं कि जब हम पढ़ते थे तो मम्मी पापा डांटते थे, कहते थे कि पढ़ाई करते टाइम टीवी बाजा कुछ नहीं चलेगा, लेकिन अब तो कान में ब्लूटूथ लगा के पढ़ाई होती है, तब ऑफलाइन थे अब ऑनलाइन हो गए। भाई देखिए मोनू सेठ जी, तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, आजकल बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर के ही पढ़ाई करते हैं, और आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दरअसल इस चीज़ से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ज़्यादातर नोट्स पीडीएफ में आते हैं, ज़्यादातर लेक्चर्स ऑनलाइन होते हैं, और अभी तो ट्यूशन कोचिंग भी ऑनलाइन होने लग गई है, तो मैं इस बात के बारे में अब बस क्या कहूँ, बट यस ऑफ कोर्स इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। अरविंद दुबे ने धर्म देवा छठहा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से लिखा है, अरविंद दुबे, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, श्यामा कुमारी, दीपा, तन्वी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि चिंता मत करिए 12 बजे तक हम आपके साथ हैं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट। नसीम अंसारी, मुन्नन अंसारी, व्यास अंसारी, कुलदीप गुप्ता, बाबू अंसारी, सारे लोग लिख रहे हैं कि प्रोग्राम में मजा आ रहा है, कुछ और भी बताइए, कुछ मजेदार है ना, तब फिर बस प्रोग्राम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। हवा की झोंकों पर तैरती आपकी आवाज जब भी कानों में घुलती है, पूरा दिन महक उठता है, ओ माई गॉड। माधव राज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले ग्राम गुबराहा से, थाना रानीपुर से, सबको ईमेल कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने लिखी हैं, पूरा ईमेल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अपनी तारीफ अपने आप पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना। इंद्रपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे ईमेल के लिए। अमृता मोहली सीतापुर से, आशा, अवनीश, विनीश, अक्षत और गरिमा के साथ आपने ईमेल किया है। रामराज जी, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, पवन कुमार, मिर्जा, इमरान बेग लिख रहे हैं कि जब आप ईमेल पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भाई आपका ईमेल हम तक पहुंचता है तो यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ये महसूस होता है कि आप सुन रहे हैं और अपना फीडबैक हम तक पहुंचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथ नाच रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, थिरक रहे हैं और तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ताना ना करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

9:37 and 14 seconds. तो अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए और मेरे साथ ताल से ताल यूं ही मिलाते रहिए. चलिए भाई आगे कुछ और भी ईमेल्स आए हुए हैं जिन्हें पढ़ना ऑफ कोर्स बनता है. राजेश कुमार जी ने लिखा है. ओके, चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू ने कहा, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा गया, बस प्यार से पापा ही कहता हूं. भाई वाह. मोनू से जी ने लिखा है, कैसी हैं पॉप टाइम में एक बार फिर आपको सुनकर खुशी हुई. जिस तरह लू का प्रकोप शुरू हो गया है, बेवजह घर से ना निकलें, रेनबो से जुड़े रहें, दही छाछ तरबूज खरबूजा इत्यादि खाते रहें. बिल्कुल सही बात है मोनू जी, हमारी प्रकृति इतनी कंसिडरेट है और इतनी रिच है कि मौके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमको ऐसी चीज़ें ज़रूर देती रहती है जो हमें हेल्दी रहने में मदद करें, लेकिन हम हैं कि उसकी वैल्यू समझते ही नहीं है ना. राजेश यदुवंशी ने हथरोना अमेठी से लिखा है, दुनिया में अपना केवल वक्त है, वक्त सही हो तो सब अपने हैं वरना कोई नहीं. प्रोग्राम पसंद आ रहा है जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. और ये जो आपने बात लिखी है ना, बिल्कुल दिल जीत लिया आपने. विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने लिखा है सांडी जनपद हरदोई से, रेडियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, रेडियो का साथ हमेशा मेरे साथ रहे. भी क्यों नहीं, सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक 18 घंटे हमें ना आपके साथ लगातार. हेलो गुड इवनिंग मैम, गुलफशा सिद्दीकी संडीला से. मैम मैं इस वक्त अपने घर की छत पर हूँ और छत पर बहुत अच्छा लग रहा है और आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ. खाना खा के आराम से प्रोग्राम सुना जा रहा है. बड़ी वाह क्या बात है. सही बात है, शाम का वक्त हो, ठंडी ठंडी चलती हुई हवा हो और खाना वाना खा के टहलते हुए अगर रेनबो सुना जाए तो क्या कहने. तो बस यूँ ही जुड़े रहिए हमारे साथ. अभी भी हमारे पिटारे में आपके लिए बहुत कुछ बचा हुआ है.

ये घर आना क्या है? मुझे लगता है कि ये घर आना है हम सबकी होम कमिंग। कैसे धीरे धीरे धीरे करके वक्त बदलता ही जा रहा है, हम कुछ करें या ना करें हमारे हाथ में फोन जरूर रहता है। यस, इस 5G की दुनिया में इंटरनेट से तो हम बड़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हालत ये है कि वॉशरूम भी जाते हैं तो फोन साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन खुद से बात किए हुए हफ्तों गुजर जाते हैं। तो भाई थोड़ी देर के लिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए, स्क्रीन से नजरें हटाइए, जिंदगी की खूबसूरत धुन को महसूस करिए और खुद से कहिए कि अगर कोई और नहीं है जीवन में तो खुद से ही सही, लेकिन मोहब्बत कर ले रे।

ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने अपनी बारी का इंतजार करते हुए, तो जल्दी से इन्हें पढ़ दिया जाए। ऑलराइट, हियर वी गो। तो भाई इस वक्त जो ईमेल है मेरे सामने वो है सुनील सिंह जी का। विपुल सिंह इटहुआ कैसरगंज बहराइच से लिख रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ब्रिज सिंह, दीपू छोटा भाई, विपुल सिंह, एमन का भी ईमेल है संदीला से, हेलो डियर दी। जावेद अख्तर साहब, हद से आगे बढ़ गई चाहत मेरी, पहचान लेता हूँ कदमों की आहट तेरी, वो इजाजत तू सुकून जहन में उतारू, तेरे होठों पे रखी है राहत मेरी। पॉप टाइम कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार। और किसका ईमेल है, किनका ईमेल है, किनका है? जीशान खान साहब, जीशान खान संडीला से, लेकिन इस वक्त सऊदी अरेबिया में है, आपको सुन रहे हैं। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरी वाइफ गुलफशा सिद्दीकी, हम दोनों की तरफ से ओके आने वाली बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी सुनने वालों को। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि अपने टाइम निकाला और इतने खूबसूरत मैसेजेस हम तक पहुंचाए।

अब काला चश्मा जचता है या नहीं इसमें तो नो कमेंट्स बट यस आपके रेडियो सेट पर एक ही चैनल जचता है एंड दैट इज 100.7 एफएम रेनबो सो जुड़ी रहिए इसी चैनल से स्टे ग्लूड क्योंकि आपके लिए एक से बढ़कर एक जबरदस्त प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है हमारे पास

0: कहते हैं ना कि जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। देखिए ना, 9:55 और ठीक 23 सेकंड्स हो गए हैं। इतनी तेजी से घड़ी की सुइयां आपके साथ जब होती हो तो भागती रहती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम जरूर आ गया है, लेकिन आपका और मेरा साथ अगले 2 घंटे और बना रहने वाला है। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में म्यूजिक को अपना हमसफर बनाए रखिए, अपनों के साथ दिल खोलकर मुस्कुराते रहिए और लाइफ को थोड़ा सा लाउड और कभी कभी थोड़ा सा सोलफुल भी बनाकर रखिए। And yes, stay glued to your own station, and jiska naam hai FM Rainbow. जय का ईमेल है सोनू परवाना का, आंचल सेठ का, विनीत कुमार का एंड सुनील सिंह जी का भी। तो बस इसी के साथ ज्योति इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करती है, लेकिन हमारा साथ यूं ही बना रहने वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज कहीं मत जाइएगा।
1: प्ले, क्या बात है,

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेट्रो कॉरिडोर 2 आगरा कैंट से कालिंदी विहार में मेट्रो स्टेशन एवं वायडक्ट सेक्शन के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं आगरा दक्षिण के विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे आगरा के नागरिकों के लिए बड़ी सौगात बताया। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी कैबिनेट द्वारा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए सामाजिक न्याय केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि जमीन पर लागू होने वाली व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक और कानूनी रूप से मजबूत आधार देने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एक ऐतिहासिक कदम है। ये आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा ताकि आरक्षण का निर्धारण सही आंकड़ों, पारदर्शी प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पशुपालन, दुग्ध विकास एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता,

4,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार का ये निर्णय पशु चिकित्सा शिक्षा को नई ऊर्जा देने वाला है। इससे छात्रों का उत्साहवर्धन होगा तथा पशु चिकित्सा सेवाओं में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। इसमें से कुछ जनपदों में स्मारकों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। वाराणसी में प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने हमारी जनगणना हमारा भविष्य अभियान को विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बताते हुए नागरिकों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की। वाराणसी में उन्होंने कहा कि सटीक जनगणना आंकड़े शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आवास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहद जरूरी है। मंत्री ने स्वयं जनगणना फॉर्म भरकर लोगों को सही और तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रात के 10 बज रहे हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब शहर की रफ्तार धीरे-धीरे थम रही है। सड़कों का शोर कहीं दूर छूट चुका है। खिड़कियों की रोशनियां एक-एक कर बुझ रही हैं। लेकिन कुछ दिल हैं जो अभी भी जाग रहे हैं। कुछ बातें हैं जो दिन के उजाले में कह नहीं पाते, और कुछ यादें हैं जो सिर्फ रात की खामोशी में आवाज पाती हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर आपका अपना महकता हुआ कार्यक्रम रजनीगंधा। अगले दो घंटों तक हम साथ चलने वाले हैं उन गीतों के साथ जो सिर्फ कानों तक ही रुक कर नहीं रह जाते, बल्कि दिल के किसी बहुत पुराने कोने में जाकर ठहर जाते हैं। कभी किसी अधूरी मोहब्बत की तरह, तो कभी किसी पुराने खत की खुशबू की तरह। तो आइए रजनीगंधा के इन महकते फूलों के साथ इस खूबसूरत रात का सफर शुरू करते हैं।

पुराने वक्त की वो सादगी, वो मासूमियत, जब मोहब्बत निगाहों में होती थी, खामोशियों में होती थी, जज्बातों में होती थी और होती थी एहसासों में। कुछ गीत ऐसे ही हैं जिन्हें सुनते हुए लगता है जैसे किसी पुराने एल्बम का सबसे खूबसूरत पन्ना खुल गया हो। तो चलिए इसी एल्बम का एक और खूबसूरत पन्ना खोलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं एक और ऐसा ही खूबसूरत गीत।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार,
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है ऐश के जगह,
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
7: अच्छा, कभी कभी किसी किसी को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप इन्हें हमेशा से जानते थे? वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, फिर भी वो आपके लिए अजनबी ही बने रहते हैं। क्या है ये दिल के रिश्ते, कैसे हैं ये दिल के रिश्ते और क्यों है ये दिल के रिश्ते?

यही रिश्ते यही नाते तो हैं जो जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। कभी होठों पर मुस्कान लाते हैं तो कभी दिल को दर्द से भर देते हैं। कुछ दर्द आंखों तक ही ठहर कर रुक कर रह जाते हैं, तो वहीं कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो रोम रोम में आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। अगला गीत इसी दर्द को महसूस कराएगा आपको। किशोर कुमार की आवाज, संजीव कुमार की खामोश अदाकारी और मजरूह सुल्तानपुरी के अल्फाज। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।

और मुश्क, इन्हें छुपाना आसान है क्या? अब देखिए ना, जब दिल में जज्बात होते हैं तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी वो आंखों से, आवाज से और कभी कभी खामोशियों से झलक ही जाते हैं। और जब बात मोहब्बत की होती है तो लगता है जैसे पूरी कायनात बस उस नाम को ही बार बार दोहरा रही है। '72 की फिल्म एक नजर, मीर की अमर शायरी, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। आप बस जैसे सुनना शुरू करते हैं आपको महसूस होता है मानो दिल किसी पुराने दौर में लौट गया हो। तो चलिए जाने कि क्या जानता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की।

0: 100.7 FM रेनबो।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जिंदगी कभी काश और कभी अगर मगर के बीच ही ऐसे ही बीत जाती है। कभी लगता है काश ऐसा होता, तो कभी लगता है काश वैसा होता। अगर ये होता तो क्या होता, अगर वो हो जाता तो क्या होता। लेकिन सब हमारे हिसाब से हो तो जिंदगी जिंदगी होती नहीं, ऐसा हो ही ना पाता। और तब हम ही कहते कि ऐसा समाना होता। जी हाँ, ये दिल ही तो है जो कभी कहता है कि उनके साथ चलते चलते ही जिंदगी बीत जाए, तो कभी ये दिल ही बोलता है कि ऐसा समाना होता कोई भी यहां ना होता। चलो बाकियों की तो बात छोड़ दो, कम से कम मेरे हमराही तुम तो ना होते।

वक्त हुआ है 10:44 और ठीक 22 सेकंड्स। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा के फूलों से महकते मधमाते सदाबहार पुराने फिल्मी गाने आज ज्योति मिश्रा के साथ।

चांद का हुस्न भी, चांद का हुस्न भी जमी से है, चांद का हुस्न भी जमी से है, चांद पर चांदनी नहीं होती।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
2: पुरानी जींस और गिटार,
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है, हैरते आशिके जगा,
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
6: जिंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, लेकिन फिर भी जाने क्यों आप मैं हम सब इतने परेशान रहते हैं, ये जानने के बावजूद कि जो आज है वो भी नहीं टिकेगा और जो कल था वो भी टिका नहीं। फिर ऐसा क्यों है कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी सी टेंशन्स हमें इतना परेशान कर देती है। तो सीधी सी बात है ये कि 10:54 हो चुके हैं, आने वाला पल जाने वाला है और ये पूरा घंटा आपके साथ बिताते हुए मेरे मन में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा है कि अच्छा वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। थोड़ी देर में लूंगी एक न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर ये सफर जारी रहेगा रात 12 बजे तक। सुनते रहिए रजनीगंधा, आज ज्योति मिश्रा के साथ।
7: सब्सक्राइब कीजिए और YouTube।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन लखनऊ में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, व्यापक तथा गुणवत्तापरक बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और गुणवत्ता दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व जहां प्रदेश में केवल 16 राजकीय विश्वविद्यालय थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 29 से बढ़कर 53 तक पहुंच गई है, जबकि 8 अन्य निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने की प्रक्रिया गतिमान है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2026 की पॉलिटेक्निक कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व में 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए छात्रहित में आवेदन की अंतिम तिथि को 20 मई 2026 तक अंतिम अवसर के रूप में विस्तारित किया गया है। परिषद द्वारा अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे इस विस्तारित अवधि का अधिकतम लाभ उठाते हुए समय से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। जिला विधेयक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में समाधान समारोह 2026 के अंतर्गत एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ एवं जन भागीदारी आधारित बनाना है, ताकि आमजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने बताया कि यह महत्वाकांक्षी अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है और इसके अंतर्गत देश भर में विभिन्न स्तरों पर सुलह समाधान की प्रक्रिया निरंतर संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम का समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने आज हरदोई में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ये हास और उपहास का समय नहीं है। गाड़ी ईंधन बचाना और सोना कम खरीदना, ये देश की प्रगति और देश को जो चलाने वाली सप्लाई चैन है उसको बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वो हरदोई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र प्रदर्शनी अवलोकन में पहुंचे थे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला बुलेटिन आप सुन सकेंगे रात्रि 12 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

एक सुकून सा मिलता है, एक सुकून सा मिलता है तुझे सोचने से भी। फिर कैसे कह दूं कि मोहब्बत नहीं है तुझसे। 11:08 और ठीक 28 सेकेंड्स, आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ प्रोग्राम रजनी गंधा में।

क्यों कभी कभी बस किसी का होना, उसकी मौजूदगी, यही काफी होता है। कुछ नहीं बदलता, लेकिन बस एक शख्स का वजूद, उसका आसपास होना आपकी पूरी दुनिया को रोशनी से भर देता है।

ने फिर से काम किया 1994 में, लेकिन इस बार किरदार बदल गए थे। जी हां, नूतन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की रोमांटिक लीड नहीं थी, बल्कि बनी थी अमिताभ बच्चन की मां। तो चलिए सुनाते हैं आपको 1973 की फिल्म सौदागर का ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग।

11:16 और ठीक 49 सेकेंड्स आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा आज ज्योति के साथ। और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 1973 की फिल्म सौदागर का गाना। ये अकेली ऐसी हिंदी मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन और नूतन ने एक दूसरे के ऑपोजिट लीड जोड़ी के रूप में काम किया था। सौदागर के तकरीबन 21 साल बाद दोनों ने फिल्म इंसानियत में

आपका साथ लगातार निभा रही है ज्योति मिश्रा प्रोग्राम रजनी गंधा में. और ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है कि अगर भाई दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही. तो दोस्त होने के नाते रात 12 बजे तक आपके साथ ही रहने वाली हूँ और आप तक पहुंचाने वाली हूँ कुछ ऐसे गाने जो कभी हो ही नहीं सकते पुराने.

0: खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहाँ हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: आखिर हूँ यारों।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों के

कुछ एहसास ना ही छुए जा सके हैं और ना ही उन्हें शब्दों का जामा पहनाया जा सकता है। ये वही एहसास हैं जिन्हें बस महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अपने की मौजूदगी या फिर किसी अधूरी मोहब्बत की खामोश टीस।

अच्छा, आपको भी मेरी तरह लग रहा है कि इस वक्त अगर कुछ सुकून दे सकता है तो वो सिर्फ बारिश की बूंदें हैं, या फिर ये महकता हुआ संगीत जो आप तक पहुंच रहा है इस वक्त, है ना? तो बारिश की बूंदें तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मीठे मीठे सदाबहार नगमों की बारिश ये जरूर हमारे वश में है। तो चलिए इसी से फिलहाल आपको भिगोते हैं प्रोग्राम रजनीगंधा में, सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर।

सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर है।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. Aur ab aap tak pahunch rahi hai. एक ऐसा खूबसूरत गीत आप तक पहुंच रहा है जो कि मेरा नाम जोकर फिल्म से है। ये एक ऐसी मूवी थी जिसे राज कपूर अपनी जिंदगी के सबसे करीब मानते थे। फिल्म को बनने में तकरीबन 6 साल लगे थे और जब ये रिलीज हुई तो इंडिया में ये फ्लॉप हो गई थी। हालांकि रशिया में ये ब्लॉकबस्टर थी। बाद में धीरे धीरे इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला और आज भी अगर सिनेमा के स्टूडेंट्स इस मूवी को स्टडी नहीं करते तो उनकी पढ़ाई, उनकी रिसर्च अधूरी ही मानी जाती है।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। रात अब गहरा रही है और हमें पूरा यकीन है कि रजनीगंधा की ये महक धीरे धीरे आपके दिल में उतर रही होगी। उम्मीद है आज के इन गीतों ने आपके दिल के किसी कोने को हल्के से छुआ होगा। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वक्त है कि अब इजाजत भी नहीं दे रहा। ज्योति को आज के लिए आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन इन गीतों की नमी, इनकी खुशबू अपने दिल में संभाल कर रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित, प्रभावी एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनता दर्शन में लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली, पानी, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी समस्याएं उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में ऊर्जा विभाग एवं नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता समस्याओं के निस्तारण तथा नगर विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि जहां जहां विद्युत कैंप लगाए जा रहे हैं वहां संबंधित अधिकारी नियमित निगरानी करें तथा प्रतिदिन ये सुनिश्चित करें कि कितनी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आज उन हजारों बच्चों के जीवन में आशा की एक नई और उज्ज्वल किरण बनकर उभरी है, जिनके सर से माता पिता का साया

समय ही उठ गया था। किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना इस बात से आंका जाता है कि वो अपने सबसे कमजोर और असहाय वर्ग के प्रति कितना संवेदनशील है। इसी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रदेश सरकार ने अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। ये योजना केवल एक आर्थिक अनुदान मात्र नहीं है, बल्कि ये उन मासूमों को समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:17 और सूर्यास्त 6:48 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। मध्य रात्रि के 12:03 और ठीक 31 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।